सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58:23 हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने

0: में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इससे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता है, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे गजानन, हे गौरी नंदन, आप तो मंगल करने वाले हैं सभी का, मंगल दाता हैं और बुद्धि विधाता हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सबको सद्बुद्धि दीजिए, सभी अपने जीवन में सन्मार्ग पे चलें, अच्छे मार्ग पे चलें और अपने इस जीवन को सार्थक करें। तो इसलिए हे प्रभु, यही प्रार्थना है कि आप सभी का कल्याण करें।

नाथ तू अनाथन करो नाथ कौन मूसो। हे प्रभु, आप तो दीन बंधु हैं, दीनों की आप रक्षा करते हैं, तो प्रभु यही है बस प्रार्थना कि आप, और फिर मुझसे कौन अनाथ होगा, तो इसलिए प्रभु आप अपनी शरण में लीजिए।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे संबीत स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में आपने भक्ति परक रचनाएं सुनी, वे गायक स्वर थे अनूप जलोटा, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, अनुराधा पौडवाल, संध्या मुखर्जी और MS सुबुलक्ष्मी। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर सम्पन्न होता है। चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज उत्तम माधर्व धर्म संबंधी विचार। स्वर नीरज जैन का है।
1: उत्तम मार्दव का अर्थ है मान और कषाय का त्याग। इसके लिए व्यक्ति के स्वभाव में नम्रता और विनयशीलता अति आवश्यक है। जहां नम्रता होती है वहां झुकाव होता है। झुककर ही व्यक्ति ऊपर चढ़ सकता है। सीधा होकर ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा पतन के गर्त में ही गिरता है। जब नदी में बाढ़ आती है तो अपने बल के घमंड में चूर बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, लेकिन नदी किनारे की कोमल घास नम्रता से झुक जाती है और पानी उतरने पर फिर सीधी खड़ी हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जिसके ऊपर मान आरूढ़ हो जाता है उसका धन, वैभव, यश, कीर्ति सब नष्ट हो जाते हैं। अतः जीवन का प्रथम उद्देश्य इस कसाय पर विजय प्राप्त करना है। इसलिए सज्जन पुरुष को चाहिए कि वह अभिमान, स्वाभिमान और निराभिमान के अंतर को पहचाने। बड़प्पन निंदा करने के लिए नहीं होता, वह तो दूसरों का दुख दूर करने के लिए है।

0: इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। इसलिए ज्ञान, पूजा, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर जैसी वस्तुओं पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे मान और कषाय की उत्पत्ति होती है, जो समस्त दुखों का कारण है। हृदय की नम्रता और कोमलता ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। जिस पेड़ में जितने अधिक फल लगते हैं वह उतना ही अधिक झुकता है, जबकि फल विहीन पेड़ सीधा तना खड़ा रहता है। वह किसी को लाभ नहीं पहुंचाता और उसका होना न होने के बराबर है। इसकी पुष्टि करती हैं ये पंक्तियां, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मनुष्य का वास्तविक सम्मान उसकी कोमलता और विनयशीलता से होता है। इसके लिए हमें अपने अहम को तिलांजलि देनी होती है, तभी हम मान अपमान की भावना से विरत हो सकते हैं। यदि हम निराभिमानी नहीं बन सकते तो कम से कम स्वाभिमानी बनने की कोशिश करें, लेकिन अभिमान से कोसों दूर रहें, क्योंकि अभिमान दया का परम शत्रु है, जबकि दया मार्दव धर्म की परम पोषक है। दया के बिना मार्दव धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। दया से मृदुता आती है और मृदुता से कषाय का नाश होता है। यह कषायहीन मृदुलता ही आत्मा का शरीर है। चित्त में इस मृदुलता का भाव दया से ही आता है। इसीलिए संत कवि तुलसीदास जी ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए, जब लग घट में प्राण।
1: चिंतन बिंदु क्रम में अभी आप सुन रहे थे उत्तम मादर्व धर्म संबंधी विचार स्वर नीरज जैन का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कांड से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

आप अभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर ए हरिहरन और उत्तरा केलकर के थे। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज प्रातः है 7:31 पर आप सुनेंगे ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज की माटी तोहे प्रणाम। इस क्रम में आज जन जन के आराध्य श्री बांके बिहारी को इतिहास और निर्माण शैली, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की होगी। ब्रज दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 9:30 का। सुबह 9:00 आप सुनेंगे हिंदी वार्ता क्रम में आज गांधी जी के सपने और यथार्थ की चुनौतियां, इस विषय पर लक्ष्मी नारायण तिवारी से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता। कार्यक्रम आवो हवा सुनिएगा 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में नीलमा शर्मा जानकारी देंगी पर्यावरण समस्याएं इस विषय से संबंधित। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात SMS दिन में आप 12:00 सुन सकते हैं। और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा 7:31 पर। संध्या 6:50 पर आज ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। ये कार्यक्रम का समय आप याद रखिए आज संध्या 6:50 पर। और आशीष श्रीवास्तव से इस विषय पर आप जानकारी लेंगे, बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल।

पर प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत कवि अनिल बोहरे का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा। संध्या वंदन सुनिएगा संध्या 6:30 पर। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सारंगी वादन। कलाकार होंगे उस्ताद मोयुनुद्दीन खान।

0: युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में ओजोन परत का क्षरण इस विषय पर सती शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। और दोपहर 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। बहनें कार्यक्रम सुनेंगी दिन में 1:15 पर कार्यक्रम वनिता लोक। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी दिवस इस विषय पर चर्चा की जाएगी। और इसी कार्यक्रम में डॉक्टर नीतू गोस्वामी प्रस्तुत करेंगी काव्य पाठ। दोपहर 12:30 का समय रहेगा ब्रज लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आप सुनेंगे रांझा गायन, प्रस्तुत करेंगे भगवान दास अज्ञानी। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है खेती की बातें। आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम में विजय सिंह नौलखा से ये जानकारी। विषय है नवजात बछड़ों में होने वाले संक्रामक रोग और प्रबंधन।
1: भाइयों, आज हम नवजात बछड़ों में होने वाले संक्रामक रोग एवं प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे। नवजात बछड़ों में संक्रमण रोधक क्षमता कम होती है, अतः उचित देखभाल के अभाव में रोगग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। बछड़ों में होने वाली कुछ बीमारियां इस प्रकार से हैं। पहली बीमारी है नाभि शोथ, जिसे नेवल इल भी कहते हैं। नाभि और उसके संबंधित संरचनाओं का संक्रमण आमतौर पर नवजात बछड़ों में होता है। यह संक्रमण मुख्यतः नाभि सूत्र के ठीक से न कटने तथा ठीक से देखभाल न करने पर होता है। इसके उपचार के लिए नाभि पर टिंचर आयोडीन का घोल नियमित रूप से लगाया जाना चाहिए। दूसरा प्रमुख रोग है निमोनिया। यह जीवाणु तथा माइकोप्लाज्मा जनित संक्रामक रोग है। रोगग्रस्त जानवर द्वारा दूषित संक्रमित पानी, दाना, चारा तथा वायु से यह रोग स्वस्थ पशुओं में फैलता है। यह बीमारी में जानवर को तेज बुखार के साथ आंखें व नाक से पानी बहता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके उपचार के लिए रोगग्रस्त पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग करना चाहिए तथा उचित एंटीबायोटिक्स आवश्यकता अनुसार देनी चाहिए। एक अन्य रोग है एंट्रोटॉक्सीमिया। यह रोग मुख्य रूप से एक जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। इस बीमारी से ग्रसित नवजात के पेट में तीव्र दर्द उत्पन्न होता है। रोगग्रस्त नवजात दर्द के कारण जमीन पर छटपटाकर गिर जाता है। यदि समय से उपचार न किया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके उपचार के लिए 8-10 ग्राम तक खाने का सोडा तथा टेट्रासाइक्लिन पाउडर का घोल दिन में 2-3 बार पिलाना चाहिए। इस रोग के बचाव के लिए 3-4 महीने की उम्र में टीका लगवाना आवश्यक होता है। एक अन्य रोग है जिसे हम कहते हैं कॉक्सीडियोसिस या कुकड़िया रोग। यह रोग एक प्रोटोजोआ यानी परजीवी के कारण होता है। यह रोग संक्रमित दाना, चारा, पानी के साथ स्वस्थ नवजातों की आंतों में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया में आंतों की कोशिकाओं के फटने के कारण खून आने लगता है तथा पतले दस्त होने लगते हैं। इस रोग के कारण नवजात की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, वह कमजोर हो जाता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। नवजात बछड़ों में होने वाला एक अन्य रोग है अतिसार। नवजात पशुओं में 4-5 दिन बाद दस्त की संभावना हो जाती है। यह रोग भी एक बैक्टीरिया द्वारा फैलाया जाता है। इसमें पीले व सफेद रंग के दस्त होते हैं। इसके प्रभाव से नवजात में लड़खड़ाहट तथा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। नवजात बछड़ों में आंखों का संक्रमण भी प्राय देखने में आता है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, आंखों से श्राप आने लगता है। कभी कभी आंखों की पुतली सफेद हो जाती है। सामान्यतः यह रोग स्वतः ही समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर परेशानी ज्यादा है तो चिकित्सक की सलाह लेना श्रेष्ठ रहता है। नवजात का एक अन्य रोग है टिटनेस। नाभि में टिटनेस के जीवाणुओं के संक्रमण होने से टिटनेस रोग की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग में शरीर

0: शरीर की सभी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जैसे हाथ, पैर, पूंछ, कान सभी अकड़ जाते हैं तथा पशु की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इस रोग का सफल उपचार नहीं हो पाता। इसके बचाव के लिए पैदा होने के बाद नाभि पर टिंचर आयोडीन का घोल नियमित रूप से लगाना चाहिए। नवजात बछड़ों में रोग से बचाव के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। नवजात के पैदा होने के बाद उसको साफ करके तुरंत खीस या कोलोस्ट्रम पिलाएं, जेर गिरने का इंतजार न करें। नवजात को खनिज लवण चाटने को अवश्य दें। प्रतिदिन बाड़ों की नियमित रूप से सफाई करें। बाड़ों के अंदर व बाहर भुजे चूने का छिड़काव करें। बीमार नवजात को स्वस्थ जानवरों से अलग रखकर उचित देखभाल तथा उपचार किया जाना चाहिए। नवजात को अन्य जानवरों से अलग रखें ताकि वह उनसे संक्रमित दाना चारा न खा सके तथा नवजात को कोक्सीडियोसिस नामक घातक बीमारी से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त परेशानी होने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क किया जाना आवश्यक है।
1: आप सुन रहे थे विजय सिंह नौलखा से ये जानकारी। विषय था नवजात बछड़ों में होने वाले संक्रामक रोग एवं निदान विषय से संबंधित। और अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस अब से कुछ ही देर में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् नवदिल्ल्यां सद्य एव सम्पन्नस्य 18तमस्य ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य उपवेशनस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः तथा चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनफिङ इत्यस्य च मध्ये जाते संवादे अनेके विषयाः चर्चिताः। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री भारतस्य चिन्ताः प्रस्तुतवान् तथा उभाभ्यां पक्षाभ्यां पारस्परिक मूलचिन्तां प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शनीया इति प्रतिपादितवान्।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए, दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अनन्तरं सऊदी अरब देशस्य विदेश मंत्रिणा सह अपि उपवेशनं कृतवान्। तत्र क्षेत्रीयानां अन्ताराष्ट्रियानां च घटनाक्रमाणां विषये चर्चा जाता। सऊदी अरब देशे सद्यः एव जाते आक्रमणे भारतेन निन्दा कृता। षड् राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाउ बहुउद्देश्य बन्ध परियोजना सम्बद्ध सन्धौ हस्ताक्षराणि कृतानि। एतेषु राज्येषु उत्तरप्रदेशः, उत्तराखण्डः, हिमाचलप्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानः अथ दिल्ली च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन किशाउ परियोजना राष्ट्रीय परियोजना इति घोषिता अस्ति। श्री शाहः उक्तवान् यत् परियोजनायाः वित्तीय भारस्य प्रायः 90% केन्द्रप्रशासनेन वहिष्यते, अवशिष्टं 10% भारं च सहभागी राज्यैः वहिष्यते। दिल्ली प्रशासनेन आशा कार्यकर्तृभ्यः प्रदीयमानं निश्चित

प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का यह पहला गीत साथियों, आप सबकी नजर इस गीत से है।

दाग फिल्म में ये आवाज़ थी दौलत महमूद साहब की। गीत को लिखा था गीतकार शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का था। अब

फिल्म किस्मत में ये आवाज़ें थीं, अरुण कुमार और पारुल घोष की। अब ये सुनते हैं अगला गीत।

आशा भोसले और उषा मंगेशकर के युगल स्वरों में आपने ये सुना। फिल्म देवदास का ये गीत था। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज शाम 6:50 से कार्यक्रम हेलो ब्रिज ग्रामीण प्रसारित किया जाएगा। आज विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। किसान भाई, यदि बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल, जैसे पशुओं का आहार और आवास व्यवस्था है, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव, खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोंटू जैसे रोगों से बचाव की जानकारी आप चाहते हैं, तो स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से आप जानकारी ले सकते हैं। और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। समय ध्यान रखिए, आज शाम 6:50 पर। सूचना समाप्त हुई और अब यह कार्यक्रम का अगला गीत।

एक बार मुस्करा दो, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जिद्दी के इस गीत को। लिखा था प्रेम धवन ने, संगीत खेमचंद्र प्रकाश का था। साथियों, आज का ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत इसी गीत के साथ ही अब यहीं पर संपन्न होता है। अगला प्रसारण अब से कुछ ही देर में।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा ये कदम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का लिया फैसला। लोगों के बीच यूपीआई से लेन देन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा, छोटे व्यापारियों के लिए भी 2,000 रुपए तक का लेन देन रहेगा निःशुल्क। और प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कल यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है।
4: इस परियोजना का लगभग 90% वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और शेष 10% राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते को जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जहां 1,562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल विद्युत भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट में साल के 11 महीने एथेनॉल बनाने का काम होगा।
5: 19 वर्ष पहले शुगर फैक्ट्री बंद होती, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इथेनॉल प्लांट जो गन्ने से मक्का और धान, गन्ना समाप्त होने के बाद मक्का और धान से इथेनॉल बनाया जाएगा।

0: प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। जो भी इथेनॉल की मात्रा 3,96,00,000 लीटर एक साल में इथेनॉल बनेगा।
1: मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिपरिषद ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रदेश के पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह करीब 3 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि जंगल नकहा नंबर 2 में 300 लोगों की क्षमता वाला ये कल्याण मंडपम 2 तल में बनाया गया है। मुख्यमंत्री आज ही IMA के चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर प्रदेश भर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक कर इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हापुड़ जिले के प्रभारी मंत्री KV मलिक ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर 1 माह तक चलने वाले इस अभियान की कार्ययोजना के बारे में चर्चा की। शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों सेवा संकल्प अभियान के सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कराने और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और नागरिकों को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है।
2: सेवा संकल्प के अभियान को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन और संगठन के समन्वय के साथ सारी योजना तैयार की है। 17 सितम्बर को शाहजहांपुर जनपद में रक्तदान का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 17 अक्टूबर तक बहुत सारे अभियानों के माध्यम से कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थी को देने का काम भी शुरू होगा।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए निर्माण कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। साथ ही निर्माण के अंतिम भुगतान का ऑडिट भी थर्ड पार्टी से कराने का फैसला लिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि वहां अब राम कथा संग्रहालय का काम शुरू होगा।
3: संग्रहालय का जो सबसे बड़ा कार्य अब शुरुआत होगी, आने वाले 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वह बनाना है और उसको अंतिम रूप दिया जाए। अनुमान की टेंडर फाइनलाइज जो कि अक्टूबर के अंत तक कदाचित हो पाएगा, उसके बाद लगभग 6 महीने लगेंगे गैलरी को कम्प्लीट करने में।
1: प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों और बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक शहरी के

0: 11,508 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग के 2,607 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में कल अपनी किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव भी साझा किए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता है। ये कार्रवाई भारत में चल रहे कैब और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफार्म की सेक्टर वाइड जांच के बाद की गई है। जांच के दौरान CCPA ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिदम कन्फर्म शेमिंग जैसा था, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए 2023 के दिशा निर्देशों के तहत पहचाना गया डार्क पैटर्न है। इसमें उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होने पर राइड खोने का डर पैदा करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा यह कदम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने PRD जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का लिया फैसला। लोगों के बीच UPI से लेनदेन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा, छोटे व्यापारियों के लिए भी 2,000 रुपए तक का लेनदेन रहेगा निशुल्क। और प्रदेश में शिक्षकों के 15,012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

श्रोता साथियों, आज हम आपके ताई ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में ब्रज की माटी तोहे प्रणाम ये कार्यक्रम लेके आए हैं। तो या में आज हम सब जानकारी लेंगे रश्मि शर्मा ते जन जन के आराध्य श्री बांके बिहारी को इतिहास और निर्माण शैली। कार्यक्रम के संयोजक हैं ओपी सिंह। तो फिर आओ आनंद लें जे कार्यक्रम को सुन के।

0: वृंदावनम तीन भक्ति नित्यति यत्र च, अर्थात धन्य है वृंदावन की भूमि जाने भक्ति उन्नत्य करे है। यही वृंदावन में प्रिया प्रियतम ने अनेक अनेक लीला करी है। वृंदावन को आज जैसो स्वरूप हमें दिखाई दे रहे है, प्राचीन काल में वाक्य ठीक विपरीत हो। प्राचीन वृंदावन जो हरियाली ते आच्छादित हो, जहाँ कुंज निकुंज की शोभा मनोहारी लगे ही। यमुना जी को जल ऐसो पावन और निर्मल हो, जामे यमुना जी की तली में रेतियाऊ स्पष्ट दिखाई दे ही। सेवायत श्री नितिन गोस्वामी के अनुसार,
1: देखिए वृंदा शब्द का अर्थ होता है तुलसी, वृंदावन का मतलब है तुलसी का वन, यानी कि ये जितना भी आप पूरा का पूरा जो वृंदावन था, चैतन्य महाप्रभु ने जो संवत चलता है विक्रम संवत 1515 में चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की, उस वक्त उन्होंने देखा, वो जो खोज कर रहे थे वो कृष्ण के ऊपर थी खोज, कि कृष्ण जी ने कहाँ पर जन्म लिया, कृष्ण जी ने कहाँ पर सारी लीलाएं की। तो उन्होंने ये अनुभव किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि श्री वृंदावन धाम, जिसको मैं धाम कह रहा हूँ, यहाँ पर सारी लीलाएं कृष्ण ने की है। क्रीड़ा स्थली यानी ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली जिसको कहते हैं, क्रीड़ा स्थली का मतलब है खेलने का स्थान जो है वो ठाकुर जी का श्री वृंदावन धाम है, यानी जितनी भी लीलाएं उन्होंने यहाँ पर की है वो वृंदावन धाम में की है। और धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ठाकुर जी का घर है। सर्वप्रथम ये राधा और कृष्ण का घर है, ये एक ऐसा घर है, एक ऐसा वन है, एक ऐसा तुलसी का वन है जिसको वृंदावन कहते हैं, जिसमें देवी देवताओं का प्रवेश भी वर्जित है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप गोपी और ग्वाले बनकर आ सकते हो, आप उनके सखा सखी बनकर आ सकते हो, आप देवी देवता बनकर नहीं आ सकते। इसी वजह से भगवान भोलेनाथ महादेव भी जब देव के रूप में आए थे तो उनको भी प्रवेश करने से निषेध था, उनके लिए भी रोक दिया गया था, इसीलिए उन्होंने साड़ी धारण करी, उन्होंने बिंदी लगाई, उन्होंने चूड़ी पहनी और वो गोपी रूप में यहाँ पर आए, इसीलिए यहाँ पर गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन।
0: यह वृंदावन धाम में नित्य प्रति हजारन की संख्या में श्रद्धालु आमे हैं, मन में श्रद्धा भक्ति और आस्था को भाव लेके, क्योंकि बांके बिहारी जी माधुर्य भक्ति के अवतार हैं। सेवायत श्री दिनेश गोस्वामी के अनुसार,
2: इसमें कोई शक नहीं है कि आज पूरे भारत के अंदर क्या विश्व के अंदर ही बांके बिहारी का बहुत नाम है। उसका कारण है ठाकुर जी के अद्भुत चमत्कार, जो आता है वो पाता है।
0: यह मंदिर लाल पत्थर से वर्गाकार भूमि में बनो है, या बनाएवे में लाल बलुआ पत्थर को प्रयोग करो गयो है, या तो मुख्य द्वार सफेद पत्थर से बनायो गयो है। सुंदर कारीगरी से बने हुए या के छज्जे बड़े ही मनोहारी और आकर्षक हैं, या कि स्थापत्य कला अत्यंत उत्कृष्ट है। मंदिर के नयन अभिराम द्वार के दो ओर चौखुंडी बनी है, ऊपर लटके भये सीधे छज्जे और सबसे ऊपर अद्भुत कौशल से बनी भई छतरी है, जामे पांच स्वर्ण कलश लगे भये हैं। अंदर प्रवेश करते ही दाई ओर बड़ो जगमोहन है, जामे विशेष पर्व और उत्सवन के अवसर पे बांके बिहारी जी

0: बंगलन में और सोने चांदी के सिंहासन में विराज के दर्शन दे में है। वही अंदर गर्भगृह है, जाने बिहारी जी नित्य विराजे हैं। सिंहासन के बीचों बीच श्री बांके बिहारी जी महाराज विद्यमान हैं। बिनके बामांग में उनकी प्रियतमा परम दुलारी श्री श्यामा प्यारी जी की गद्दी सेवा है और बिनके बगल में छोटे से चित्रपट के स्वरूप में स्वामी श्री हरिदास जी विराजमान हैं। श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा निधि से ही लाखों करोड़ों भावुक भक्तन को हृदय श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके संतृप्त हो जाए। बांके बिहारी जी भक्ति भाव के प्रकट भये हैं और संगीत श्रोमणि स्वामी हरिदास जी ने इन्हें अपनी स्वर सलीला में भक्ति के रस्ते अपने आराध्य को आनंदित करो है। श्री स्वामी हरिदास जी के संदर्भ में यह भी कहो जाए है कि वे स्वयं ललिता सखी के अवतार हते। बांके बिहारी जी की प्राकट्य लीला को वर्णन करते भये आप हैं सेवायत श्री मदन गोपाल गोस्वामी।
1: जिस तरीके से स्वामी हरिदास जी गाते थे उसी तरीके से भगवान उनके सामने लीला करते थे
2: जी।
1: ऐसा हुआ कि जो सारे संत थे जितने भी उस समय के, तो सबकी इच्छा हुई कि आप ठाकुर जी के साक्षात्कार करते हो, हमको भी करा। बोले मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की तो बोले कि उस दिन ऐसे ऐसे सबको बुला लो। जब सबको बुलाया तब सब संत इकट्ठे हुए, ब्रिज के जितने हरे राम देव व्यास हरिवंश जी और भी जो कोई थे जितने उस समय के उनके समकालीन, तो सबने देखा। तो जब राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हुए तो राधा जी के तेज को कोई संभाल नहीं सका, तो वो तो भगवान की आराध्य शक्ति है और उनका तेज जो है सिर्फ भगवान के सिवाय कोई दूसरा उसको संभाल ही नहीं सकता। तो सबकी आँख जब चकाचौंध हो गई तब तो राधा और कृष्ण एक दूसरे में समावेश और समावेश होकर अपने को विग्रह में परिवर्तित करके, हमारे जो बिहारी जी के विग्रह है वो कोई मामूली चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि जो जमीन में से खोदी निकली है या बनाई है, वो भगवान ने अपने को ही विग्रह में परिवर्तित करके स्वामी हरिदास जी को सौंप दिया।
0: प्रगट हेवे के बाद कई वर्षन तक श्री बांके बिहारी जी की सेवा को क्रम निधिवन में ही चलते रहे हो। कालांतर में आवश्यकता के अनुसार उन्हें संवत 1826 में एक छोटो सो मंदिर बनाए के वा में सेवा को क्रम आरंभ करयो गयो। धीरे धीरे जब एक विशाल भव्य मंदिर की आवश्यकता संपूर्ण गोस्वामी समाज को भई, तब बिन ने अपने शिष्य सेवकंते मिलने वाले धन को शनह शनह संग्रहित करो और कई वर्षन के पश्चात मंदिर निर्माण को कार्य आरंभ भयो। संपूर्ण गोस्वामी समाज ने तन मन धन ते सहयोग करो। किवदंती ऐसी भी है कि मंदिर को नक्शा और मंदिर के सर्वत्र उकेरे भये लता गुलमन की डिजाइन भी गोस्वामी समाज ने ही तैयार करी ही। या प्रकार ते लंबे धैर्य के बाद सन 1864 में यह बन के तैयार भयो। वास्तव में या के निर्माण में 70,000 रुपया की लागत आई ही। बांके बिहारी मंदिर की जमीन के लिए जमीन दान करने को श्रेय महाराज सवाई ईश्वरी सिंह को जाए है। सन 1748 में बिन ने दुसायत मोहल्ला में यह जमीन दान में दई। यह जमीन के एक हिस्सा पे ही बांके बिहारी जी को मंदिर बनो है।
3: करीब करीब सन 1858 में भरतपुर के राजा ने, जो आज आप बिहारीपुरा नाम आपने सुना होगा उसके बीच में ये स्थित है, तो भरतपुर के महाराजा ने वो बगीचा अपना दान में दिया। और इसका वर्णन उस समय के डीएम थे ग्राउसकर, उन्होंने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि यहाँ पर गोस्वामियों ने अपने निजी पैसे से मंदिर का निर्माण किया और उन्होंने इसमें अमाउंट भी लिखा है, करीब 70,000 रुपया उन्होंने बताया। और एक यहाँ शिलालेख भी लिखा हुआ है जिसमें करीब करीब 1858 का वर्ष दिया हुआ और 1864 में ग्राउस का उल्लेख भी है। तो इससे लगता है ये मंदिर का निर्माण इसी बीच में हुआ है, क्योंकि ग्राउस ने उसमें वर्णन किया है कि इसको बनाने में करीब करीब 7 साल का समय लगा। तो ठाकुर जी का प्रादुर्भाव निधवन में हुआ और बाद में यहाँ जमीन भरतपुर महाराजा ने दी, क्योंकि

0: करीब करीब ये भरतपुर रियासत में आती थी। आज भी वृंदावन के अंदर सारी रियासतों की जमीनें हैं।
1: सन 1864 में बने यह मंदिर में बाद में परिवर्तन होते रहे हैं।
0: देखिए, ये राजस्थान से कारीगर आए थे, उन्होंने बनाया था। ये पूर्णतः राजस्थान शैली में है और इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। जहाँ आज ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सबसे पहले वो वहाँ नहीं थी, वो एक नंबर गेट के सामने थे। और उसमें जिस तरह एक नंबर गेट पे छतरी है, उसी तरह के ऊपर छतरी थी। कालांतर में वो गिर गई। इसकी वास्तुकला के हिसाब से है, जैसे आप देखेंगे दक्षिण में जो आप चार नंबर गेट से निकलेंगे कि वो पक्ष ऊपर है, ऊंचा है। दक्षिण में ऊंचाई होनी चाहिए तो ऊंचा है, उत्तर नीचाई होनी चाहिए वो नीचा है। मतलब वास्तुकला की आप हर चीज देखेंगे। आप इसमें जो डिजाइन है बड़ी अद्भुत है। यहाँ जितने भी जो मेहराब बने हुए हैं बड़े प्राचीन है और राजस्थान कला से है। और जो टोटल ये पत्थर है वो राजस्थान का रेड पत्थर है।
1: मंदिर निर्माण के समय खुदाई में कछु अन्य श्री विग्रह प्राप्त भए, जिनमें श्री गिरिराज शिला, गणेश जी, हनुमान जी और देवी माँ के श्री विग्रह हैं। या के संदर्भ में जानकारी देते भए आप हैं श्री मदन गोपाल गोस्वामी।
2: ये जो है मंदिर जिस समय बना था उसकी नींव में निकले थे, ये एक शिला निकली थी गिरिराज जी की, एक हनुमान जी निकले थे, एक देवी निकली थी। ये तीन चीज जो है, चार चीज निकली।
3: तो ये गिरिराज जी के हमें दर्शन वहाँ होते हैं उस
2: वो तो होते हैं हर आदमी को,
3: लेकिन बाकी जो और श्री विग्रह आपने बताया देवी माँ का और हनुमान जी का,
2: देवी जी जो है इधर है खेरा देवत के नाम से है। हनुमान जी हमारे इसी में कोने में जो है बिहारीपुरा है, वहाँ पे हनुमान जी विराजमान है
3: जी।
2: एक गणेश जी भी निकले थे, गणेश जी जो है वहाँ मंदिर में ही अंदर विराजमान
3: जी जी।
1: वर्तमान समय में बांके बिहारी जी के पांच द्वार हैं, जिनकी संख्या में समय अनुसार ही वृद्धि भई है।
0: देखिए, प्राचीन में तो सिर्फ दो ही गेट होते थे, जो आज एक नंबर और चार नंबर कहलाते। बाद में जब भीड़ इतनी बड़ी और लोगों को जब परेशानी हो गई तो दो नंबर और तीन नंबर बनाया गया और पांच नंबर बनाया। तो अब इस समय जो है एक से लेकर पांच तक है, जिसमें एक और चार निकास द्वार है और दो और तीन प्रवेश द्वार है, क्योंकि वो पीछे की साइड में है, उसमें पांच द्वार है।
1: बांके बिहारी जी को यह स्वरूप अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है, तभी तो ये बांके हैं।
4: बांके मीन्स होता है टेढ़े, तो बांके बिहारी इसलिए नाम है क्योंकि बिहार करते हैं। और दूसरा, बांके जो है बिहारी जी को जब भी जहां से भी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने नेत्रों से टेढ़े हैं। ठाकुर जी की मुस्कान भी टेढ़ी है, जिसके लिए कहा जाता है कि टेढ़ी मुस्कान है ठाकुर जी की। और ठाकुर जी के लेग्स आप देखेंगे अगर उनके श्री चरण, तो वो भी क्रॉस है। और ठाकुर जी की कमर भी टेढ़ी है। तो जो बिहारी जी का जो स्वरूप है वो बांके रूप में, बांके मीन्स टेढ़े, तो बिहारी जी का जो पूरा स्वरूप है वो टेढ़े ठाकुर के रूप में, इसीलिए उनको टेढ़ा ठाकुर भी कहा जाता है। बांके बिहारी जी का जो पुराना नाम है वो है कुंज बिहारी, इसीलिए हम कहते हैं श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। ये एक महामंत्र है जिसमें बांके बिहारी जी यानी कृष्ण, राधा और स्वयं स्वामी हरदास जी आ जाते हैं। बांके बिहारी जी हैं एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों सुनेही। यानी बांके बिहारी जी का जो आप श्रृंगार देखेंगे तो दूल्हा भी बनते हैं, दुल्हन भी बनते हैं। यानी राधा रानी और बांके बिहारी जी कृष्ण, ये दोनों के मिले जुले रूप हैं। क्योंकि जब स्वामी हरदास जी ने इनको प्रकट किया तो स्वामी हरदास जी ने कहा, प्रभु पहले सेवा मैं किसकी करूंगा, आपकी करूं या ठाकुरानी की करूं, ठाकुर जी की करूं या ठाकुरानी की। तो उन्होंने एक प्राण दो देही रूप में दर्शन दिए। और जो स्वामी हरदास जी जो भजन साधना करते थे, जो भजन करते थे, जो रसोपासना उन्होंने की है स्वामी हरदास जी ने, वो कुंज रूप में ही की है। यानी कि प्रिया और प्रियतम का रूप, प्रिया और प्रियतम के मिले जुले रूप बांके बिहारी जी हैं, इसीलिए इनका पुराना नाम कुंज बिहारी है। और ये दो रूप में है, राधा और कृष्ण, यानी कि एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों सने।

तो अभी जो है आप सुन रहे थे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम कार्यक्रम के अंतर्गत। आज रश्मि शर्मा दी ये जानकारी जन जन के आराध्य श्री बांके बिहारी विनको इतिहास और निर्माण शैली। संयोजक थे कार्यक्रम के ओपी सिंह। तो अब साथियों कार्यक्रम में आओ आगे बढ़ें और सुने कछु लोकगीत।

0: सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेन देन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेन देन पर कोई मासिक सीमा, लेन देन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का नुकसान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला

0: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
4: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
5: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
6: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और

0: संरक्षण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ते के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, एआई और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमरीका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: आओ
1: देखो हम पर शकना लाओ, अब जो मिलना।
0: अच्छा जी,
1: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
0: तो अगले इतवार
1: जी सरकार।
2: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बाबुल की गलियां, इस फिल्म का गीत। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। और अब साथियों

आप सुन रहे थे अभी एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में, फिल्म थी सुहाग। इसका गीत अभी आपने सुना, और अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना सुन लीजिए कार्यक्रम से संबंधित। आज शाम को 6:50 से आप सुनेंगे हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। किसान भाई, बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल, जैसे पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था है, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव, खुरपका मुंहपका अफरा गलघोटू जैसे रोगों से बचाव की जानकारी हेतु इस बार हमारे साथ स्टूडियो में होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, और आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं यदि कोई समस्या है पशुओं से संबंधित। तो इसके लिए टेलीफोन नंबर 0565-25-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से और जानकारी ले सकते हैं। समय याद रखिए आज शाम 6:50। सूचना समाप्त थी और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना अभी अगर तुम ना होते का ये गीत। इस फिल्म के गीत को लिखा था गीतकार गुलशन बाबरा ने, संगीत दिया था आर डी वर्मन ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने अभी सुना बड़े दिल वाले फिल्म का ये गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर किशोर कुमार की। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ खूबसूरत से रुपहले सुनहरे और खुशनुमा जिंदगी के कई रंगों में सजे समरी गीत गीतों का गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो फिर आइए अब देखते हैं कार्यक्रम का ये अगला रंग कौन सा है।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए इसलिए,
0: अच्छी आपने बुलाया इसलिए,

0: शादी का इरादा है।
1: शादी? ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: muskodaj. Pelle žena a muskodaj.
1: Pelle žena a muskodaj. आप अभी सुन रहे थे फिल्म कल आज और कल का ये गीत। साथियों, इसी गीत आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

साथियों, प्रस्तुत है आज हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी जी के सपने और यथार्थ की चुनौतियां। वार्ताकार हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी।

श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हम कुछ इस संदर्भ में बात करेंगे कि गांधी जी के बारे में, जैसा कहते हैं कि ब्रज में वो कई बार आए, आज़ादी के उस आंदोलन में चाहे किसी भी कारण से आना जाना हुआ हो, लेकिन ये यथार्थ है कि गांधी जी ब्रज में आए, रहे, देखा, बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ समझा, लेकिन ये एक समय की विडंबना है कि वो चीज़ें हमारे और आपके संज्ञान में उस रूप में नहीं आ पाई जिस रूप में आना चाहिए था। उन्होंने जो कहा, जो सोचा और जो किया, वो उस जीवन की प्रयोगशाला में तप करके निकला जो एक व्यावहारिक तौर पर हमारे और आपके सामने है। तो गांधी जी के बहुत सारे जो सपने

0: जी ब्रज में आए, रहे, देखा, बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ समझा, लेकिन ये एक समय की विडंबना है कि वो चीज़ें हमारे और आपके संज्ञान में उस रूप में नहीं आ पाई जिस रूप में आना चाहिए था। उन्होंने जो कहा, जो सोचा और जो किया, वो उस जीवन की प्रयोगशाला में तप करके निकला जो एक व्यावहारिक तौर पर हमारे और आपके सामने है। तो गांधी जी के बहुत सारे जो सपने, जो देश को लेकर के, देश के लोगों को लेकर के थे, वो क्या थे, उनके सामने उनको पूरा होने में कितनी चुनौतियां हैं, यथार्थ तो उसमें कहाँ हमको एक आईना दिखाता है, ये आज हमारी बातचीत का मुद्दा है। और हमारे साथ हैं श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, जो सचिव हैं ब्रज संस्कृति शोध संस्थान वृंदावन के। मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: पहले तो उस बात को थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि गांधी जी इस ब्रज में कई बार आ रहे हैं। समय अलग हो सकता है, आने के सूत्र थे वो अलग हो सकते हैं, काम अलग हो सकते हैं, लेकिन कई बार वो आ रहे हैं और जा रहे हैं उसमें। तो वो आने जाने का जो क्रम रहा और उसमें ब्रज को उन्होंने किस रूप में देखा, समझा, लोगों से किस तरह की बातें कहीं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालें।
1: देखिए, महात्मा गांधी का मैं ब्रज में आगमन जो है उसे बहुत स्वाभाविक मानता हूँ।
0: जी
1: बहुत स्वाभाविक क्रिया थी और ऐसा हो नहीं सकता था कि एक कर्म योगी की भूमि में एक कर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ना आता,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा तो हो नहीं सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1915 में वो अफ्रीका से लौटते हैं, तो कुछ 4 महीने के अंदर में, जनवरी में वो लौटते हैं शायद, और उसके कुछ 3-4 महीने के अंतर वो यहाँ मथुरा में आते हैं और मथुरा भ्रमण करते हैं, वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन उस समय एजुकेशन के लिए, उस दौर में शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण हब की तरह उभर रहा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बनने से पहले वृंदावन उत्तर भारत के अध्ययन का और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और वो उन जगह जरूर जाते हैं जहाँ युवा अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि गुरुकुल विश्वविद्यालय, जैसे कि प्रेम महाविद्यालय, जैसे कि ऋषिकुल नाम की एक संस्था। दुर्भाग्य से वो संस्था उस समय थी और बाद में नहीं
0: नहीं
1: रही, पर
0: रहेगी।
1: उसके अभिलेख आज भी, ऋषिकुल के अभिलेख आज भी ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में संग्रहित हैं। 1915 का उसका एक अभिलेख, जिससे ये पता चलता है कि वो महात्मा गांधी वहाँ आए थे, वो संग्रहित है। तो महात्मा गांधी उन जगह पे जाते हैं जहाँ पे भारत का युवा जहाँ शिक्षा ले रहा है, भारत की युवा शक्ति जहाँ है वो वृंदावन में। हो सकता है मंदिरों में जरूर गए होंगे, परंतु उनके संदर्भ उतने स्पष्ट रूप से हमें नहीं मिलते, उनका अभिलेखीकरण शायद नहीं हुआ, परंतु ये अभिलेखीकरण जरूर हुआ है कि वो रामकृष्ण मिशन गए हैं, जहाँ सेवा का काम चल रहा है, जहाँ पे गुरुकुल में वो ब्रह्मचारियों को देख रहे हैं। तो जितने दौरे हुए हैं, एक दो दौरा ऐसा हुआ है जब वो मथुरा से ही होके चले गए हैं, अगर वो वृंदावन गए हैं तो पुनः पुनः, ये देखने वाली बात है कि वो पुनः पुनः उन्हीं जगह पे गए हैं।
0: जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रज में उनके आगमन स्वाभाविक तो हैं, लेकिन ब्रज आगमन में जिन चीज़ों पर वो प्रकाश डाल रहे हैं, जिन चीज़ों से वो सरोकार दिखा रहे हैं, जिन चीज़ों में लोगों से जाके मिल रहे हैं, वो उस समय की शिक्षा व्यवस्था है, उस समय की संस्कार की व्यवस्था है, चाहे गुरुकुल के माध्यम से,
1: और जो सेवा का काम हो
0: और
1: रहा
0: जो
1: है
0: सेवा का काम है, और
1: वृंदावन में, जो
0: जो
1: सेवा का काम चल रहा है
0: जी जी
1: उसको वो बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए काफ़ी उन्होंने लिखा भी है कि मैंने
0: जी
1: वहाँ देखा, ये काम जो है रामकृष्ण मिशन से काफ़ी प्रभावित हुए थे।
0: तो मतलब गांधी जी की नज़र उस समय आज़ादी के आंदोलन में भी जिन चीज़ों से एक समाज को जोड़ने में, लोगों को जोड़ने में, बल्कि लोगों को आगे ले जाने में जिन चीज़ों से मदद मिलने वाली है, उन पर वो सरोकार अपना दिखा रहे हैं।
1: विशेष
0: वो
1: रूप,
0: शिक्षा हो सकती है, वो समाज की समरसता हो सकती है,
1: बिल्कुल
0: वो लोगों के संस्कार हो सकते हैं, और वो लोगों में सेवा का जो भाव होना चाहिए वो हो सकते हैं, इन पे वो फोकस कर रहे हैं
1: देखिए,
0: उसमें।
1: इसका एक बड़ा चमत्कारिक असर मथुरा में देखने को मिलता है।
0: जी
1: जब 1919 में तब वो पंजाब जाना चाहते हैं, जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था
0: जी
1: तो वो पंजाब जाना चाहते थे और उनकी गिरफ्तारी यहीं हुई, और वो एक ब्रिटिश लोगों ने प्लान बनाया था कि मथुरा जंक्शन पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, परंतु मथुरा की जनता खड़ी हुई है और वो वो पूरी योजना जो है अंग्रेज सरकार की इसलिए विफल हो जाती है कि इस जनता को हम कैसे संभालेंगे अगर महात्मा गांधी की मथुरा में गिरफ्तारी होती है।

0: तो आप देखिए किस तरह से ब्रज महात्मा गांधी के साथ में खड़ा हुआ है।
1: खड़ा हुआ है।
0: 1929 में अंतिम बार महात्मा गांधी यहाँ आते हैं, पर आप 42 के आंदोलन को देखिए, मथुरा किस तरह से महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में खड़ा हो गया था। वृंदावन में पूरी आगरा कमिश्नरी में अकेला शहीद लक्ष्मण हुआ था, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसमें शहादत हुई थी, पर वृंदावन में ये काम हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि वो महात्मा गांधी का जो बार बार वृंदावन ब्रज में जो दौरा है उसने काम किया, यहाँ के युवाओं में वो जोश था
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वो जो चाह रहे थे, जो भारत का जो स्वतंत्रता समर है उसमें जो मथुरा का जो भूमिका थी, महात्मा गांधी जो चाह रहे थे वो मथुरा उनके साथ में खड़ा था,
1: जी, खड़ा भी और जुड़ा भी, और
0: जुड़ा भी।
1: समाज
0: जी
1: उस समय की जो जरूरत थी उसको निभाया उसमें। अब इसमें थोड़ा सा जो वर्तमान संदर्भों में हम देखें कि आज भी एक युवा के सामने कहें या समाज के सामने कहें, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य और चिकित्सा का मुद्दा है। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं उस समय थी, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं थे, सत्ता नहीं थी, निर्णय लेने की हमारे पास आज़ादी नहीं थी, लेकिन लगभग 70 साल आज़ादी को हो गए जिसमें हमारे पास सत्ता भी है, हमारे पास साधन भी है, हमारे पास काम करने के मौके भी हैं, लेकिन वो जो यथार्थ थे, वो जो हमारी ज़रूरतें थी, आज भी कहीं ना कहीं उसी रूप में है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी के सपनों की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी तो यही चाहते थे कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, आपस की समरसता हो। तो वो जो चीज़ें हैं, गांधी जी के सपने पूरे हमको चूंकि करने, तो कहाँ से फिर वो रोशनी मिलती है? क्या उन्हीं के विचारों से निकलेगी उसमें?
0: देखिए, दरअसल महात्मा गांधी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंद स्वराज,
1: जी
0: जो उनके भारत में भी सक्रिय होने से, क्योंकि महात्मा गांधी भारत में 1915 में सक्रिय हुए थे और 1909 में अफ्रीका से लौटते समय हिंद स्वराज लिखा गया था। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह पूरा महात्मा गांधी का जो भारत को लेकर के जो विचार है
1: जी
0: वो हिंद स्वराज के अंतर्गत है। और बहुत बड़ी पुस्तक नहीं
1: हाँ,
0: है
1: छोटी
0: पर बहुत
1: पुस्तक
0: छोटी पुस्तक है और
1: जी।
0: महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं ये मानता हूं कि महात्मा गांधी ने 1921 में हिंद स्वराज का एक संस्करण निकाला था, तो उसमें ये कहा था कि मैं ये नहीं मानता कि जो मैंने विचार हिंद स्वराज में 1909 में कहे थे उन पर मैं अडिग हूं और कट्टरता से उन्हें माना जाए, परंतु उनका जो तत्व है, एसेंस है, वो हमें समझना चाहिए।
1: जी
0: जो भारत की मूलभूत समस्याएं हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो गांधी जी के सामने थी वो आज भी हैं, जैसे कि महिला मुक्ति से लेकर की जो समस्या है आज हम जानते हैं कि ये हालांकि काफी काम इस क्षेत्र में हो
1: हुआ
0: चुका
1: है
0: है,
1: जी।
0: जैसे कि दलितों की समस्या है, भारत की समस्याओं में एक दलितों की समस्या है और उस पर काम हुआ, एक समस्या भारत की भाईचारे की है, अल्पसंख्यकों की एक समस्या है और उस पर काफी काम हुआ है और करने की जरूरत है, पर फिर भी ये समस्याएं आज उसी तरह से, थोड़े दूसरे तरह से मुंह बाएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। और हमें ये देखना चाहिए कि भारत का जो विचार है वो वास्तविकता में, जो भारतीय संस्कृति का विचार है वो महात्मा गांधी का ही विचार है।
1: जी
0: अगर हम जिस तरह से विचारों के प्रभाव में जाते हैं, तो जो भारतीय संस्कृति के बिल्कुल अनुरूप विचार है वो हमें, जो समन्वय का मार्ग है,
1: जी
0: जो भारतीय संस्कृति के अंदर एक खास तत्व है समन्वय का तत्व, वो सैव्य शाक्त जैन और बौद्ध सबको लेकर के चल सकता है, वो मुस्लिम संस्कृति की चीज तत्वों को भी जो लेके चल सकता है, भारतीय और हिंदुत्व के अंदर में भी एक विशेष प्रकार की समन्वय की भावनाएं,
1: जी जी जी
0: हम सबको लेके चलना चाहते हैं। और भारत का विचार इसलिए आज भी, गांधी का विचार इसलिए प्रासंगिक है कि वो समन्वय का मार्ग है, उसमें सबके लिए, शोषितों के लिए जगह है, महिलाओं के लिए जगह है, उसमें रोजगार की बात करी जाती है, उसमें स्वराज की बात करी जाती है। और महात्मा गांधी का जो स्वराज है वो देश की आजाद, वो कहते भी थे
1: जी
0: कि देश की आजादी तो ये एक छोटी बात हो सकती है, स्वराज तो अंदर आत्मा से होता है और अंतः आत्मा का ये विचार है। खादी, जैसे खादी को लेकर के कहा
1: जी
0: जाता है, खादी कोई कपड़ा या चरखा चलाना
1: खादी संस्कृति
0: वो
1: है
0: एक संस्कृति है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: एक संस्कृति है।
1: हाँ
0: और हिंद स्वराज में उन्होंने यही बात बार बार कही है।
1: हाँ
0: मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ।

0: हूँ कि उन्होंने रेलवे का शुरुआत में हिंद स्वराज में ये कहा है कि भाई रेलवे ठीक नहीं है और ये भारत को सभ्य बनाने की जो प्रक्रिया है ये नहीं है, हम तो पहले से ही सभ्य हैं, हमें कोई सभ्य नहीं बना सकता। जो सभ्य बनाने की जो प्रक्रिया है वो महात्मा गांधी को ये लगा कि ये जो अंग्रेज हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें सभ्य बना रहे हैं, तो हम असभ्य थे नहीं,
1: भारत में
0: हमारा आभूषण है, जब ये लोग जंगली थे तब हमसे, तब
1: यूरोप का पुनर्जागरण 1600 में हो रहा है और हमारी
0: पुरानी सभ्यता है। तो सभ्य वाले मामले में उन्होंने ये कहा कि साहब ये रेलवे जो है इससे भारत की हानि हो रही है। तो हालांकि महात्मा गांधी ने यह कहा है कि मेरे जो विचार हैं वो समय के साथ में बदले हैं, मुझे शायद याद आ रहा है कि किसी व्यक्ति ने यह कहा है कि साहब बापू आपके विचार जो है बहुत तेजी से बदले हैं और आपको मैं लगातार पढ़ता आया हूं, तो आप तो काफी आप पहले कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं ये कहा कि मैं रोज सीख रहा हूं, मैं रोज चीजों को आत्मसात कर रहा हूं, हो सकता है पर मेरा जो मूल एसेंस है, मूल विचार है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मैं जो लकीर का फकीर बनने की बात मैं नहीं कह रहा
1: हूं। शायद ये जो बात है कि कहीं ना कहीं गांधी जी के भी जो मूल विचार है भारतीय जो सनातन संस्कृति है वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी कितना पहले हम ये कह चुके हैं भाई वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, तो जब सबके उत्थान की सबके कल्याण की भावना जब होनी चाहिए समाज में और सत्ता में, तो वहीं से तो वो विचार निकल के आ रहा है। समय की ये जरूरत होती है, हम उसमें काट लें छाट लें कुछ जोड़ लें कुछ घटा लें, लेकिन मूल विचार तो कहीं ना कहीं वही है। खादी संस्कृति पे जैसे आपने कहा, मैं थोड़ा सा आपसे ये प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसे खादी की आप बात कर रहे हैं, एक समस्या आज जो आपने जिक्र किया कि बहुत सारी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की है, तो खादी कहीं ना कहीं खादी का जो उनका मूल विचार है वो हर व्यक्ति को एक अवसर भी देता है और काम का मौका भी देता है, तो जो खादी की संस्कृति के माध्यम से कहीं ना कहीं हम व्यक्ति को रोजगार भी दे रहे हैं।
0: देखिए खादी का जो विचार है वो आज और प्रासंगिक होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो मानवों की जो शक्ति है, हमारे पास जनसंख्या की जो शक्ति है, उसका हम उपयोग कैसे करें। औद्योगिकीकरण का ये जो जिसमें मशीनीकरण हो रहा है उसमें मानव श्रम का हम उपयोग कैसे करें, तो खादी उसके लिए सबसे अच्छा विचार है।
1: जी, गांधी जी के विचार में और दर्शन में हर चीज का हमको एक समाधान मिलता है, और वो समाधान तभी होगा जब हम उस विचार तक जाएंगे, उससे जुड़ेंगे और उसको अपने व्यवहार में लेकर के आएंगे। तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं दूर जाना पड़े, दूर देखना पड़े, गांधी से जुड़ने की जरूरत है। तिवारी जी, आप आए और हमारे श्रोताओं से जुड़े, अपने विचार उनके साथ बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ताक्रम के अंतर्गत आज लक्ष्मी नारायण तिवारी से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता, विषय था गांधी जी के सपने और यथार्थ की चुनौतियां।

साथियों, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज शाम 6:50 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों के डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। विषय रहेगा पशुओं बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल, और जैसे कि मान ली पशुओं का आहार व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव, खुरपका मुंहपका, अफरा, गलघोंटू जैसे रोगों के बचाव की जानकारी हेतु उपस्थित होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। समय ध्यान रखिए 6:50 और सूचना समाप्त हुई और समय हो चुका है जिले की हलचल का, तो बस सबसे कुछ ही देर में।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश बाबू का।
1: पीलीभीत में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समेत दिशा की बैठक गांधी सभागार में जिले के सांसद एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी

0: और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, बाढ़खंड, विद्युत विभाग, जल जीवन मिशन, वन विभाग, पशुपालन विभाग, पूर्त विभाग, लोक निर्माण विभाग, NHAI, कृषि विभाग, बेसिक शिक्षा आदि विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की, प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या की जानकारी प्राप्त की तथा धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। बाढ़ एवं कटान से बचाव की समीक्षा में अधिशासी अभियंता बाढ़खंड द्वारा बताया गया कि जनपद में कुल 11 परियोजनाएं अनुमोदित हुई हैं, जिनके कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए गए हैं। विद्युत विभाग की समीक्षा में अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा बताया गया कि जनपद में 119 गाँव चिन्हित हुए हैं, जिनमें शीघ्र ही विद्युतीकरण कराया जाएगा। पीलीभीत जिले में 2 से 5 अक्टूबर के बीच लगने वाले विशेष शिविर में दिव्यांगों के कृत्रिम हाथ निःशुल्क लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया,
1: 2 से 5 अक्टूबर तक अंकुर राइस मिल है निःशक्त जनसेवा संस्थान है और इनाली फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 लोगों को हाथ लगने हैं। अभी लगभग 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जनपद या पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी यहां पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और 2 से 5 अक्टूबर के बीच में उसको वो कृत्रिम हाथ मुफ्त में लगेगा, जिससे व्यक्ति काम करने लायक हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी पहल है जो जनपद पीलीभीत में हो रही है।
0: पीलीभीत जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाई गई लोक अदालत में 2,13,960 वादों का निस्तारण हुआ। इसमें 11,05,13,960 रुपए के बैंक ऋण एवं अन्य मामले आपसी सुलह समझौते से निपटाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव अरुण कुमार यशुदास ने बताया कि जिला न्यायालय के 3,955, बैंक ऋण के 965, श्रम वाद 167, उपभोक्ता फोरम के 10 और परिवार न्यायालय में लंबित 20 वादों का निस्तारण इस लोक अदालत में कराया गया। पीलीभीत में गन्ना विकास विभाग 1,207 गांवों के 2,00,000 से अधिक गन्ना किसानों को प्राथमिक गन्ना कैलेंडर उपलब्ध कराएगा। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया, गन्ना सर्वे के बाद सट्टा प्रदर्शन भी पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है। समितियों पर सट्टा मेले आयोजित किए जा रहे हैं, किसानों को प्री सर्वे कैलेंडर वितरित किए जा रहे हैं और इन्हें ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है। पीलीभीत में 15 करोड़ की लागत से एपीडा द्वारा खोले गए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फार्म का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया। मेरठ के वादे आदेश का दूसरा बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण व निर्यात केंद्र है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि इस केंद्र का लाभ पीलीभीत ही नहीं देश के दूसरे राज्यों और दुनिया भर के अन्य देशों के किसान भी उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा,
2: जनपद विश्व भर में विश्वास दिलाता हूँ, बासमती चावल के उत्पाद के लिए जाना जाएगा और पीलीभीत जनपद के किसानों की मेहनत का, बासमती का वो चावल और वो दाना देश के और विश्व के कोने कोने तक पहुँचेगा।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पीडा के इस केंद्र का लाभ पीलीभीत के अलावा प्रदेश के 29 जिलों के किसानों को भी मिलेगा जिन्हें बासमती उत्पादन में GI टैग प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायक साबित होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश धान, गेहूं, गन्ना और चीनी उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी है और सरकार ने फसलों का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। श्री शाही ने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली माफ करने, किसान सम्मान योजना, खाद, बीज, ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों पर करोड़ों की सब्सिडी देने सहित कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान यहाँ लगाए गए सरकारी विभागों के स्टालों और कृषि फार्म का भी निरीक्षण किया गया और समूह तथा अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। पीलीभीत में बाढ़ और बरसात से जलभराव होने से फसलों में भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी गन्ने की फसल गिर गई है और धान की फसल में कई तरह के रोग कीट लग गए हैं। पानी घटने के बाद शारदा नदी धनारा घाट के पास तेज गति से कटान कर रही है। रामनगरिया मेला स्थल के अलावा कई एकड़ कृषि योग्य जमीनें भी नदी में समा गई हैं। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और जिलाधिकारी ने नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाने के निर्देश दिए हैं। पूर्णपुर विधायक बाबूराम पासवान ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके लोगों को अतिशीघ्र मुआवजा दिलाने को कहा है।
3: पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
4: अलीगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने श्री अकलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित इको फ्रेंडली श्री गणेश प्रतिमा वितरण समारोह को संबोधित किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पीओपी की प्रतिमाओं से न केवल नदियां प्रदूषित

0: होती हैं, बल्कि जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु भी हो जाती है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल पर भी जोर दिया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश गौड़ ने कहा कि मिट्टी की प्रतिमाओं की स्थापना और विसर्जन सनातन की परंपरा है, इससे नदियाँ भी जीवित होती है। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने कहा,
1: इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, इससे जब विसर्जन के समय आप नदियों में भी प्रदूषण नहीं फैलेगा, उसमें अनाज भी पड़ा हुआ है, तो जीव जंतु जो नदियों में है वो भी इससे पोषण पाएंगे और नदियां समृद्ध होंगी।
0: अलीगढ़ जिले में H1N1 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RN सिंह के निर्देशन में संदिग्ध मरीजों की जांच, संक्रमित मरीजों की निगरानी तथा आवश्यक उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 232 RT-PCR जांच कराई जा चुकी है, जिनमें अब तक 57 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 28 मरीज स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं, जबकि 17 मरीजों का घर पर उपचार एवं चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। 4 नए मामले भी प्रकाश में आए हैं। जिले में H1N1 से अब तक किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 103 लोगों का टीकाकरण भी कराया जा चुका है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों एवं संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों में H1N1 के उपचार में प्रयुक्त आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि घबराने की बजाय सावधानी बरतें। सर्दी, खांसी, बुखार अथवा सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होने पर चिकित्सक परामर्श लें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्थिति पर निरंतर नजर रख रही है तथा आवश्यकता अनुसार जांच, उपचार और निगरानी की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जा रही है। अलीगढ़ जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को नई गति देने के लिए जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देशन में जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की है। इसके तहत IAS, PCS सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन बैच का निःशुल्क सब्सक्रिप्शन उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी जरूरतों को समझने के बाद जिलाधिकारी ने आधुनिक डिजिटल शिक्षा को उनकी तैयारी से जोड़ने की दिशा में पहल की। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत नीट, JEE, इंजीनियरिंग एवं NDA की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जोड़ने की योजना है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की प्रभावी मॉनिटरिंग और नियमित समीक्षा का परिणाम अब CM डैशबोर्ड की रैंकिंग में भी दिखाई देने लगा है। अगस्त माह की विकास कार्यों की समीक्षा में अलीगढ़ ने प्रदेश में 37वीं रैंक हासिल की है, जबकि जुलाई में जिला 42वें स्थान पर था। इस तरह एक ही माह में जिले ने 5 पायदान की उल्लेखनीय छलांग लगाई है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में CM डैशबोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में यह प्रगति सामने आई। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों के समन्वित प्रयासों और जिलाधिकारी की लगातार मॉनिटरिंग से जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास एवं विकास कार्यों में गति, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि CM डैशबोर्ड पर रैंकिंग सुधार के साथ साथ शासन की योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन और आम जन को समय से लाभ मिलना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल।
4: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

श्रोताओं, आज हम बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। वह सभी कार्य, कारण और स्थितियाँ जिनसे प्रकृति दत्त पर्यावरण क्षतिग्रस्त, नष्ट, विकृत अथवा विलोपित होता हो, पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। इनसे मनुष्य के जीवन को खतरा होता है, आर्थिक हानि, जीवन की गुणवत्ता का ह्रास और अनेक संकट उत्पन्न हो सकते हैं जिनका सामान्यतया निदान संभव नहीं है। यदि निदान और कारणों की जानकारी हो भी जाए तो उपचार अथवा समाधान और भी कठिन है। यद्यपि बढ़ती विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा पर्यावरणीय विज्ञान और अभियांत्रिकी ने इस दिशा में काफी प्रगति की है और विभिन्न पर्यावरणीय संकटों से बचने अथवा कम करने के उपाय भी बहुत सारे बताए हैं। पर्यावरणीय समस्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जा रही हैं, प्राकृतिक पर्यावरणीय संकट और मानवकृत पर्यावरणीय बाधाएं। प्राकृतिक पर्यावरणीय संकट पर्यावरण की ऐसी स्थितियां हैं जिनसे अनजाने ही मानव जीवन की हानि होती है और विविध प्रकार की स्थायी अथवा अस्थायी संपत्ति की क्षति होती है। इन्हें ही होनी भी कहा जाता है। भाग्यवादी अथवा धार्मिक भावना वाले लोग इसे ईश्वरीय प्रकोप कहते हैं। इनमें बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, बिजली, कोहरा, बर्फ का गिरना, पाला पड़ना, ओलावृष्टि, गर्म व ठंडी हवाएं, तूफान, बवंडर आदि सम्मिलित हैं। इनका प्रकोप कब और कैसे होगा, इसका पूर्वानुमान सभी स्थितियों में अत्यंत कठिन है। प्राकृतिक पर्यावरणीय संकटों के लिए मानवीय क्रियाएं सिद्धांततः कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, लेकिन अब पर्यावरणीय विशेषज्ञ कुछ संकटों के लिए मनुष्य को उत्तरदायी मानते हैं, जैसे अधिक वनों की कटाई से बाढ़ आना, सूखा की घटनाओं में वृद्धि अथवा भूगर्भीय जल के अधिक दोहन से रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृद्धि का होना और भूकंपों की संख्या में बढ़ोतरी का होना आदि ऐसे ही कारण हैं। जलवायु परिवर्तन में भी अब मनुष्य के क्रियाकलापों को जोड़ा जाने लगा है, जिससे पाला पड़ना, कोहरा, ओलावृष्टि जैसी भयंकर घटनाओं को मदद मिलती है। इन संकटों को दैविक प्रकोप के रूप में मानकर भी यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि किसी अमुक दुर्घटना की गंभीरता क्या है। उसके मापन हेतु अलग अलग घटनाओं के लिए अब अलग अलग मापने बनाए गए हैं, लेकिन मोटे रूप से दो बातों से इनका मूल्यांकन हो पाता है। पहला कि इसका प्रभाव क्षेत्र कितना है और दूसरा इससे कि जान मान की हानि कितनी हुई। मानवकृत पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत इनमें वो समस्याएं ली जाती हैं जो स्पष्टतः किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न हुई हैं और पर्यावरण को विकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं। आज बढ़ती आबादी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमने स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया हो, ऐसी बात नहीं है। हमने हर वस्तु का दुरुपयोग किया और आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की लालसा की। इससे कालांतर में वस्तुओं की उपलब्धता में तो कमी आई ही है, बल्कि साथ में अनेक लोगों के लिए अनुपलब्धता का कारण भी बन गई। जैसे जल विश्व में असीमित है और आसानी से उपलब्ध भी है, पर अपने गलत व्यवहार से, उसके गलत दुरुपयोग से हम उसे ठीक से उपयोग में नहीं लाए तथा जो कुछ भी उपलब्ध था उसे प्रदूषित होने से भी बचा नहीं सके। अतः आज हम पूरे विश्व के अनेक देशों में पीने योग्य पानी का घोर संकट हो गया है। इसी प्रकार एक और समस्या पर भी पूरा विश्व चिंतित सा दिखाई देता है, जो है रहने के स्थान की समस्या। यह समस्या भी पूर्णतः बढ़ती आबादी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी पर आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे स्थान का अभाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा भी पर्यावरण में अनेक समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण की, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेगिस्तानता, भूमि क्षरण, वन्य जीवों की कमी, भूमि का असंगत उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, परिवहन के बढ़ते साधन तथा अस्त व्यस्त पारिस्थितिकी तंत्र, इन सब में शामिल है। इस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे

0: आसपास हर मनुष्य के आसपास विभिन्न तरह की पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनसे आज मनुष्य लगातार जूझ रहा है। इन पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याएं, और नीलिमा शर्मा इस विषय पर जानकारी दे रही थी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम भेज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रही हैं सुरभि शर्मा।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: संयोजक हैं ओपी सिंह।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आप आगे बढ़ेंगे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते एक नई शुरुआत के साथ, नए और नवमंग और उत्साह के साथ। आज का विचार है सदा प्रसन्न रहें। अगर आप जीवन में सदा प्रसन्न रहेंगे तो आपकी समस्याएं खुद ब खुद आपसे दूर चली जाएंगी। प्रसन्न मन एक अच्छे विचार के साथ अपना जीवन यापन करता है। आपकी सोच सकारात्मक होती है, आपका व्यक्तित्व सकारात्मक होता है और आपके कार्य भी सकारात्मक होते हैं। यही सकारात्मकता आपके जीवन को नई दिशा देती है, क्योंकि जब आप प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। आप सब काम बड़े मनोयोग से करते हैं और इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसी विषय को लेकर कि हम अगर प्रसन्न रहेंगे तो हमारा हृदय भी स्वस्थ रहेगा, हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। आइए सुनते हैं ये विशेष जानकारी। जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। हमारा शरीर स्वस्थ तब माना जाता है जब सभी शरीर के सभी अंग प्रत्यंग स्वस्थ हों, सुचारू रूप से कार्य करें। हृदय को कहा जाता है कि हमारे शरीर का मिड सेंटर, यानी कि जीवन का जो रेखा जिसे कहा जाए तो उसे हृदय माना जाता है। एक स्वस्थ हृदय स्वस्थ शरीर के लिए कितना उपयोगी है, क्या अगर व्यक्ति का हृदय स्वस्थ है तो पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाता है, इन्हीं सारे विषय को लेकर हमने जानकारी हासिल करी। हमारे साथ हैं,
1: मैं डॉक्टर भारती गर्ग, क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट फिजिशियन, भारती हॉस्पिटल मथुरा में पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूँ।
0: मैम, कहा जाता है कि एक स्वस्थ हृदय स्वस्थ व्यक्ति के लिए होना चाहिए, क्या ये सही है?
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा जो शरीर है ये विभिन्न अंगों से बना हुआ है और इसमें जो कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा दिल है या हमारे लंग्स हैं या हमारा लिवर है या किडनी है, वैसे तो सभी अंग जो है जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर इन चार अंगों को हम वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं। और इनमें हार्ट जो है वो जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत, ये
0: कहा। वाइटल ऑर्गन से आपका तात्पर्य उपयोगी अंग, अगर हम उसे सही सरल भाषा में एक आम आदमी के लिए जी जानना चाहे तो।
1: वाइटल ऑर्गन्स ये है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। हमारा शरीर को ऑक्सीजन यानी जो प्राणवायु होती है उसकी आवश्यकता होती है, और ये ऑक्सीजन जो हम जो है एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लंग्स इसमें जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, लंग्स इसका प्यूरिफिकेशन करता है और उसके बाद ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर हार्ट अपना वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हार्ट हमारे सारे शरीर

0: में जब तक ब्लड नहीं पहुंचाएगा और ये ऑक्सीजन उस ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगी, तब तक हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारा शरीर काम नहीं करेगा। चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो या मसल्स हो, हमारा हर एक्शन जो है, हमारा कोई भी कार्य है, पाचन तंत्र है, ये सब जो है इसी ब्लड की सप्लाई और इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है, तो ये शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का कार्य जो है हार्ट करता है। तो हार्ट इसलिए वाइटल ऑर्गन कहा जाता है।
1: एक स्वस्थ हृदय की क्या पहचान होती है?
0: स्वस्थ हृदय की पहचान ये है कि अगर अभी हम लोग सुबह उठ रहे हैं, अपने सभी कार्यों को कर रहे हैं, या हम कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या अपने सभी कार्यों को हम सुचारू रूप से बिना जो है किसी तकलीफ के कर रहे हैं, तो ये आमतौर पर माना जाता है कि हमारा हृदय स्वस्थ हृदय है। पर अगर चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों, अगर कुछ इस तरह के लक्षण आने लग जाएँ कि वो बहुत जल्दी उनको थकान होने लग जाए, या वो अपने कार्यों को नहीं कर सकते हैं, या ज़्यादा एक्जर्शन नहीं कर सकते हैं, ज़रा सा भी चलते हैं या एक्जर्शन करते हैं, या खेलते हैं तो वो उनकी सांस फूलने लग जाती है, या उनकी धड़कन तेज़ होने लग जाती है, तो या उनको चक्कर आने लग जाते हैं, या आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाता है, तो ये लक्षण है कि कहीं पर कुछ ना कुछ उनके हार्ट से संबंधित कोई समस्या है। अगर वो एडल्ट हैं, बड़े हैं, तो उनको छाती में दर्द होना और घबराहट होना, सांस फूलना, इस तरीके के लक्षण उनको आ सकते हैं। तो इन्हीं लक्षणों को देख करके ये बाद में फिर केवल ऊपर से देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि इनको ये इनका हृदय स्वस्थ है या अस्वस्थ है। उसके लिए वो उनका प्रॉपर चेकअप करना पड़ता है, उनमें ECG है, इको है, TMT है, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, तो वो सब बेसिक टेस्ट करके ही ये बताया जा सकता है कि इनका हृदय जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ है या इनको कोई किसी तरीके की कोई परेशानी है।
1: अगर किसी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आ जाए, उसको घबराहट हो रही है, उसको सीने में दर्द महसूस हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप वो क्या उठाए? अक्सर होता है कि आदमी या तो घरेलू नुस्खे अपनाता है या नीम हकीम खतरे जान वाली स्थिति हो जाती है, अरे कुछ कर लेंगे, सोशल मीडिया सबसे पहले स्क्रॉल करता है।
0: जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि किसी को अगर चेस्ट पेन है या उसको घबराहट है या इस तरह के कोई लक्षण है, जो आजकल तो वैसे इसी अवेयरनेस की, पब्लिक पे अवेयरनेस की वजह से ही ये जो है वर्ल्ड हार्ट डे हम लोग हर साल जो है मनाते हैं, इस बार भी जो है 29 सितंबर को ये हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे छाती में दर्द है और इस तरह की कोई परेशानी है, तो किसी भी प्रकार के घरेलू नुस्खे या सोशल मीडिया की सहायता ना लेकर के सबसे पहले उसको जो है चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
1: कोई भी चिकित्सक या जो
0: हाँ,
1: हृदय
0: जो
1: विशेषज्ञ
0: उनके
1: हो।
0: नज़दीक में हो उनके पास जा सकते हैं, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, जो भी अवेलेबल नज़दीक में हो
1: जी,
0: वहाँ
1: बहुत
0: जाके।
1: प्यारी बात आपने
0: जी
1: बोली, जो भी नजदीक हो उनके पास जा सकते
0: जी
1: हैं।
0: ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत दूर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाया जाए। सबसे पहले बेसिक टेस्ट उनका ECG कराना चाहिए, और ECG में अगर उनको कोई परेशानी आती है तब वो फिर आगे के टेस्ट के लिए वो स्पेशलिस्ट के पास पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये उनको देखना ज़रूरी है कि उनको क्या, ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक ही हो सकता है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया
1: जी
0: हो सकता है उनको कोई और परेशानी हो, कोई सांस की परेशानी हो, या कोई हार्ट रिदम की, जिसे हम करंट की या धड़कन की प्रॉब्लम है, वो हो सकता है। तो सबसे पहले उनको जो है ये टेस्ट करा करके ये क्लियर कर लेना चाहिए कि ये समस्या हार्ट से संबंधित है या ये किसी और अंग के खराब होने की वजह से ये परेशानी आई
1: जी
0: है।
1: अक्सर लोग गरिष्ठ भोजन करते हैं तो उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे
0: जी
1: कहीं ना कहीं छाती में भी दर्द, सीने में भी दर्द होता है।
0: जी
1: तो ये भी एक स्थिति है, एक स्थिति भी है कि आपके सीने में दर्द है, कहीं ना कहीं आपके हृदय में कोई समस्या है। तो इन दोनों में काम आदमी डिफ्रेंशिएट कैसे
0: हाँ, ये
1: करेगा?
0: बहुत अच्छा आपने बताया कि दोनों ही चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं। बहुत बारी हार्ट का दर्द होता है, अटैक का दर्द होता है, और लोग समझते हैं उनको गैस का प्रॉब्लम हो गया है, और बहुत बारी उनको गैस का परेशानी की वजह से दर्द हो जाता है, तो वो समझते हैं कि हमें हार्ट का दर्द है। तो निदान सिंपल इतना ही है कि कैसा भी दर्द है, अगर वो सीने में उनको दर्द है तो अपने गैसेस पे ना जा करके वो चिकित्सक से सलाह लें, अपना टेस्ट कराएं, और उस चीज़ को वो है वो क्लियर करें कि ये दर्द उनको एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, हार्ट का दर्द है या गैस का दर्द है, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का बहुत भारी नुकसान हो जाता
1: जी
0: है, उनको
1: बिल्कुल
0: अटैक पड़ जाता है,
1: जी
0: और वो यही

0: समझते रहते हैं कि हमको गैस का दर्द है,
1: जी
0: और स्पेशली जो लोग डायबिटीज़ है जिनको, या जिनको पहले से हार्ट ब्लड प्रेशर है, या उनको कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, तो या वो स्मोक कर रहे हैं, तो इस तरह के जो रिस्क फैक्टर्स जिन लोगों में हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए कि अगर इस तरह का उनको घबराहट है या सीने में दर्द है या पसीना आ रहा है, तो उनको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जा करके अपना चेकअप कराना चाहिए, आगे का उपचार उनको कराना चाहिए उस
1: डॉक्टर
0: पर।
1: साहब, आपने जिक्र किया स्मोकिंग, क्या स्मोकिंग, टेकिंग ऑफ अल्कोहल हमारे हृदय के लिए खतरनाक है?
0: जी बिल्कुल खतरनाक है।
1: कोई भी, या पान मसाला हो, गुटखा हो, कोई भी ऐसा व्यसन जो कहीं ना कहीं सेहत के लिए हानिकारक है, या वो
0: जी
1: हृदय के लिए भी हानिकारक है?
0: बिल्कुल हानिकारक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर में माना जाता है। जो लोग स्मोक करते हैं तो उनके जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो बीमारी होती है, जो कि हार्ट अटैक या जो हार्ट की नसें जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं ब्लॉकेज आ जाना,
1: जी
0: तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपने एक तो खान पीन का, जिस प्रकार का जो फास्ट फूड का चलन हुआ
1: बिल्कुल
0: है, और लोगों में जो है एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो इस पे अगर, क्योंकि कुछ चीज़ें नॉन मॉडिफाइबल है, जैसे इंसान की उम्र है, या उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, या उसको एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज ऑलरेडी डेवलप हुई है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल है। इस पे हम सिर्फ प्रिवेंशन किया जा सकता है और अर्ली अवेयरनेस से इलाज हो सकता है। पर ये जो चीज़ें हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, मोटापा है, मेटाबॉलिक डिसीज़ है, तो स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल लेना अधिक मात्रा में लेना, तो ये जो है हार्ट के लिए नुकसान करता है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनमें हार्ट अटैक की रिस्क आम पब्लिक से ज़्यादा देखी जाती है, तो ये बिल्कुल नुकसान करता है। बाकी जो टोबैको, आप जो पान मसाला कहा है, तो ये मुख के कैंसर में इसका ज़्यादा इसका रोल रहता है, और अल्कोहल जो लिवर डिसीज़ को ज़्यादा करता है। तो
1: जी
0: ये सभी चीज़ें कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी अंग को खराब करती हैं, तो इनका सेवन नहीं करना ही ज़्यादातर हम लोग सलाह देते हैं कि इसका व्यसन जो है नहीं करना चाहिए।
1: जी
0: इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये सभी परेशानियाँ जो है एग्रेवेट हो जाती हैं।
1: यानी मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी
0: जी
1: समस्याएं जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से रिलेटेड है, वो हमारे हृदय पर सीधा असर डालती है।
0: बिल्कुल असर डालती है। मानसिक तनाव जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इस तरह से जब तनाव में व्यक्ति रहता है, तो इस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो उसके हार्ट की धड़कन को बढ़ाते हैं, और हार्ट को कॉन्स्टेंटली ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसका कहीं ना कहीं जो है, अगर उसके ऑलरेडी ब्लॉकेज है एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस नेचुरली प्रोग्रेस होती है ना, एक एज के बाद में ये तो सबको होती ही है, ये डिसीज़ किसी को जल्दी किसी को लेट, तो मानसिक तनाव की वजह से ये प्रोसेस जो है और ज़्यादा बढ़ता है, और हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल भी सजेस्ट करते हैं इसके लिए। तो योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं जो स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। साथ में अल्कोहल है, टोबैको है, खान पीन के परहेज इस पर बहुत ज़रूरी है। ओवरवेट या ओबेसिटी है, उसको टैकल करना है, तो सिंपल एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, जैसे कि ज़्यादा बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी है, जैसे मॉर्निंग वॉक करना है, तो छोटे छोटे स्टेप्स है मॉर्निंग वॉक करना है, या जो यंग लोग हैं वो लिफ्ट्स वगैरह ना लेके स्टेयर्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वॉकिंग है, ट्रेडमिल है, तो स्विमिंग है, ये अच्छी एक्सरसाइजेज है जो हार्ट के लिए को हेल्दी रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है।
1: आज के समय में माता पिता दोनों वर्किंग है, आदमी को एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, भागम भाग वाली जिंदगी, कभी
0: जी
1: खाया कभी नहीं खाया, कुछ नहीं तो फास्ट फूड से पेट भर लिया, तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, घंटों हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, क्या ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, ये सारी समस्याएं हमारे हार्ट अटैक को आमंत्रण देती है?
0: जी एकदम से तो नहीं, लेकिन अगर इसके एडिक्शन हो गया है या इसकी बहुत ज़्यादा आदत हो
1: खास तौर
0: गई
1: से
0: है,
1: सोशल मीडिया या फिर मोबाइल का तो लगभग सबका एडिक्शन हो ही चुका
0: जी,
1: है।
0: तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी नुकसान हो रहे हैं ना. डायरेक्टली तो नहीं है कि चलो, लेकिन इनडायरेक्टली ये कि आप सोशल बैठे हुए हैं, फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब कोई फिजिकल

0: एक्टिविटी नहीं कर रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, तो आपका दूसरा ये हुआ। दूसरा, आप जो है मेंटली अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम से आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो वहाँ पर ये इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तीसरा, आप बैठे हुए हैं, आपने खाना खाया है, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और फिर से सोशल मीडिया पे अगर फोन लेकर के बैठे हुए हैं, तो फिर से ये आपकी ओबेसिटी और जो एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं उसको बढ़ा रहा है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंडलजेंस है फोन में या स्क्रीन टाइम दिया है, तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। और जब फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और हार्ट के लिए भी वो नुकसान करती है जो।
1: आज के समय में ऐसे बहुत केसेस देखते हैं कि अचानक खेलते खेलते किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई।
0: जी
1: डांस करते करते किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। एक्सरसाइज, जिम जहां पर आदमी एक्सरसाइज करने जाता है,
0: जी
1: उस कंडीशन में भी अचानक अटैक आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे क्या कारण है कि एकदम से अचानक ऐसी घटनाएं घट जाती
0: जी
1: है?
0: इसलिए घट जाती है कि इसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं।
1: जी
0: तो ऐसा नहीं है कि उसको कभी पहले से कोई दिक्कत नहीं हो और उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि वो अवेयर नहीं होता कि उसको
1: ये
0: इस
1: बहुत
0: तरह की
1: बड़ी
0: कोई
1: बात आपने बोली
0: प्रॉब्लम
1: कि
0: है।
1: अवेयर नहीं होता, ये समस्या उसको साथ पहले से आनी शुरू हो जाती
0: हाँ, उसको हो सकता है कि कुछ ऐसी, जैसे ECG में हम नॉर्मली अगर हम कराएं तो उसमें देखेंगे कुछ इस तरह की जो है इश्यूज होते हैं, जैसे ब्रुगाडा सिंड्रोम है, तो ये कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं
1: है।
0: जो जिसके लिए अवेयरनेस नहीं होती। जैसे बच्चों में आ गया कि बहुत बार ऐसे केसेस हुए कि क्लास में बैठे और उनको जो अटैक आ गया, तो ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज जो है उनके माल फॉर्मेशंस होती हैं या उसमें एब्सेंस होती है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो टेस्ट नहीं करते हैं और ऑल ऑफ ए सडन उनको अटैक आ जाता है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये मतलब अनयूजुअल चीज़ है, पर जो कि अवेयर नहीं होते हैं तो उस समय ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें बच्चों में कैसे हो गई, या जो कई बारी
1: बिल्कुल
0: हाँ कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म एक ऐसा रहता है सडन डेथ की एक वजह हो जाती है कि अटैक पड़ जाता है, पर वो ब्लॉकेज की वजह से नहीं होता है, उनकी जो नस होती है वो श्रिंक हो जाती है जो है, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। या बहुत बारी इनको डिसीज़ डेवलप हो चुकी है पर उन्हें पता नहीं है, अब वो जिम कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय उनकी धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है। जब धड़कन तेज़ होती है तो नेचुरली जो ब्लड सप्लाई, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ जाती है, और वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से अटैक पड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो केवल जांच करा करके या प्रिवेंटिव, जिसको हम केयर बोलते हैं, प्रिवेंशन करके उस चीज़ का अर्ली डिटेक्शन होने के बाद में उस चीज़ का उस तरीके से निदान हो सकता है, और इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं हो सकती हैं उनसे बचा जा सकता है।
1: एक स्वस्थ हृदय के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए?
0: देखिए खाना बहुत अच्छा सवाल है ये, खाना स्वस्थ हृदय के लिए क्या, पूरे अपने बॉडी के जो स्वस्थ रहे, हमारे जो हमारे हर ऑर्गन स्वस्थ रहे, लिवर भी स्वस्थ रहे, हमारा गट भी स्वस्थ रहे, तो हमको इसके लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ना, और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये हमको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा एक तरीके का डाइट जिसमें हम कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि इतने कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, इतने फैट्स लेने हैं, इतना हमको शुगर लेना है, तो वो चीज़ अगर हम अपनी उसमें बैलेंस करके रखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तला हुआ या फ्राइड या जंक फूड खाते हैं तो उसमें इस तरह के पॉली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ा देते हैं, इसके प्रोसेस को, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। तो ऑयल है वो हमें हेल्दी, जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो लेना चाहिए। तो इसके अलावा हमको जंक फूड आपने जैसा बताया कि हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी बॉडी इसके पाचन के लिए नहीं बनी है। हमारी जो इंडियन जो बॉडी है वो उसमें हमको सिर्फ जिसके अंदर ज़्यादा रफेज हो उस टाइप के हमारे बॉबल्स होते हैं, तो हमको हेल्दी डाइट का मतलब यही है कि अपना जो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि अपना अनाज है, फल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये अपने भोजन में ज़्यादा मात्रा में और इस्तेमाल करना चाहिए। घी तेल का इस्तेमाल जो है अपना कम रखना चाहिए हेल्थ के।

0: हिसाब से उसको अपना जैसी अपनी हेल्थ है उस हिसाब से, और अगर ओवर वेट है तो अपनी एक्सरसाइज करके उसको कंट्रोल करना चाहिए।
1: जी, एक्सरसाइज एक स्वस्थ हृदय के लिए कितनी जरूरी है?
0: एक्सरसाइज ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से मैंने जैसे बताया कि जो अपने हृदय की धमनियां हैं तो ये ब्लड से पहुंचाती हैं, हृदय को ब्लड की ज़रूरत होती है, और ये जो आर्टरीज होती हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इनमें कोलेट्रल्स बन जाते हैं। कोलेट्रल्स का मतलब है इनकी ब्रांचिंग होने लग जाती है। तो अगर बाई चांस अगर एक मेजर आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज भी आया तो भी वो अटैक उतना मेजर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग शुरू से एक्सरसाइज करते हैं तो वो कोलेट्रल्स के थ्रू उनको पूरे हार्ट मसल को ब्लड मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे कि कोलेट्रल्स का डेवलप हो। दूसरी चीज़ है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हृदय की धड़कन है वो धीरे धीरे एक जैसे हम कभी एक्सरसाइज नहीं किया और एकदम से हमने भागना या तेज चलना शुरू किया तो धड़कन बहुत तेज हो जाएगी,
1: जी बिल्कुल
0: सांस फूलने लग जाएगी।
1: बिल्कुल, फूलने लग
0: पर जो
1: जाती है।
0: लोग धीरे धीरे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, तो वो उसमें उनकी जो है धड़कन कंट्रोल हो जाती है, जो उसका उसका बेनिफिट उनको मिलता है। तो एक्सरसाइज करने से ओवरऑल बेनिफिट मिलता है सभी, हमारी एक तो मांसपेशियाँ हमारी स्ट्रांग होती हैं, दूसरा हमारी सांस जो है कंट्रोल में रहती है, धड़कन कंट्रोल में रहती है, और ओवरऑल हमको प्रॉपर अगर अर्ली मॉर्निंग हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे स्वस्थ वायु हमको मिलती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी, हेरिडिटी रूप से क्या हार्ट अटैक आ सकते हैं? क्या हार्ट अटैक आना अनुवांशिक है?
0: जी, मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि अनुवांशिक डिसीज़ जो बच्चों में होती है तो उसमें अगर वो उनको एब्सेंस कोरोनरी आर्टरी है या मालफॉर्मेशंस है तो उनको कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों के दिल में छेद होते हैं,
1: जी
0: फिर जो उनकी लंग्स की आर्टरीज हैं वो उल्टे साइड पर हो जाती हैं। तो ये इस तरह की अनुवांशिक बीमारियां बच्चों में मिलती हैं और इस तरह के बच्चों में इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं।
1: जी 16 सितंबर को मैम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डे मनाया जाता है, इसके
0: जी,
1: बारे में श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
0: इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सबसे पहले 1877 में एंजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, जो नसों की जांच जिससे की थी है, तो वो सबसे पहले हुई थी, तो उसके ऑनर करते हुए ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डे मनाया जाता है
1: जी,
0: इसको।
1: सभी श्रोता कहना चाहेंगे सभी से स्वस्थ हृदय को लेकर?
0: मेरा सभी से यही कहना है कि अपने हृदय का ध्यान आप बखूबी रख सकते हैं अगर आप शुरू से इसके लिए जागरूक हो जाएं। आपको पता है कि हमको अपने स्वस्थ जीवन शैली की अपनाना चाहिए, भागदौड़ भरी लाइफ से अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना है, अपना छोटे छोटे सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है, योगा मेडिटेशन करना है स्ट्रेस को और मेंटल हेल्थ को करने के लिए, अपने खान पीन में जैसा मैंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा फलों सब्जियों का जो है और हेल्दी फूड इस्तेमाल करना चाहिए, जंक फूड या जो फ्राइड फूड्स या फास्ट फूड से बचना चाहिए, इस तरह के व्यसन है जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, इस सबसे आपको दूर रहना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खुश रहना चाहिए।
1: जी, बहुत उपयोगी बात आपने
0: उपयोगी
1: बोली।
0: है कि लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं जितना भी कर रहे हैं आप उसको उस कंटेंट रहना चाहिए, हमेशा प्रतिस्पर्धा में नहीं रहना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि इससे आपको जो है आपको आपका ना केवल मेंटल हेल्थ बल्कि हार्ट भी
1: जी
0: अफेक्ट होता
1: बिल्कुल,
0: है। कहूँगी कि सभी लोग जागरूक रहें, अगर प्रॉब्लम्स है या कुछ भी लक्षण है तो उनको अनदेखा ना करें, अपना चेकअप कराएं, डॉक्टर से सही सलाह लें, और अगर कोई समस्या है तो उसके भी आजकल पूरा समाधान है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा हार्ट बीमार हो जाए इससे पहले हमें ये पता लगा लें कि हमारे हार्ट पे इस तरह की होने की कोई संभावना है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और छोटे छोटे टेस्ट करके ये पहले से पता लगाया जा सकता है कि आपको कोई हार्ट की बीमारी होने की संभावना है या नहीं। और हार्ट के अलावा ब्लड प्रेशर जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम
1: बिल्कुल
0: है, जिसकी अवेयरनेस ही बहुत कम है, तो ब्लड प्रेशर आप छोटा सा टेस्ट है, आप अपना चेक कराते रहिएगा, और अगर ब्लड प्रेशर है तो तुरंत उसका दवा उसको लेना चाहिए, और रेगुलर तरीके से। इसी तरीके से ब्लड शुगर भी चेक करना है, जिससे कि डायबिटीज़, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या इंडिया में बन गई।

0: तो उसकी भी रेगुलर तरीके से अगर डायबिटीज़ है तो उसको आप दवा लेकर के उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंटों में हार्ट की बीमारी होने की संभावना 4 गुना तक बढ़ जाती है।
1: जी बहुत बड़ी बात
0: इसके अलावा अपने वेट को, ओबेसिटी या जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसको आप अवॉइड करिए, एक्टिव रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए और हमेशा अपने हार्ट को हेल्दी रखिएगा।
2: अब डालते एक नज़र आज के समाचारों पर। अब स्कूल ने यूपी बोर्ड कराएगा विज्ञान और गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक विज्ञान और गृह विज्ञान विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा अब स्कूल स्तर पर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद दोनों विषयों की 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा कराएगा। परीक्षा में मिले अंक विद्यार्थियों के अंतिम अंक पत्र में जोड़े जाएंगे। अब डालते एक नज़र आज के इतिहास पर। आज ही के दिन भारत और विश्व इतिहास में ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न शास्त्रीय गायिका M.S. सुब्बलक्ष्मी के जन्म और मलेशिया के गठन जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन दर्ज हैं। 1908 में जनरल मोटर्स की स्थापना हुई, आज ही के दिन हुई। वहीं 1963 में मलाया सिंगापुर सभा सरवाक को मिलाकर मलेशिया देश का गठन हुआ। वहीं 1995 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ये थी ऐतिहासिक घटना जो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई थी। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत बातचीत करते हैं आम विषय के बारे में जो बन जाते हैं खास, क्योंकि हमारी जागरूकता की होती है कमी। पर्यावरण संरक्षण पर संरक्षण हम सबका ध्येय है, हमारा कर्तव्य है। अपने आसपास के पर्यावरण को बचाइए, प्रदूषण को रोकने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज ओजोन परत को बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। यही ओजोन परत है जो हमें जीवन प्रदान करती है, हमारे ऊपर जो सूरज की हानिकारक किरणें हैं उनको आने से रोकती है। अगर इसको नहीं बचाया गया तो पृथ्वी का जीवन खत्म हो जाएगा। तो अपने स्तर पर प्रयास कीजिए कि आप प्रदूषण नहीं करेंगे, प्रदूषण को रोकने का प्रयास भी करेंगे। एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। पौधा लगाना आसान है लेकिन उसकी देखभाल करके उसको वृक्ष बनाना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि हजारों लाखों पौधे लगाए जाते हैं लेकिन उनमें से कितने पनपते हैं। इसीलिए जो भी आप पौधा लगाएं, एक लगाएं और उसकी पूरी देखभाल करें। जब आने वाले समय वो वृक्ष बनेगा तो उसको देखकर ना आप खुश होंगे बल्कि आपका मन प्रसन्न होगा कि आपने अपना योगदान दिया अपनी धरती को बचाने के लिए ओजोन परत के संरक्षण में। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आप अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखते हैं तो समस्याएं खुद ब खुद आपके सामने चली आती हैं, क्योंकि साफ सफाई ना होने से बीमारियों को न्योता मिलता है और इससे समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें और अपने घर में जो भी कूड़ा वगैरह उसको डस्टबिन में डालें या कूड़े वाली लॉरी आती है उसमें उठाकर डालें, सड़क पर ना डालें, क्योंकि ये जो सड़क है वो आपके घर तक भी आती है। क्योंकि जब बारिश होती है, पानी भरता है तो सारा कूड़ा आपके घर के अंदर ही आ जाता है। फिर हम शासन प्रशासन को दोष देते हैं कि देखिए सफाई की व्यवस्था नहीं है। कुछ कर्तव्य हमारे भी हैं, क्योंकि अगर हम अधिकार चाहते हैं तो हमें कर्तव्य का पालन भी करना होगा। शासन प्रशासन को हमें सहयोग करना होगा, क्योंकि जब आप अपना कार्य पूरे मनोयोग से करेंगे तो निसंदेह आप एक संभ्रांत नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें और अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आपने सुना बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का गीत। समीर ने गीत को लिखा था, संगीत बिजू शाह का था। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी आवारा पागल दीवाना फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान और शान की आवाज़ों में। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज शाम को 6:50 से आप सुनेंगे हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। किसान भाई, बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल, जैसे पशुओं का आहार है, आवास व्यवस्था है, टीकाकरण है, मच्छर मक्खी से बचाव, खुरपका मुंहपका अफरा गलघोंटू जैसे रोगों से बचाव की जानकारी हेतु आप चाहते हैं जानकारी, तो इस जानकारी के लिए उपस्थित होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 0565-25-30-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी से जानकारी ले सकते हैं। तो समय याद रखिए आज शाम को 6:50 से। सूचना समाप्ति। और अब ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आपने सुना भी कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म साजन चलिए ससुराल का ये गीत। गीतकार समीर ने गीत को शब्दों में ढाला था और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

सुनिधि चौहान की ये आवाज़ थी फिल्म डॉन के इस गीत में। अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना सुन लीजिए कार्यक्रम से संबंधित। आज शाम 6:50 से ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। आज का विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। किसान भाई, बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल जैसे पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था है, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव, खुरपका मुंहपका अफरा गलघोंटू जैसे रोगों से बचाव की आपको जानकारी लेनी है तो फिर स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से आप जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए टेलीफोन नंबर 2530135 पर और एसटीडी कोड लगाकर 0565 अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर आप समस्या का समाधान पूछ सकते हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से। तो समय याद रखिए आज शाम 6:50 से। सूचना समाप्त थी और अब ये कार्यक्रम का अगला गीत।

साथियों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अलीशा चनोय की आवाज़ में सच्चाई का बोलबाला फिल्म का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी गुंडाराज फिल्म के इस गीत को कुमार शानू, अलीशा चनॉय और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा था जफर गोरखपुरी ने और संगीत अनु मलिक का था। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: डिस्को दीवाने, आपने सुना अभी इस फिल्म के गीत को नाजिया हसन की आवाज़ में। अनवर खालिद की इस रचना को धुन से संवारा था बिद्दू ने। आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम साथियों यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते

चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: से सुन रहे हैं?
1: मेरे को अभी तो 8-9 महीना हुआ सुनते सुनते,
0: अच्छा, आज कॉल
1: अभी
0: पहली
1: नए
0: बार
1: नए
0: लगाई
1: जो।
0: है क्या?
1: नहीं, ये दूसरी कॉल है अपनी।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप?
1: अपन तो खेती किसानी करते हैं सर।
0: बढ़िया बात है। आज कार्यक्रम में क्या फरमाइश रहेगी बताइए।
1: सर राजा भैया पिक्चर का गाना है, तू जो हंस के सर मुझसे बात करती है, वैसे ही बात जमाने को बुरी लगती है।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार। कैसे
0: नमस्कार।
1: हैं सर?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कौन बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी धर्म की नंगला उपलब्धि से मांग रहा था सर।
0: अच्छे हैं चौधरी साहब आप?
1: हैं सर, मौसम भी ठीक है। हाँ,
0: हाँ, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकल रही है हमारे यहाँ भी।
1: मैं पिछले बार एक बात कहना भूल गया था सर।
0: जी
1: ये 15 अगस्त जो आया था, उससे लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों पर झंडा लगा लेते हैं, कोई अपनी बाइक पे लगा लेता है। उसके बाद 2 दिन बाद जैसे बड़ी गाड़ियों पे लगा लिया, तो वो ऐसे करके कहीं गिर गया, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: झंडे का अपमान होता है सर। ये ड्यूटी किसी की होनी चाहिए। हाँ
0: हर व्यक्ति को ये बात समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय
1: जी,
0: ध्वज हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसका अपमान कतई नहीं होना चाहिए।
1: गाड़ी चल रही है तो गिर गया, तो गिर गया रास्ते में, तो पैरों में आता, ये गलत है सर। हाँ
0: और ये भी एक दंडनीय अपराध है भारतीय संविधान के
1: बिल्कुल
0: हिसाब से,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इस बात का ध्यान रखना चाहिए लोगों को। हमारा यही निवेदन है सभी श्रोताओं से।
1: जैसे
0: जी
1: कहते हैं ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडे
0: बिल्कुल, इसकी तो शान
1: के
0: बरकरार
1: लिए।
0: रहनी चाहिए।
1: हाँ, झंडे के लिए हमारे जवान जान दे देते हैं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल, अच्छी बात कही आपने। आज बताइए हमारे कार्यक्रम में क्या फरमाइश रहेगी?
1: सर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये देशभक्ति वाला गाना। बहुत बहुत
1: ठीक है
0: धन्यवाद
1: सर,
0: आपका।
1: नमस्कार सर, नमस्कार, राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, हम आगरा से बोल रहे हैं, गीता देवी। पहली
0: आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
1: बार फोन मिलाया सर।
0: बहुत अच्छा, आपको शुभकामनाएं बहुत सारी।
1: आपको भी
0: हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं आप कब से?
1: बहुत दिनों से चले, हम तो 20 साल हो गई। बच्चे
0: तो फोन आज पहली बार क्यों मिलाया? इससे पहले मिला लेती हैं आप?
1: मिलाते हैं, हम पर बात ही नहीं हो पाती है।
0: बात करने में क्या है, रेडियो आपका है।
1: नहीं, फोन पे सुनते हैं भैया। हाँ
0: अच्छा, फोन पे सुनते हैं, अच्छी बात है। अब
1: हाँ
0: रेडियो सेट कब मिलते हैं ना?
1: हाँ इसीलिए
0: जी, बहुत अच्छा किया आपने फोन मिलाया, हमें अच्छा लग रहा है।
1: हमको भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर।
0: जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: माँ फिल्म का गाना है। हाँ
0: ठीक है गीता जी, आपकी पसंद
1: जी,
0: का गाना सुनवाते हैं।
1: राधे राधे भैया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। हेलो
1: कौन बोल रहे हैं?
0: जी, मैं राजा राम तरकर गांव भाई से बोल रहा हूँ।
1: राजा राम जी, आपका कार्यक्रम
0: जी
1: में स्वागत है।
0: जी धन्यवाद सर।
1: आपका नाम तो बड़ा अच्छा है सर।
0: जी नाम तो अच्छा
1: उसमें राजा भी है और राम भी हैं।
0: जी सर,
1: क्या करते हैं आप?
0: मैं अब रिटायरमेंट हूँ सर, सर्विस से घर बैठा रहता हूँ। अब कोई काम करने लायक नहीं।
1: किस विभाग में थे?
0: कोऑपरेटिव में था सर। हाँ,
1: अच्छा,
0: कैप्चर
1: कार्यक्रम
0: कैप्चर जी,
1: कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं।
0: शुरू से, जब से आकाशवाणी केंद्र शुरू हुआ है,
1: अरे वाह वाह,
0: बहुत
1: बहुत
0: पुराना
1: पुराने श्रोता हैं आप।
0: जी। 72-73 साल की एज है।
1: स्वस्थ हैं आप? बिल्कुल।
0: हाँ जी, ठीक हूँ। वैसे स्टैंड पढ़ चुके हैं
1: अच्छा,
0: और घर पे आराम करते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है सर। हमें बड़ा अच्छा लगा आपका फोन आया। आज
0: जी सर,
1: बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
0: रानी को बोले हैं, समझो और समझाओ, थोड़े में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु जोड़ो।
1: ज्वार भाटा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी सर जी
1: ठीक है राजा राम जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।
0: जी
1: बहुत
0: सर जी
1: बहुत
0: जी
1: धन्यवाद आपका।
0: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
2: ये समझो और समझाओ, थोड़ी

0: हेलो
1: नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार सर।
1: कौन बोल रहे हैं सर?
0: मैं सोचा मैं गांव के भजदर बोल रहा था सर।
1: सर आपका स्वागत है कार्यक्रम में। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है आज।
0: हाँ मुझे जुकाम ने घेर दिया सर। जो आजकल फ्लू जो चल रहा है सर।
1: हाँ फ्लू चल रहा है इस समय, वायरल चल रहा है।
0: हाँ वायरल चल रहा है इसलिए घेर लिया सब। अज्ञात वास पड़े बिल्कुल सब।
1: तबीयत का ध्यान रखिए, समय से दवाइयाँ लीजिए।
0: हाँ ले रहे सब, ले रहे सब।
1: 4-5-6 दिन लगा देगा ये ठीक होने में।
0: हाँ बिल्कुल लगेंगे सब।
1: जी जी
0: कल से एक बिल्ली वाले के पास चलेंगे हम।
1: अच्छा
0: छुआछूती हो बीमारी सब।
1: हाँ एक को होता है तो फिर बहुत लोगों को होने लगता है।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: जी जी
0: तो इस पाकिजा फिल्म का नाम तो सुनवा दीजिए सर।
1: जी बताइए कौन सा।
0: चलते चलते कोई मिल गया था।
1: भजन लाल जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, कॉल उठा ले देंगे सर।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: नमस्कार सर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे संजय सारस्वत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2026 यानी आज शाम को 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। किसान भाई, पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल जैसे पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव, खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोंटू

होटू, जैसे रोगों से बचाव की जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से। कार्यक्रम का समय होगा बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2026 यानी आज शाम 6:50 तक। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल कार्यक्रम के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 सितंबर है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम सभी मना रहे हैं। आकाश, वही आकाश जिसे देखकर हम बारिश, बादल, चांद और सितारों की कल्पना करते हैं, लेकिन इसी आकाश में हमारी पृथ्वी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच मौजूद है, ओजोन परत। आइए आज जाने कि यह ओजोन परत क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी क्यों है। बातें आगे भी जारी रहेंगी, उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र पाया जाता है, जिसे सामान्यतः ओजोन परत कहा जाता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवीबी किरणों से एक बड़े हिस्से को अवशोषित करती है। अगर यह सुरक्षा कवच कमजोर हो जाए तो मनुष्यों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ओजोन से नुकसान कैसे पहुंचता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। कुछ मानव निर्मित रसायन, विशेषकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs, हेलोन और कुछ अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोलह सितंबर 1987 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना था। ओजोन संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक ऐतिहासिक उदाहरण है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऐसी ऐतिहासिक प्रयास की याद में हर वर्ष यानी आज 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और पूरा विश्व आज ओजोन दिवस मना रहा है।

श्रोताओं, ओजोन परत को लेकर एक आम नागरिक क्या कर सकता है, तो हम आपको बताते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सावधानियां अपना सकते हैं। ऐसे उपकरणों का उत्पादों के उपयोग में जागरूक रहें जिनमें ओजोन क्षयकारी पदार्थों का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे पुराने रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों की सर्विसिंग और निपटान प्रशिक्षित तकनीशियन से करवाएं, ताकि रेफ्रिजरेटर गैस वातावरण में अनावश्यक रूप से ना छोड़ी जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, ऊर्जा की बचत करें, उपकरणों का सही रखरखाव करें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का व्यवहार अपनाएं, तभी किसी हद तक हम अपने बादलों पे छाए हुए बदरा को बचा सकते हैं।

श्रोताओं, ओजोन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जब पूरी दुनिया किसी पर्यावरणीय समस्या को पहचानकर वैज्ञानिक ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जिम्मेदारी नीतियों के साथ आगे बढ़ती है तो सकारात्मक बदलाव संभव होते हैं। ओजोन परत की सुरक्षा केवल वैज्ञानिकों या सरकारों का विषय नहीं है, यह हम सभी के साझा भविष्य से जुड़ा विषय है। तो आइए इस ओजोन दिवस पर हम केवल एक दिन जागरूक रहने का नहीं, बल्कि हर दिन पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने का संकल्प लें। ओजोन परत है पृथ्वी का सुरक्षा कवच, इसकी रक्षा है हमारे भविष्य की रक्षा। इस कार्यक्रम के अंत में एक छोटी सी पंक्ति, आसमान हमारा धरती हमारी, आसमान हमारा धरती हमारी, इनकी रक्षा जिम्मेदारी हमारी। ओजोन बचे जीवन खिले, हर सुबह हो खुशियों से प्यारी। इसी शुभ संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम ओजोन की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा। नमस्कार, जय हिंद। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम गीत बात और SMS हम किसी तकनीकी खराबी के कारण आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2026 यानी आज शाम को संध्या 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। किसान भाई, पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल जैसे पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव, खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोटू जैसे रोगों से बचाव की जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 2530 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर

94 12 25 55 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से। कार्यक्रम का समय रहेगा बुधवार यानी आज शाम 6:50 तक। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज है। फिल्म का नाम है राजा। शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से संवारा है नदीम श्रवण ने।

2.2 मेगाहर्ट्स पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ है। फिल्म का नाम है राजा, शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से संवारा है नदीम श्रवण ने।

अभी आपने सुना सवानंद किरकिरे और सोनू निगम की आवाज़ में थ्री इडियट्स फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था सवानंद किरकिरे ने और इस गीत को धुन से संवारा है शांतनु मैत्री ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को लिया है हमने चाइना गेट से। आवाज़ें हैं सपना अवस्थी और अन्नू मलिक की। शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से संवारा है अन्नू मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे सपना अवस्थी और अन्नु मलिक को। फिल्म का नाम था चाइना गेट, शब्द रचना समीर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था अन्नु मलिक ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म रक्षक से, आवाज़ है अभिजीत की।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजें हैं। फिल्म का नाम है रंग, शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से संवारा है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी। आज आप सुनेंगे रांझा गायन।

0: हीर के भैया पटमल। मेरे श्रोता और निवेदन है, नाम ध्यान रखियो पात्रन के, तो हीर को भैया पटमल कचेरी में बैठो, और जब मालिन के ऊपर नजर पड़ी तो देख करके सूरत और मालिनन से पूछवे लगो कि ये तुम्हारे शरीर पे खून कैसे चुचा रहे हैं, कौन ने ऐसी मार लगाई है जो कपड़ा तक फट गए हैं, खाल तक फट गई है। तो मालिन पटमल भैया से क्या कह रही है,
1: क्या कह रही है भैया?

पटमल ने बिना सोचे समझे बिगुल बजवा दियो और हाथी वाले हाथीन पे चढ़ गए, घुड़सवार घोड़न पे चढ़ गए और पैदल पलटन को तो कोई हिसाब होना हो। इधर शोरगुल सुन करके और हीर ऊपर महल में जाए करके और गोख में जाती है। सारी पलटन आगे निकल जाए सब।

बताओ, बड़े ध्यान से सुनना, हीर जो है बहुत खतरनाक है, ना भैया पे ना मैया पे काऊ पे रहम ना करे भैया और ना गवैया छोड़े। तो हीर क्या कह रही है अपने भैया से, भैया ने ध्यान से सुनियो। अरे

एक बात बताओ चाहूं सभी श्रोतान को, मैंने भी देखो है कि पहले हिंदू मुसलमान एक दूसरे के लगेज में लगे भाई चिपटे भाई रहते, शादी में जानो बिहान में आनो, अगर बगीचा में या कहीं पे झूला पड़े हैं तो सबकी बहन बेटी मिल करके गीत मल्हार गा रही हैं और अपना आनंद ले रही हैं। मगर आज हमारी दूषित राजनीति ने हमारे लोगों के अंदर मतभेद कर दियो है भैया। तो जब हीर नीचे आई और मैया से क्या कह रही है,

हम यहाँ के बादशाह हैं और तू अकेली अगर बाग में झूल में जाएगी, हमारे मंत्री महामंत्री ये सब हमारे जो कर्मचारी हैं सेनापति ये क्या कहेंगे कि अपनी बेटी को और बेगम साहिबा ने बाग में झूल में भेज दिया, हमारी बेटी इनकी बात तू ना पूछी। तो बेटा एक काम कर, तू चंपा नायन को काइये भेज के बुलवा ले। चंपा नायन बुलवाई है और बुलवाए करके उन सब के घर खबर करवाई है। इधर चंपा नायन खबर करवे के लिए जावे है और हीर अपने मोती महल में चढ़ जावे है और जाए करके दरवाजा बंद करके और मालिक को याद कर रही है। तो कैसे याद कर रही है भाई?

0: सज्जनों 72 हूर सेवा में हाजिर हैं। बोल बहन, क्या हुक्म है हमारे लिए? बोले बहन, आज मैं एक से मिलने के लिए जा रही हूं, मेरा ऐसा श्रृंगार करो कि वो मेरी सूरत को देख करके और गस खा के गिर जाए। बोले ठीक है बहन। हूर जो है हीर के एक एक बाल में एक एक मोती पिरो करके और हीर का श्रृंगार कर रही हैं। इधर सहेली सबरी महल में आ जाए। बोले मैया, हीर कहाँ है? बोले बेटा, अपने मोती महल में। तो दोस्त भाई और सहेली भाई, ये काऊ ते ना रोके, ना मैया ते रोके, ना बाप ते रोके, दंदनाती दंदनाती और सीधी मोती महल के दरवाजे पे पहुंची और जाकर के केवाड़ खटखट आई। इधर हीर को श्रृंगार पूरा है गयो, तो हीर जो है सहेली के संग में नीचे उतर के आई है। जब नीचे उतर के आई तो मैया के सामने आई तो मैया देख के दंग रह गई। वाह हीर वाह, क्या बात है। तो मैया हीर से क्या कह रही है?
1: क्या कह रही है?

मेरे प्यारे श्रोताओ, मैया हैरत में रह गई, दंग रह गई कि जाकू पैदा होते ही तो गड्ढा खोद के बादशाह ने गड़वा दियो। जाए मेरे गोने के और लहंगा फरिया के बारे में कौन है बता दई। और मेरो लहंगा तो बहुत कीमती है क्योंकि बादशाह बेगम थी, हीरा जवाहरात सोने चांदी के तारों से बनो भयो। हीर से बोली, बेटा लहंगा फरिया दे दूंगी, अगर तू बाग में झूलवे ना जाएगी तो हम यहाँ के बादशाह, हमारी तो इज्जत धूर में मिल जाएगी, हमने सब नौ तो दे के बुलाई है। और जे काकंगी तो बोले, आजा लेन पे मैया। तो मैया ने अपने गोने के लहंगा फरिया और हीर को दिए हैं भैया। हीर ने लहंगा फरिया पहन करके और पहाड़ सबकी डोली लगी भाई। हीर जा करके अपनी डोली में बैठती है और बगीचा की

0: तैयारी चलवे की है गई। जब बगीचा आ तो पास में दिखो तो 10 कदम पे बाने डोली बारे कारते कही, बोले रोक ले जा भैया डोली है नहीं गई। बाने डोली रोक दी तो सबकी डोली रुक गई। उन सहेलिन से बोली कि ये 5-5 असरफी लो, अब भैया तुम अपने अपने घर जा। बोले ऐसी का बात है? बोले बाने मालिनन में ऐसी मार लगाई है कि भागी भागी मेरे पास आई है। तो मैं तो बाकी मार को झेल लूंगी, मगर मेरी बहन तुम ना झेल पाओगी। तो बा में कछूती तो ऐसी स्वाभिमानी बोली, तेने हमें खाई को यहाँ पे बुला लियो खामा खामे है। और बहुत सी का बोली, अरे के ले लो 5-5 असर पी, तू मेरे बगीचा में झूल पे चलियो, भैया जाको बड़ो बगीचा है हमारा छोटा बगीचा है। तो सबरी सहेली एक दूसरे के संग चली जाए और हीर बगीचा में जाकर के प्रवेश करती है।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज के कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी। आप सुन रहे थे भगवान दास अज्ञानी के स्वर में रांझा गायन। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर

शंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को

0: ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पर। इसके अलावा चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी दिवस पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वरचित काव्य पाठ ब्रज के वन उपवन डॉक्टर नीतू गोस्वामी से। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत सुना जा सकेगा अपराह्न 1:45 पर। NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा अपराह्न 2:30 पर।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी जयंती विषय पर। इसके अलावा आज की बात होगी राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर। आज की बात आप सुनेंगे एक और विषय पर, दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता ओजोन परत का क्षरण, जानकारी देंगे सतीश शर्मा। फिल्म संगीत भी सुन सकते हैं आप इस कार्यक्रम में। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा, कवि होंगे अनिल बोहरे, दाऊजी को मेला। समय रहेगा 6:15 पर। भक्ति परक फिल्म संगीत संध्या वंदन का समय रहेगा 6:30 पर।

हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम सुना जा सकेगा संध्या 6:50 पर। आज इस कार्यक्रम में विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल विषय पर। वार्ताकार विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। विशेष कार्यक्रम सुना जा सकेगा चीयर फॉर भारत रात्रि 8:00, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से का समय रहेगा रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम न्यूज एट 9 आप सुनोगे रात्रि 9:00, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चित्रपट संगीत सुहाने तराने सुना जा सकेगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:30 पर। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे उस्ताद मोइनुद्दीन खान का सारंगी वादन, राग होगा मधुवंती मधुकोश, तबला पर संगत रहेगी अब्दुल सलाम खान की। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनितालोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं रेशमा अग्रवाल।

झुकी हुई पलकों से सलाम करते हैं, हम अपना हर लम्हा आपके नाम करते हैं। कबूल हो तो मुस्कुरा देना एक बार, हम दिल से अपनी बहनों को नमस्कार करते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनों को आपकी सखी, आपकी सहेली रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतज़ार, तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम वनिता लोक आज की चर्चा के साथ। बहनों, आज हम बात करेंगे हमारे जीवन की उस अदृश्य ढाल की, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में अब उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। बहनों, आज है 16 सितंबर और आज के दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह दिन पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। प्रकृति ने जो सुरक्षा कवच हमें दिया है, उसे बचाना भी हमारा फर्ज है। सांसों की कीमत समझनी है अगर, तो पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है। बहनों, हम सभी ने आसमान देखा है, सूरज की रोशनी देखी है, बारिश और बादलों को देखा है, लेकिन आसमान में मौजूद ओजोन परत को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिर भी यह परत हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में मौजूद ओजोन गैस की एक सांद्रता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों, विशेषकर यूवी-B

वी को एक बड़े हिस्से को रोकना। अगर ये हानिकारक किरणें बड़ी मात्रा में सीधे पृथ्वी तक पहुंचे तो बहनों मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ पेड़ पौधों, समुद्री जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका असर पड़ सकता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो ओजोन परत है धरती की ढाल, इसके बिना जीवन हो बेहाल। लेकिन सवाल है कि इस सुरक्षा कवच को नुकसान पहुंचा कैसे? बीते समय में कुछ मानव निर्मित रसायनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs प्रमुख थे। इन रसायनों से निकलने वाले तत्व वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो इसी कारण वैज्ञानिकों ने ओजोन परत के क्षरण को लेकर पूरी दुनिया को चेताया। इसके बाद दुनिया के देशों ने मिलकर कदम उठाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना था। और यही कारण है कि आज का दिन केवल चिंता करने का दिन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रयासों और वैश्विक सहयोग की सफलता को समझने का दिन भी है। इसीलिए हमें इस वर्ष समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी रोजमर्रा की आदतें भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो बहनों, सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। हम बिजली की बचत करें, अनावश्यक ऊर्जा का इस्तेमाल न करें, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता दें, पुराने इलेक्ट्रॉनिक और रेफ्रिजरेशन उपकरणों का उचित तरीके से निपटारा करें, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं और उनकी रक्षा भी करें, और इस वर्ष की थीम के अनुसार कार्य करें। इस साल की थीम है ग्लोबल एक्शन फॉर ए कूलर प्लानेट है, जो टिकाऊ और ऊर्जा कुशल कूलिंग समाधानों पर जोर देती है। इसीलिए ओजोन दिवस को केवल एक दिन की जागरूकता तक सीमित न रखें। जैसे हम अपने घर की छत, दरवाजे, खिड़की, पेंट आदि की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी के इस प्राकृतिक सुरक्षा कवच के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें, न प्रदूषण को बढ़ावा देंगे, न प्रकृति की अनदेखी करेंगे, पर्यावरण को समझेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए धरती को सुरक्षित रखेंगे।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: के वन है केवल हरियाली नहीं, ये तो कान्हा की यादों की निशानी है। कहीं कदम्ब की छाँव, कहीं यमुना की धार, हर पत्ता कहता है राधे राधे बारंबार। ब्रज की पहचान केवल उसके मंदिरों और धार्मिक स्थलों से नहीं है, बल्कि बहनों, ब्रज की पहचान उसके उन वनों, कुंजों, उपवनों, सरोवरों और वृक्षों से भी है, जिनसे भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। इसीलिए ब्रज के वन उपवनों की चर्चा केवल प्रकृति की चर्चा नहीं है, यह हमारी संस्कृति, आस्था और पर्यावरण तीनों को एक साथ समझने का अवसर है। तो आइए, आज की इस सुंदर यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं ब्रज के उन वन उपवनों की ओर, जहां प्रकृति और भक्ति एक दूसरे में घुलमिल जाती है। तो लीजिए इस सुंदर यात्रा में आनंद काव्य पाठ का, जिसका विषय है ब्रज के वन उपवन, और कवयित्री हैं डॉक्टर नीतू गोस्वामी।
6: श्रोताओं, आज मैं अपनी गेय कविता के माध्यम से ब्रज मंडल के वन उपवन तथा उनके महत्व के विषय में बता रही हूं। आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री, पात पात पे शाम बसे दर्शन करवाऊं री, पात पात पे शाम बसे

चलो सखी पहले मधुबन को, चलो सखी पहले मधुबन को, नमन करो उस आनंद घन को, नमन करो उस आनंद घन को, नित्य पधारे श्याम किशोरी, जिस वन में मधुर

बन उपवन दिखलाऊं री, आगे चलो कुमुद बन आया, आगे चलो कुमुद बन आया, जिस बन कमल का ताल समाया, जिस बन कमल का ताल समाया, जहां किशोरी ने कृष्ण से अपना पुष्प श्रृंगार कराया, अपना पुष्प श्रृंगार कराया।

बन उपवन दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री। एक ताल वन नाम अपारा, एक ताल वन नाम अपारा, जहां बलराम धेनु का सुर मारा, जहां कुंड बल भद्र बना है, बल दाऊ का छत्र तना है। यहाँ कुंड बल भद्र बना है, बल दाऊ का छत्र तना है। बल दाऊ मंदिर के दर्शन लाभ कराऊं री, आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री। एक बहुलावन नाम सुना है, एक बहुलावन नाम सुना है, बहुला गाय के नाम पर ही इस वन का यह नाम पड़ा है। एक विशेषता और है भाई, एक विशेषता और है भाई, राग मलार गा कर कृष्ण ने इस वन में वर्षा करवाई। देख दिव्य बहु

तीर्थ मंदिर के तुमको मैं दर्शन करवाऊं। इस बन के हैं सात द्वारे, इस बन के हैं सात द्वारे, जिनके तुमको दर्शन करवाऊं।

इस बन कृष्ण कुंड के तुमको दर्शन करवाऊं री, आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री, चलो कोट वन खादिर वन को जिनकी महिमा भी कहने को, चलो कोट वन खादिर वन को जिनकी महिमा भी कहने को, खादिर वन में असुर संघारा, खादिर वन में असुर संघारा, कोट वन में लता पता से श्री कृष्ण ने कोट बनाया, लता पता की हरियाली शोभा दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री, वृंदावन सिर मोर कहाता, वृंदावन सिर मोर कहाता, जो जन श्रद्धा से यहाँ आता, जो जन श्रद्धा से यहाँ आता, युगल छवि के दर्शन पाता, वृंदा की है तपो भूमि जहाँ, वृंदा की है तपो भूमि जहाँ, वृंदा तुलसी जग विख्याता, बांके बिहारी के तुमको दर्शन करवाऊं री, आओ सखी तुमको बन उपवन दिखलाऊं री।

बन उपवन दिखलाऊं री। भांडिर वन की कथा है अनुपम, भांडिर वन की कथा है अनुपम, लता पता से है ये सघन वन, भांडिर कूप बना इस वन में, पुत्र की इच्छा हो जो मन में, भांडिर कूप बना इस वन में, पुत्र की इच्छा हो जो मन में, तो इस कुएं में तुमको स्नान कराऊं री। आओ सखी तुमको वन उपवन दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको वन उपवन दिखलाऊं री। बेल वन की छटा निराली, बेल वन की छटा निराली, कृष्ण सखन संग खेलें भारी, कृष्ण प्राप्ति हट कर बैठी, कृष्ण प्राप्ति हट कर बैठी, इसी वन लक्ष्मी तप पर बैठी, लक्ष्मी मंदिर के इस वन दर्शन करवाऊं री। आओ सखी तुमको वन उपवन दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको वन उपवन दिखलाऊं री। लोवन भी इस ब्रज विख्याता, लोवन भी इस ब्रज विख्याता, इस वन कृष्ण लोहासुर मारा, लोहासुर की गुफा है इस वन, लोहासुर की गुफा है इस वन, जिससे इसका नाम है लोवन, जिससे इसका नाम है लोवन, गोपीनाथ के इस वन में दर्शन करवाऊं री। आओ सखी तुमको वन उपवन दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको वन उपवन दिखलाऊं री। कहाँ तक वर्णन करूं वनों का, कहाँ तक वर्णन करूं वनों का, बारह वन चौबीस उपवनों का, जो जन इन में चित्त रमाता, जो जन इन में चित्त रमाता, सहज कृष्ण के दर्शन पाता, सहज कृष्ण के दर्शन पाता।

0: बनो उपवन दिखलाऊं री, आओ सखी तुमको। मैं अपनी अगली कविता में वनों के नामों को संक्षिप्त में बता रही हूं। वृक्ष बहुत हैं इस जग में, पर सभी हैं फीके, किस ब्रज बन उपवन नीके। 12 प्रमुख हैं इस ब्रज में बन, 12 प्रमुख हैं इस ब्रज में बन, जिनमें बसी है कथा सुहावन, नाम भी जिनके बड़े हैं पावन, शोक हरें जी के किसके ब्रज उपवन नीके। ब्रज 84 परिक्रमा में सारे बन उपवन हैं आते, हम जिनके तुम्हें नाम बताते। कोई मधुबन और कोई कुमुदबन, कोई तालबन और बहुलावन, कोई बिलचूबन, कोई कामबन, खादिरबन और कोई कुंडलबन, कोकिलाबन और कोई कामरबन, कोटरबन और कोई बिहारबन, कहूँ बक्षबन, कहूँ वृंदावन, कहूँ निधिबन, कहूँ भांडीरबन, कहूँ बिहारबन, कहूँ छत्रबन, कहूँ बेलबन और कहूँ लोबन। जो जन होए मगन इस वन में, संशय मिटे हिय के इस ब्रज में बन उपवन नीके।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ ब्रज के वन उपवन। प्रस्तुति थी डॉक्टर नीतू गोस्वामी की। धरती का रूप नीला अंबर, हरी धरती और पहाड़ों का नजारा लगता है, जैसे सज गया हो संसार सारा। कुदरत की इस कलाकारी को दिल से सलाम, जिसने बनाया हर एक मंजर इतना प्यारा।

बहनों, अब हम बात करेंगे हमारे शरीर के उस अंग की जो बिना रुके बिना थके दिन रात हमारे जीवन की धड़कन को बनाए रखता है, हमारा हृदय। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, धड़कनों का संगीत है जिंदगी, हर सांस में बसी है जिंदगी। दिल स्वस्थ रहे तो हर रंग खूबसूरत है, इसलिए दिल का ख्याल रखना भी जरूरी है। बहनों, हमारा हृदय एक दिन में हजारों बार धड़कता है और लगातार हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाता है। हम अक्सर अपने दिल की ओर तब ध्यान देते हैं जब कोई परेशानी महसूस होती है, लेकिन वास्तव में दिल की देखभाल बीमारी आने से पहले शुरू होनी चाहिए। आज की बदलती जीवन शैली में तनाव, शारीरिक गतिविधि की कमी, असंतुलित खानपान, तंबाकू का सेवन, अधिक वजन और नींद की कमी जैसी आदतें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। तो इसलिए बहनों, हमें सबसे पहले संतुलित भोजन लेना होगा, यानी हमारी थाली में हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें और पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। बहुत अधिक नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा वाले भोजन को सीमित कर देना चाहिए। दूसरा मंत्र है हृदय को सही रखने का, नियमित शारीरिक गतिविधि। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहनों हम घंटों जिम में बिताएं। अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार नियमित तेज चाल से चलना, योग या अन्य शारीरिक गतिविधियां भी लाभदायक हो सकती हैं। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है तनाव को नियंत्रित करना। आज हम काम, परिवार, आर्थिक जिम्मेदारियों और सामाजिक जीवन के बीच लगातार तनाव में रहते हैं। ऐसे में कुछ समय अपने लिए निकालना जरूरी है। प्राणायाम, ध्यान, संगीत, प्रकृति के बीच समय बिताना या अपने प्रियजनों से बातचीत करना मन को राहत दे सकता है। और बहनों में

महिलाओं के लिए यह संदेश विशेष रूप से जरूरी है। परिवार की देखभाल करते करते हमारी माताएं बहना अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। अक्सर महिलाएं घर के हर सदस्य की चिंता करती हैं, लेकिन अपनी जांच और स्वास्थ्य को बाद के लिए छोड़ देती हैं। हृदय से जुड़ी किसी भी असामान्य परेशानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सीने में दबाव या दर्द, सांस फूलना, अचानक बहुत कमजोरी, ठंडा पसीना या दर्द का वाह, कंधे, पीठ या जबड़े की ओर फैलना जैसे लक्षण हो तो बहनों तुरंत चिकित्सीय सहायता लेना जरूरी है। हर व्यक्ति में लक्षण एक जैसे हों यह जरूरी नहीं है। तो एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, दवा से पहले सावधानी, बीमारी से पहले जागरूकता और जिंदगी भर दिल का ख्याल, यही है स्वस्थ जीवन की तैयारी। तो बहनों, हमें अपनी इन चीज़ों का ध्यान देना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहूँगी, तंबाकू और धूम्रपान से दूरी रखें, क्योंकि यह केवल फेफड़ों के लिए ही नहीं बल्कि हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए भी नुकसानदायक है। तो आइए आज हम अपने दिल से एक वादा करें, नियमित व्यायाम करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे और तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, और अपनी सेहत को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो बहनों, इन्हीं चंद लाइनों के साथ हमारी बहनों को रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम निवेदित किया रेशमा अग्रवाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना जास्मिन सैंडलास, शशवंत सचदेव और मधुवंती बागची की आवाज़ों में धुरंधर फिल्म का ये गीत। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे जावेद अली और सोनू निगम को। फिल्म का नाम था गजनी। इस गीत को लिखा था परसून जोशी ने और इस गीत को संगीत से संवारा था AR रहमान ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म गुप्त से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है वीजू शाह ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: Abhishek Sharma contributed 39 runs off 19 balls. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 297 points to 74,301, while Nifty added 106 points to 23,225 when reports last came in. And before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first. India lodges strong protest with Pakistan over unacceptable conduct of Pakistani naval units leading to naval collision in international waters. India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog, Delhi emerges top performer in adopting electric mobility, followed by Maharashtra and Karnataka. Saudi Arabia says it intercepted Houthi drone near Makkah. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
2: The question should not only be
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
1: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के

0: वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
4: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।

0: समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र, रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग

0: मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना। श्रोताओं, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओं, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। डू यू लाइक गोइंग टू द गार्डन?
2: यस मैम, आई लाइक इट।
1: व्हाट डू यू सी इन द गार्डन? टेल मी Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
5: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
6: I like to see butterflies.
1: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
2: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
1: Very good. That there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: So, children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
2: garden.
1: Wonderful! You have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.

0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
1: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद

0: का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
1: हाँ,
0: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
1: जी,
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी,
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है।

0: जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ कर

0: योजना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

साथियों, सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, लेकिन ओजोन परत के बिना सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के फलने फूलने के लिए बहुत अधिक होती। समता मंडल की यह परत हमें सूर्य की अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य का प्रकाश जीवन को संभव बनाता है, लेकिन ओजोन परत ही हमारे जीवन को संभव बनाती है। जब 1970 के दशक के उत्तरार्ध में वैज्ञानिकों ने पाया कि मानव जाति इस सुरक्षात्मक कवच में छेद कर रही है, तो उन्होंने चेतावनी जारी की। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे एरोसोल और शीतलन उपकरणों में प्रयुक्त ओजोन क्षयकारी गैसों के कारण उत्पन्न यह छेद त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद के मामलों में वृद्धि करने और पौधों, फसलों और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए खतरा पैदा कर रहा था। वैश्विक प्रतिक्रिया निर्णायक थी और विश्व ओजोन दिवस, जो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस उपलब्धि का जश्न मनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में अपनाया गया ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए जाने की तिथि याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि विज्ञान द्वारा निर्देशित सामूहिक निर्णय और कार्रवाई ही प्रमुख वैश्विक संकटों को हल करने का एकमात्र तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए ओजोन परत की रक्षा करनी जारी रखनी चाहिए। 1985 में विश्व की सरकारों ने ओजोन परत संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन को अपनाया और यह 1988 में लागू हुआ। हस्ताक्षरकर्ता देशों ने ओजोन परत पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों का अनुसंधान और निगरानी करने के लिए ओजोन परत पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। कन्वेंशन में देशों को ओजोन क्षयकारी पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई करने की बाध्यता नहीं थी। वियना कन्वेंशन के अंतर्गत ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के रूप में जाने वाले लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करता है। वायुमंडल में छोड़े जाने पर ये रसायन समता मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पृथ्वी की सुरक्षात्मक ढाल है, और मनुष्यों और पर्यावरण को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। 15 सितंबर 1987 को अपनाया गया प्रोटोकॉल आज तक एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता है जिसे पृथ्वी के 198 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बदौलत ओजोन परत ठीक हो रही है और उम्मीद है कि सदी के मध्य ये 1980 के पहले स्तर पर वापस आ जाएगी। हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, लेकिन कुछ प्रतिस्थापन जिन्होंने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों में साबित हुए हैं। वास्तव में कुछ HFC जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। प्रोटोकॉल के समर्थन में 2019 में लागू हुए किगाली संशोधन के तहत हाई फ्लोरेट कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा। HFC को चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक काम करने के लिए 2100 तक वैश्विक तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि से रोका जा सकेगा, साथ ही ओजोन परत की सुरक्षा भी बनी रहेगी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं वार्ता। पर्यावरण का सुरक्षा कवच, ओजोन परत। वार्ताकार हैं गगन कुमार गौतम।
3: हम सब जानते हैं कि जीवन ईश्वर की अनमोल देन है। ईश्वर ने पृथ्वी पर जल, वायु और प्रकाश भेजकर जीवन को साकार किया। संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य प्रकाश व ऊर्जा सार्वभौमिक स्रोत है। क्या आपको मालूम है, सूर्य का जो प्रकाश हमारे लिए जीवनदायक है, वही प्राण घातक भी हो सकता है। जी हाँ, सूर्य के प्रकाश का एक प्रमुख भाग पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है। ये किरणें अगर पृथ्वी पर पहुंचने लगें, तो ये अपने ताप व हानिकारक प्रभाव से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर सकती है, अनेकों घातक रोग उत्पन्न कर सकती है। इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की, पर्यावरण की सुरक्षा करती है ओजोन परत। हम आपको बताना चाहते हैं, पर्यावरण दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है, परी और आवरण। परी का आशय चारों ओर और आवरण का अर्थ घेरने से लगाया जाता है। इस प्रकार वे सभी तत्व जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। ओजोन परत को भी इसमें शामिल किया जाता है, जो कि पृथ्वी तल से लगभग 16 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह एक ऐसा आवरण है जो ओजोन गैस के संघनन से बना है। इसकी रासायनिक संरचना को देखने पर ज्ञात होता है कि इसके अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अंतरिक्ष में ही परावर्तित कर देती है और पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओजोन परत को 1913 में पहली बार खोजने का श्रेय दो फ्रेंच वैज्ञानिकों चार्ल्स फारवी और हेनरी व्यूसन को जाता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एक रूप है। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, तो ऑक्सीजन जो कि मूल अवस्था में दो अणुओं के रूप में संयुक्त होती है, को अलग अलग अणुओं के रूप में विखंडित कर देती है। और जब ये विखंडित अणु दोबारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, तब होता है ओजोन का निर्माण। इसका महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब ये हमें प्लाज्मा बादलों से बचाती है। किंतु आज की इस आधुनिकता की अंधी भागती दौड़ और वैज्ञानिकों की प्रगति ने इस परत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। घरों, हॉस्पिटलों, होटलों व अनुसंधान केंद्रों में रेफ्रिजरेटरों का अधिकाधिक इस्तेमाल होता है, जिनसे निकलने वाली क्लोरो फ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। सुपरसोनिक व जेट विमानों के धुओं से ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, जिससे जगह जगह छेद होते जा रहे हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इन छेदों की पुष्टि की है। इससे बढ़ते हुए छेद का परिणाम यह होगा कि पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आने लगेगी, जिससे मानव जाति पर हानिकारक व घातक प्रभाव उत्पन्न होंगे। त्वचा का कैंसर जो आजकल लोगों में बढ़ता जा रहा है, इन्हीं पराबैंगनी किरणों का एक परिणाम है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्लोरो फ्लोरो कार्बन जैसे रसायनों के उपयोग में धीरे धीरे कमी करना है। आज वर्तमान समय में ओजोन परत का छेद लगभग 2,70,00,000 वर्ग किलोमीटर है, और ये प्रति सप्ताह 10,00,000 वर्ग किलोमीटर की गति से बढ़ता ही जा

0: जा रहा है। मौसम संगठन के अनुसार यह छिद्र दक्षिण अर्जेंटीना के पेटागोनिया क्षेत्र में उस युवा के ऊपर फैल गया है, जिससे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें विकिरण में इजाफा हो रहा है। पिछले 20 वर्षों से प्रदूषण रोकथाम कार्यक्रमों की असफलता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुछ ही समय पहले क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य कार्बन के उत्सर्जन को 50% कम करते हुए सन 2050 तक 1990 के स्तर पर लाने को है। इसके लिए विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले कार्बन के उत्सर्जन में कमी का प्रस्ताव रखा गया है। कुछ समय पूर्व तक इस संधि पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छोड़कर सभी विकसित देश सहमत थे। इंडोनेशिया के वाली द्वीप में 198 देशों के 10,000 प्रतिनिधियों वाली बैठक में ऑस्ट्रेलिया भी इसी संधि पर हस्ताक्षर करने को सहमत हो गया, परंतु अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश अमेरिका इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। उसका तर्क है कि इस संधि के अंतर्गत विकासशील देशों का भी लाना चाहिए, क्योंकि भारत और चीन जैसे विकासशील देश भी कार्बन के बहुत बड़े उत्सर्जक हैं। वस्तुतः आज आवश्यकता इस प्रकार की हट्टी अपनाने की नहीं है, वरन आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हुए कार्बन के उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी करने की है। इसके अतिरिक्त एक नागरिक के तौर पर हम और आप की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, हमें भी भारतीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अपना समुचित सहयोग देते हुए प्रदूषण में कमी के लिए जागरूकता बढ़ाने और अपने स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी ओजोन परत की रक्षा हो सकेगी, पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रह सकेगा। अतः पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए उन सभी यंत्रों का प्रयोग सीमित व प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, अन्यथा मानव जाति अपने कृत्यों के कारण ही अपने विनाश के लिए स्वतः जिम्मेदार होगी। दोस्तों, पृथ्वी पुकार कर रही आज हमसे, पृथ्वी पुकार कर रही आज हमसे, किया है तूने दोहन मेरा, मगर उम्मीद है तुझसे, आगे बढ़ आगे बढ़, प्रदूषण रोक, बचा ले तू ओजोन को, अपना और सभी जीवों का, ना कर तू सर्वनाश खुद से, ना कर तू सर्वनाश खुद से।
1: साथियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता, पर्यावरण का सुरक्षा कवच ओजोन परत। वार्ताकार थे गगन कुमार गौतम।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: और साथियों, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: और साथियों, इसी के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक

0: 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी। इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिम्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान के बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली से ही हम रिले करेंगे रात्रि 8 बजे एक विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 6:15 पर होगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसमें आज ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे अनिल भोरे। साथ ही हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम में ब्रज लोक गीतों का। संध्या 6:30 पर होगा भक्ति परक संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। हेलो ब्रज ग्रामीण, ये फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:50 पर। कार्यक्रम का संचालन करेंगे दिलीप यादव और नीलमणि शर्मा। इस कार्यक्रम में आज विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। विशेषज्ञ वार्ताकार होंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। श्रोताओं, यदि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से पशुओं की उचित देखभाल के संबंध में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 25:30:135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर हो जाएगा 0565 25:30:135। समय याद रखिएगा संध्या 6:50।

संध्या 7:31 पर श्रोता सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी कुली।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। इसके बाद आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे रात्रि।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज ब्रज काव्य सुधा

0: अंतर्गत हम आपको सुनबा में काव्य पाठ, कवि हैं अनिल बोहरे।
1: मैं दाऊजी के मेला हाथरस को दृश्य दिखाए रहा हूं कविता में। ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिगसो न्यारो है। अंग्रेजन ने हमला करो पर हर बम फुस भयो जी, दाऊ की कृपा सो पूजा को ठिया सुरक्षित रहो जी। श्री मद भागवत स्कंद 10:35 को सहारो है, या मंदिर में हमारो दाऊ बाबा मुरलिया वारो है। ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिगसो न्यारो है। सन 1912 प्रारंभ भयो दाऊ जी मेला है, आज तो भैया मेला में होवत भीड़ को रेलाए। आवत हैं जीजा फूपा मामा सारो गुरु और चेलाए, तमाशे ढोल तांसे कार्यक्रम और चाट पड़ाके को ठेलाए। ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिगसो न्यारो है। सन 1912 में प्रारंभ भयो दाऊ जी को मेला है, ब्रज को मेला ब्रजवासिन की यहाँ ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा के स्वांग रसिया खयाल रास देखन की अभिलाषा है, कलाकारन की कला प्रस्तुति यहाँ पे वृद्धि ही परिभाषा है। पूरे बरस सोचत कैसा होवेगो मेला जे जिज्ञासा है, ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिगसो न्यारो है, सिगसो न्यारो है। कुश्ती दंगल कू रहो डल्ला वारी अटल टाल को सहारो है, कुश्ती दंगल कू रहो डल्ला वारी अटल टाल को सहारो है। तकिया और अनेकन अखाड़े को अपनो अपनो फारो है, दाऊ मंदिर में दाऊ रेवती विग्रह आखन को तारो है। अब तो देव छठ के हाथरस मेला को जानत जग सारो है, ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिगसो न्यारो है। 21 दिन को होवत दाऊ मेला बड़ी तैयारी जी, कार्यक्रमन की रेलम पेल में एक पे परत एक भारी जी। संयोजक बन जावत जो होय रिसीवर के आभारी जी, नाय मिले मौको उनके मन होवत हैं दुखारी जी, होवत हैं दुखारी जी। ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिगसो न्यारो है। नथाराम के जमाने सो जमत अब स्वांगनाए, खिच्चो आटे वारे सो रसिया मेला में अब नाए। ख्याल रास हूं अब पुरानी रंगत नाए नाए नाए, सरकार की नई भाषा नीति लागत रंग भर जाए, सरकार की नई भाषा नीति लागत है रंग भर जाए। पूरी उम्मीद है सरकार की नई भाषा नीति आ रही है कि मातृभाषा प्राइमरी बेसिक कक्षन में पढ़ाई जाएगी, तो मातृभाषा पढ़ाई जाएगी मतलब ब्रजभाषा पढ़ाई जाएगी, जो ब्रजभाषा के कार्यक्रम फिर जमेंगे रंग लाएंगे, ऐसी पूरी हमें उम्मीद है। कवियन की जा नगरी में कवि सम्मेलन की धूम रे, आ चकाचक कवि सम्मेलन। कवियन की जा नगरी में कवि सम्मेलन की धूम रे।

0: हर गैल पे अपनी अपनी काव्य संस्था रही घूम रे, जित्ते कवि उत्ती संस्था। अनगिनत कवि बन गई लई माटी हाथरस चूम रे, कवि सम्मेलन होवत जा दिवस मेला में लगत हजूम रे, मेला में लगत हजूम रे। ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिख सो न्यारो है। राजा दयाराम हूँ कवि हते, कवि बक्तावर बतायो जी, दाऊ मेला सो काका निर्भय विश्व में यश कु पायो जी। बा कवि कु जग जानो जाने दाऊ दरबार सर झुकायो जी, हाथरस के अनेक कवियन को झंडा लहरायो जी, हाथरस के अनेक कवियन को झंडा लहरायो जी। ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिख सो न्यारो है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संघ कवि सम्मेलन है अनेक, कवित्री सम्मेलन ब्रजभाषा मंडली है श्रोता नेक। दलित साहित्य गंगा जमनी एक शाम अटल के नाम की पहचान, हिंदी प्रोत्साहन सहित सभी को है एक ही मचान, एक ही मचान। ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिख से न्यारो है। एक शाम दाऊ के नाम खाटू श्याम लाफ्टर सो होवे, संगीत सम्मेलन कब्बाली देवी जागरण से रस पावे। प्रत्येक निशा नई दिशा पर महिला कहाँ पे सोवे, दाऊ मेला में जो ना आवे वो ही रस खोवे, वो ही रस खोवे। ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिख सो न्यारो है, सिख सो न्यारो है। या मेला में मेला मेल को भावना पे जोर रे, या मेला में मेला मेल को की भावना पे जोर रे। व्यापारी मिलन अधिवक्ता मिलन कर्मचारी शिक्षक को शोर रे, चिकित्सक कृषक पेंशनर्स शहीद सम्मान की हु डोर रे। मिलन के इत्ते अवसर ना जा को कोई तोर रे, ब्रज की पूरब देरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिख से न्यारो है। हर वर्ग जाति को शिविर समाज सेवा में अगारी, हर वर्ग जाति को शिविर समाज सेवा में अगारी। अग्रवाल बारे सैनी ब्राह्मण जाट के हैं मंदिर के पिछारी, छत्री कुशवाहा हरजन सबके विविध कार्यक्रम की तैयारी। चक्र सजावट नाहे अदावट जाऊं इनको मैं बलिहारी, ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिख से न्यारो है। गणेश चतुर्थी वेद पूजन छठकु होए मेला को शुभारंभ, गणेश चतुर्थी वेद पूजन और छठकु होए मेला को शुभारंभ। दाऊ बाबा के अभिषेक मंदिर लागे टनाटन, रेलम पेलम भीड़ की लक्खी मेला है ये धनादन। माखन मिश्री को भोग आनंदित भक्त बाटन, ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिख सो न्यारो है। और जा रचना को अंतिम मैं प्रस्तुति दे रहा हूं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी समाज सेवी कलाकार को सम्मान, सबको सम्मान हुए यहाँ मेला में जो प्रतिभाशाली हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी समाज सेवी कलाकारन को सम्मान, पहलवान नेता अमीर गरीब सभी को रखो जावे मान। मेला को पूरण करवे को लगत है चतुर सुजान, मेला नाय देखो तो कछु नाय देखो कल्लू भैया जी ज्ञान। ब्रज की पूरब देहरी हाथरस नगर प्यारो है, दाऊ को देव छठ मेला सिख सो न्यारो है, सिख सो न्यारो।
1: अभी आपने ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत

0: भारती शर्मा के स्वर में अभी आपने जो लोकगीत सुनो।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: और अब यही के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए हैं।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं गणपति वंदना से। स्वर अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के हैं।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। ये हमारा फोन इन कार्यक्रम है।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भैया को राम राम। भैया, जैसे कि हम सभी जाने हैं, बरसात के मौसम में पशुओं को ज़्यादा परेशानी है जाए है, तो ऐसे में अपने पशुओं की जो देखभाल है वो कैसे करनी है। वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी बढ़वे और जगह जगह पानी जमा हैवे के कारण पशुओं में कई तरह के रोग हैवे की संभावना बढ़ जाए है। जाले या मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल आवश्यक है। भैया, सबसे पहले पशुओं को सूखे साफ और हवादार बाड़े में रखना है। बाड़े में पानी जमा ना होने दें और समय समय पर इनकी सफाई और कीटाणुनाशक से सफाई करें। पशुओं को गंदो या दूषित पानी ना पीमन दें और हमेशा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करावें। चारी को भी साफ और सूखो रखें। सड़ो, फपूद लगो या बारिश में भीगो भयो चारों पशुओं को नाए खवावें। हरो चारों खवावे थे पहले बाय अच्छी तरह जांच लें। भैया, चूँकि बरसात में मच्छर, मक्खी और परजीवी ज़्यादा बढ़ जाए हैं, जाले बाड़े और वाके आसपास पानी जमा ना होने दें। पशुओं को समय पर टीकाकरण और कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से करावें। यदि पशु को बुखार, लगातार दस्त, खांसी, भूख कम लगो या असामान्य व्यवहार जैसे लक्षण दिखाई दें तो स्वयं दवा देवे के बजाय तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। यानी कह सके हैं कि स्वच्छता, संतुलित आहार, साफ पानी और समय पर टीकाकरण बरसात में पशुओं को स्वस्थ रखने के प्रमुख उपाय हैं। भैया, आप समझ रहे होंगे क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार के दिन अपना कार्यक्रम जो है फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण, आपकी जो फ़ोन आमे हैं फ़ोन के माध्यम से समस्याओं को समाधान हुए है। तो आज को जो हमारा विषय है बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल पर आधारित है। आपकी जो भी समस्याएं हैं 25 30 135 फ़ोन नंबर डायल करके अपनी समस्याओं को समाधान पा सके हैं और मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड जरूर लगा ले में। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। भैया, हमारी फ़ोन लाइन खुल चुकी है, तुरंत डायल करें और पावें समस्याओं को समाधान।
1: किसान भैयन को राम राम। भैया, जैसी अभी नीलमणि बहन ने बताई कि आज हम बात करेंगे ब्रज ग्रामीण हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में कि जो हमारे पशु हैं, हमारे जो जानवर हैं, जो हमारी घर गृहस्थी के इकोनॉमिक आधार को बड़ो वो है, जरिया है हमारे जीवन को, अगर वो बीमार रह जाए विशेषकर बरसात के मौसम में तो कैसे हम उनको सही कराएं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यह कार्यक्रम में आपको स्वागत, नमस्कार
2: जी। धन्यवाद आपका
1: जी। तो ये जो मौसम है, जैसे बता रही नीलमणि बहन जी की उमस है, थोड़ा सा मक्खी मच्छर भी हैं और ये समय चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो चाहे वायरल डिजीज हो, सबके लिए बड़ा मुफीद है। तो बताइए कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हो सकती है हमारे।
2: देखिए, नीलमणि बहन जी अपने शुरुआत में ही काफ़ी अच्छे से समझाया हमारे पशुपालक भाइयों को। तो ये हम सभी जानते हैं, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जब तापमान अधिक होता है और ह्यूमिडिटी या उमस ज़्यादा होती है तो सभी प्रकार के कीटाणु, कीड़े, मच्छर, मक्खी, अंदर रहने वाले परजीवी, सभी की संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। और हमारा जो ये पशु हैं उसमें से चूँकि उमस भरा मौसम होता है तो वो भी तनाव में या जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस में आना शुरू होते हैं। जब भी कोई पशु हमारा स्ट्रेस में या तनाव में होता है तो शरीर में एक हार्मोन कार्टिसोल निकलना ज़्यादा शुरू होता है, जिससे उसकी रोग से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता पे भी प्रतिकूल असर, बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है।
1: जी, जी, जी।
2: तो विषाणु और बैक्टीरिया जितने भी हैं, तो जो भी संक्रामक रोग जितने भी हो सकते हैं, तो सभी की संभावना इस मौसम में होने की बढ़ जाती है। तो अगर हम सबकी बात न सही तो कुछ अगर मुख्य की बात करें तो हालांकि टीकाकरण का प्रसार काफ़ी हो गया है कुछ साल में, नहीं तो हमारे जो बुजुर्ग पशुपालक भाई होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में वो देखते होंगे कि एक ज़माना था जब घुरका या गला घोंटू से बहुत ज़्यादा हमारी खासतौर से भैंसों की, गायों में
1: बहुत
2: नुकसान होता था क्योंकि ये एक बैक्टीरिया जीवाणु जिसको हम अंग्रेजी में पास्चुरेला मल्टोसिडा कहते हैं उससे होता है। और इसमें हमारे किसान भाई को समय नहीं मिलता था कई बार इलाज करने का, कि जैसे शाम को अगर अच्छा खासा पशु खिला पिला के बांधा, रात को 9-10 बजे बुखार आया और सुबह होते होते 5-7 बजे तक कई बार उसमें से 50-60% पशुओं की मृत्यु भी हो जाती थी।
1: जी, जी।
2: तो इसीलिए क्योंकि एक ही चीज़ हम इस कार्यक्रम में पहले

0: भी कई बार इस चीज़ पे जोर दे चुके हैं टीकाकरण के लिए, पर कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों में, कुछ उसमें आलस का भी कह सकते हैं या उपलब्धता की भी कई बार बात होती है, नहीं लग पाता। पर मुझे लगता है कि जिस तरह की बाजार व्यवस्था डेवलप हो गई है तो बहुत सारे टीके बाजार में भी उपलब्ध हैं, हमारे पशुपालक भाई चाहें तो लेके उनको
1: जी
0: लगवा
1: जी
0: सकते
1: जी जी
0: हैं।
1: जी हमारे किसान भैया जुड़ने लगे। हेलो,
2: सर नमस्कार
1: नमस्ते भैया, नाम बताइए।
2: सर, मैं गढ़वाल से पप्पू से बोल रहा हूँ सर जी। जी
1: पप्पू बोल रहे भैया। हाँ बताइए, क्या समस्या है आपकी।
2: सर जी, हमारी भैंस 15-20 दिन पहले ब्याही थी,
1: हाँ
2: उसने पड़िया डाली थी, लेकिन उसकी पड़िया की किलीली हो गई है और वो पल पल पे पेशाब कर रही है,
1: अच्छा, आप पढ़िया की बात कर रहे हैं ना।
2: पड़िया की,
1: ठीक है डॉक्टर साहब।
2: और उसकी उम्र 20-22 दिन की है,
1: जी,
2: और उसको मतलब, और वो दाना वाना जो खिलाते हैं ना, दलिया जैसे हम पशु को खिलाते हैं, तो उसको भी देना चाहिए ना, या नहीं देना
1: हाँ
2: चाहिए।
1: अभी डॉक्टर साहब बता देते हैं।
0: देखिए, ये जो समस्या पप्पू जी ने बताई है ये एक बड़ी बड़ी समस्या हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, ये बाह्य परजीवी कलीली खास तौर से जिसको हम
1: हाँ जी
0: कहते
1: जी जी
0: हैं।
1: जी
0: तो अच्छा सवाल आया, इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे
1: जी
0: कि कलीली आई है अगर हमारे पड़िया पे इन पे आई है तो जाहिर सी बात है अगल बगल भी किसी और पशु पे जरूर होगी, तभी वहाँ
1: पहले
0: से
1: से
0: पहले से
1: होगी
0: भी होगी।
1: जी।
0: और उसमें अगर इनके समाधान के लिए कहें तो ये कलीली मारने वाले कुछ साबुन भी बड़े पशुओं के लिए भी उपलब्ध हो गए हैं,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: फिलहाल वर्तमान में इनकी समस्या का समाधान तो ये हो सकता है कि वो साबुन आप जाके अपने पशु चिकित्सक से पूछ लें, चाहे अगल बगल के ब्लॉक में जहाँ से भी बोल रहे हैं, नहीं तो आप जहाँ पशु की औषध दवाएं मिलती हैं तो कलीली वाला साबुन भी आप ले लें,
1: यूज कर सकते
0: यूज
1: हैं,
0: कर सकते हैं। मैं अभी और घोल बनाने वाली दवाएं भी आती हैं, पड़िया के लिए सलाह नहीं दूंगा क्योंकि अगर सही संग
1: छोटी बच छोटा
0: छोटा
1: बच्चा।
0: पशु है और घोल की मात्रा कम ज़्यादा हो गई तो वो नुकसान हो सकता है, और चाट लिया तो, क्योंकि जितने भी दवाएं कीटनाशक के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं सब विषैली जहरीली होती हैं,
1: जी
0: तो आप
1: जी
0: उस घोल के चक्कर में ना पड़े। साबुन आता है जो, वो पड़िया के लिए आप साबुन ले लें ये कलीली मारने वाला,
1: और
0: उससे जो
1: छोटा है
0: है
1: तो थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि हाथ से भी उसको निकाल
0: निकाल
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं। उसमें निकालते समय केवल ये सावधानी रखें कि कई बार नोचते समय उसका जो मुंह होता है वो खाल के अंदर ही धंसा रह जाता है और टूट के बाकी हिस्सा बाहर
1: बाहर
0: आ
1: आ
0: जाता है, फिर
1: जाता
0: वहां पर वो दाने पड़ जाते हैं या फुंसी बन जाती है, तो वो नुकसान भी होता है। तो उससे बेहतर होगा कि अगर निकालना भी है तो पहले आप साबुन से उसको
1: साबुन से धो
0: पंद्रह
1: देते
0: पंद्रह
1: हैं।
0: दिन पे 20-20 दिन पे एक बार आप लगा दें। और इस पे लंबी चर्चा ये करनी होगी क्योंकि ये जो हम चाहे घोल बनाने वाली दवाएं हो या साबुन हो, इनका बहुत लंबे समय तक असर नहीं रहता। हमारा किसान भाई भी शिकायत करता है कि अभी हमने नहलाया है, दवाई लगाया, 20 दिन बाद हालत फिर जैसी थी वैसी
1: हाँ,
0: ही
1: मतलब
0: हो गई,
1: जैसे
0: तो
1: हम रोजाना नहाते हैं
0: वैसी
1: उसको।
0: स्थिति हो जाती है कि हमने क्या
1: हाँ, तो
0: कहते
1: साफ
0: हैं,
1: सफाई रखें
0: अगर
1: उसमें
0: ओडोमॉस की क्रीम लगा रखी है तो मच्छर नहीं काटेगा, लेकिन जब अगले दिन धूल उठेगी तो मच्छर फिर से दोबारा
1: फिर
0: काटेगा, तो
1: से।
0: वही स्थिति हो जाती है। तो कलीली जो है और जो काटने वाली मक्खियां, डांस जिसको हमारे क्षेत्र में भी कहा जाता है, ये काटती हैं, परेशान करती हैं, खून पीती हैं, ये तो अपने आप में एक समस्या बड़ी है ही है। इससे बड़ी समस्या इनकी बनती चली जा रही है कि ये कई सारे रक्त परजीवी के रोगों को फैलाती हैं। जैसे आज की डेट में अगर मच्छर की हम बात करें तो हम मनुष्यों को मच्छर काट ले उससे इतना डर नहीं लगता, मच्छर डेंगू और मलेरिया जो फैला देता है वो बड़ी
1: वो ज्यादा
0: समस्या, बड़ी
1: खतरनाक
0: खतरनाक
1: है।
0: हो जाता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: यही स्थिति पशुओं में भी हमारे आ जाती
1: तो
0: है।
1: मतलब ये है कि बाड़े की ये साफ सफाई रखें, और बड़े पे है कि उसमें, तो इसीलिए।
0: इसमें मैं ये कहूंगा कि हमें कलीली का जीवन चक्र पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमारे किसान भाई को, क्योंकि ये जो दवाएं नहलाने वाली चाहे साबुन में हो घोल में हो, ये आज से 50-50 साल से प्रयोग होती आ रही हैं, और सही तरीके से नहीं प्रयोग किया तो जितने हमारे ये कीड़े हैं उसमें प्रतिरोधक क्षमता रेजिस्टेंस बहुत पैदा हो गया है। तो पहले हम 1 लीटर में 3 ml का घोल बना के लगा देते थे, काम कर जाता था, आज की डेट में हम देखते हैं 5-5 ml का एक घोल बनाते हैं तो भी कई बार वो काम नहीं करता है, और 7 से 10-12-15 दिन में ही दोबारा वो आ जाती हैं। तो इसमें किसान भाई हमारे एक भी देखे होंगे कि कोई कलीली शरीर पर छोटी सी लगी होती है, कोई काफ़ी बड़ी सी हो जाती है खून पी के, तो वो एक ही कलीली है, वो अलग अलग नहीं है, और जब वो खून पी के बड़ी सी हो जाती है तो चुपके से पशु का शरीर छोड़ के उतर जाती है, और जहाँ भी आपका बाड़ा है पशु है
1: दूसरे पे चली जाए।
0: वो किसी, अगर वहाँ पर छुपने की जगह उपलब्ध है, प्लास्तर नहीं है, दरार है, फूस का छप्पर है, नीम का पेड़ बीच में बंधा हुआ है, आमतौर पर पशुशाला में ये भी देखने में आता है कि लोग उसको कबाड़ रखने का स्थान बना लेते हैं, उसी में बल्ली पटरा रखा हुआ है, ईंट का चट्टा रखा हुआ है, तो वो नीचे छुप जाती है जाके और एक बार में 2-3 हज़ार तक अंडे
1: अरे बाप
0: देती
1: रे,
0: है।
1: मतलब
0: और
1: बड़ा स्टॉक
0: हाँ,
1: तैयार
0: और
1: कर
0: ये
1: देती
0: दो
1: है।
0: तीन हजार जो उसमें से लार्वा निकलते हैं, इनको 2 महीने से 6 महीने तक भी अगर खून पीने को नहीं मिले तो ये मरते नहीं हैं, जिंदा बचे रहते हैं। तो जब भी इनको अगले 5-6 महीने में मौका मिलेगा ये फिर से पशु के शरीर पे चढ़ जाएंगे और ये जीवन चक्र बार बार चलता रहेगा
1: मतलब बहुत सावधानी की
0: तो
1: आवश्यकता है।
0: इसमें यह है, इनका जीवन चक्र तोड़ना पड़ेगा। नहीं तोड़ेंगे आप अपने स्थान पे तो ये समस्या बार बार बनती

0: चली जाएगी।
1: चली जाएगी। चलिए, आपने बहुत विस्तार से बता दिया। अगले किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: डॉक्टर नमस्कार जी।
1: जरा नमस्ते भैया, नाम बताइए। राम
2: चरण मेरा नाम
1: जी।
2: रामचरण,
1: रामकरण, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जिला डीग राजस्थान से। डॉक्टर,
1: जिला डीग राजस्थान से, बताइए समस्या बताइए।
2: 40 टन का एक पट्टा है हमारे पास, और उसके जो है इंजेक्शन लगा देते
1: जी। जी, समझ में नहीं आया क्या कहा आपने?
2: उसके बदन में पूरे में खुजली है।
1: अच्छा, खुजली है। चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, वो खुजली की बात कर रहे हैं?
0: जी जी, ये खुजली की बात
1: और है। लेकिन आजकल में इसी से जुड़ा हुआ जो बहुत लंपी डिजीज का भी है।
0: आप ये गाय की बात कर रहे हैं कि भैंस की बात कर रहे हैं? आवाज कट रही है।
1: आवाज कट रही है। वो पढ़ रहा है वो गाय का या भैंस का? मतलब भैंस का। भैंस का।
0: इसके स्किन पे, त्वचा में कोई घूमड़ वगैरह से चकत्ते से भी बन रहे हैं साथ में?
2: बाल उसमें खुजा खुजा खत्म कर दिए।
0: जी जी जी, उसमें फुंसी सी बनती हो, कोई पस या पानी सा भी आता दिखता है क्या? देखिए, तो ये बारिश के मौसम में
1: जी जी त्वचा बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं।
0: त्वचा के भी रोग काफी ज्यादा फैल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ये परजीवी से भी हो। कई बार कुछ बैक्टीरियल संक्रमण भी त्वचा के होते हैं, और भी डर्मेटोफाइलोसिस जैसे एक रोग होता है, उसमें भी वो जैसे हम लंपी कह रहे हैं, लंपी जितने बड़े तो नहीं, छोटे छोटे चकत्ते से बन जाते हैं, खुजली होती है, बैक्टीरियल संक्रमण है। देखिए, कई तरह के रोग होते हैं, तो बेहतर होगा जहां से आप डीग से बोल रहे हैं, आप अपने ब्लॉक के एक बार पशु चिकित्सा अधिकारी को एक बार उसको या तो पशु ले जाकर दिखा दें, नहीं जा सकते हैं तो फोटो या वीडियो बना के आप चले जाएं, तो वो
1: उसको समझने में,
0: उसमें समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। क्या कहते हैं, कहीं क्योंकि लंपी का भी प्रकोप इस समय काफी हो गया है, तो वास्तव में कहीं वो लंपी की तरफ जा रहा है पशु, या कोई बैक्टीरिया से होने वाला रोग हो गया, क्योंकि दोनों लंपी है तो उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लगाने का कोई तुक नहीं है। अगर जो डर्मेटोफाइलोसिस में कह रहा हूं वो है, तो आपका एंटीबैक्टीरियल साबुन और तमाम तरह के लगाने वाले दवाइयां आती हैं, उनसे आपका काम चल जाएगा। तो इस मौके पर फिलहाल ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि
1: लेकिन आप, में क्या है, लेकिन उसकी फोटो ले जाएंगे तो
0: फोटो ले जाए तो आपका डॉक्टर आपको समझा देगा,
1: आसानी हो जाएगी। दूसरे किसान भी जुड़ रहे हैं। हेलो जी, थोड़ा अपना सेट कम करिए। हाँ, आप बताइए। हेलो जी जी, हाँ बताइए, आप बताइए, आपका आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन समस्या रखिए। अब इसमें डॉक्टर साहब, जैसे बैक्टीरियल वायरल की है, कई बार किसान भाई एक्चुअल में उसको समझ नहीं पाता, तो आपने जैसे कहा कि भाई फोटो खींच लो।
0: देखिए, मैं एक्सपर्ट के ये जरूर कहूंगा कि जो भी सुविधा है हम पे उपलब्ध, अच्छी है, कम अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, पर हमें उसका जितना से जितना उपयोग कर सकते हैं करना चाहिए। तो हमारे देश की एक बड़ी अच्छी बात मैं बताऊंगा कि कभी कभी हमको लगता है कि जो राजकीय व्यवस्था है वो हमारे मन माफिक नहीं है, परंतु बहुत सारे हमारी बात या जानकारी में ऐसा भी है कि अमेरिका या यूरोप के जो देश हैं उनमें कोई भी राजकीय पशु चिकित्सालय जैसी चीज नहीं होती है। कम से कम हमारे यहाँ हर राज्य में, हर विकास खंड में एक पशु चिकित्सालय है, और पशु चिकित्सा अधिकारी आपके पदस्थ हैं, तो आपको कम से कम एक सही सलाह तो जरूर मिल जाएगी। तो आप अवश्य जाएं, आप स्वयं पशु नहीं ले जा सकते तो फोटो वीडियो ले जाएं, अपनी समस्या बताएं उनको, तो बेहतर समाधान। और अब तो क्या कहते हैं, मोबाइल एम्बुलेंस भी हमारे कई जगह पे उपलब्ध हो गई हैं, तो
1: जी,
0: आपके क्षेत्र में भी आपके डॉक्टर जाके जी, जी, जी, आपका समाधान कर
1: अच्छा,
0: सकते हैं।
1: जैसे बहुत सारे और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, फोन ले लेते।
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
3: नमस्ते राधे राधे जी।
1: बोलो भैया, क्या वो है?
3: हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो है झोटी सैलून।
1: अच्छा, बोलो बोलो।
3: तो उसके थने ब्याने में अभी इसको 1-1.5 महीने, उसके थन मोटे हो गए हैं। ये क्या समस्या है जो ऐसे हो गए? तो मतलब हर वक्त ऐसे डरती है कि काटने में 1.5 महीने अभी ब्याने में।
1: अच्छा अच्छा,
3: महीने से समस्या है।
1: हाँ, इसमें भी डॉक्टर साहब मैं इसी के साथ जोड़ लेता हूँ कि जैसे थनेला भी हो जाता तो उसकी भी जानकारी दे दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अभी इनके
0: देखिए फिलहाल आपकी, आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, आपकी पहलौन पड़िया जैसा मुझे लगा इनकी बात से। कुछ हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं, कई बार पशु वर्ग पहली बार जब ब्याने वाला होता है तो ऐसा हो जाता है, उसमें कई बार हम बहुत सारी दवाई करवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत सारा खर्चा करने लगते हैं। अगर उसमें से दूध आ भी रहा है थोड़ा बहुत, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पहलौन पढ़िया है?
3: हाँ हाँ, वो सही है, मैंने काढ़ के नहीं देखी है, मतलब
0: आप
3: देख, थन ऐसे हो रहे हैं, काफी मोटे हो रहे हैं।
0: आप थन मोटे हो रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, आप

0: उसमें घबराएं नहीं, उसमें जब उस ब्याज आएगी अगर दूध थनैला होगा तो चिड़चिड़, और थनैला चूंकि पहलौन है तो थनैला होने की संभावना बहुत कम है,
1: अच्छा पहलौन भी
0: पहलौन है
1: नहीं
0: तो थनैला होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। उसमें कई बार कुछ पशुओं में ऐसा हो जाता है हार्मोनल चेंज की वजह से, ये कोई बुरी चीज नहीं है, कुछ पशुओं में अपने आप ऐसा होता है और ब्याने के बाद अपने आप ही
1: इनको
0: ठीक हो
1: लग रहा है
0: जाएगा।
1: एन थोड़ा आकार
0: एन
1: बड़ा हो
0: इनको
1: रहा
0: लग
1: है,
0: रहा है कि ज्यादा पहले ही आकार उसका बड़ा हो गया है,
1: बड़ा
0: क्या
1: हो
0: कहते
1: रहा
0: हैं, जो चीज
1: है।
0: जब शुरू आखिरी के हफ्ते में होनी चाहिए थी वो अभी से
1: हाँ अभी
0: होने
1: हो
0: लगी
1: रही
0: है, तो उसमें
1: है।
0: आप घबराएं नहीं, कोई दवाई इत्यादि उसमें देने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा
1: अच्छा
0: फिलहाल।
1: पहलौन में जिसमें जैसे आपने थनेला की बात कर रहे थे तो साफ सफाई कई बार नहीं होती, इन्फेक्शन हो जाता, तो एक्चुअल में किसान भाइयों को कितना, पशुपालक भाइयों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि एक थन खराब हुआ ना तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी घट जाती
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: उसका आकार वो हो जाता है, तो पशु की कीमत ही ओवरऑल
0: खत्म हो,
1: बहुत।
0: क्योंकि हम
1: हाँ
0: पशुपाल ही दूध के लिए रहे हैं, अगर
1: हाँ
0: थन ही खराब हो गए तो हमारा पशु किसी काम का
1: नहीं
0: रह
1: रहेगा।
0: नहीं जाता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा हमारे पशुपालक भाई से, थनैला में सबसे पहले दूध में परिवर्तन आना शुरू होता है, अंग्रेजी में हम इसको मैस्टाइटिस बोलते हैं, और कई बार शुरुआती दौर में कोई सूजन इत्यादि नहीं, जलन दर्द नहीं होता पशु को, केवल दूध में परिवर्तन हल्का सा आना शुरू, सबसे पहले आप देखेंगे दूध का स्वाद थोड़ा नमकीन या कसैला सा होना शुरू हो जाता है, उसकी अगली जो अवस्था आती है उसमें दूध में थोड़े छीछड़े से आना शुरू हो जाते
1: थके
0: हैं,
1: थके
0: थक्के
1: से।
0: थक्के से आना शुरू हो जाते हैं, फिर बिल्कुल स्थिति खराब हो गई तब आगे चल के सूजन आएगी या खून आना शुरू होगा या पस
1: खून
0: आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज तो है कि हम पशु का अगर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल शुरुआती अवस्था में ही पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत इसको
1: हाँ, क्योंकि
0: होना
1: तो हम
0: शुरू हो
1: दो
0: गई
1: बार तो
0: है,
1: दूध निकाल ही रहे।
0: तो
1: हाँ
0: निकाल ही रहे हो आप, दूध इस्तेमाल कर रहे हो, दूध देख रहे हो, तो ट्रीटमेंट इसका जल्दी शुरू करवाया जा सकता है,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: कहते हैं,
1: जी
0: तो
1: एक
0: इसमें
1: और,
0: कोताही ना बरतें।
1: हाँ
0: सबसे
1: हाँ
0: बड़ी चीज है जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे उतनी जल्दी ठीक होगा, उतना कम आपका खर्चा होगा,
1: खर्चा होगा और आपका मतलब जो है नुकसान
0: नुकसान
1: पशु
0: होने
1: के
0: से बच
1: लेवल पे
0: जाएगा।
1: नहीं जाएगा। एक किसान भैया जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: भाई वाला, हेलो,
1: हाँ जी, राम राम
2: राम राम,
1: भैया,
2: नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताओ।
2: नाम, हमारा नाम विश्वजीत, गांव कारम से बोल रहे हैं साहब।
1: कारब से बोल रहे हैं, समस्या बताओ।

0: साहब हमारे सामने ये दो गाय है हमारी 51, तो उनको खनिज लवण कितनी मात्रा में कौन सी कंपनी का गर्मी में और सर्दी में दिया जाए?
1: अच्छा, तो अभी तो हम गर्मी और बरसात की बात कर लेते हैं, ये लवण की बात
2: नहीं,
1: कर रहे
2: बहुत
1: हैं
2: अच्छी बात है, हमें जागरूक किसान भाई लग रहे हैं। खनिज
1: किसान।
2: लवण की आपने बात करी, क्या कहते हैं, देखिए इसमें मौसम का कोई प्रभाव की ज़रूरत नहीं है खनिज लवण देने में,
1: हाँ, ये
2: क्योंकि
1: बता रहे
2: हम भी जब खाना
1: गर्म
2: खाते हैं तो मिनरल विटामिन हमको हर समय चाहिए होता है, चाहे कोई सा भी मौसम। ऐसा ही हमारा पशु है, उसको भी हर समय मिनरल विटामिन चाहिए होता है। तो अगर आप रेडीमेड आहार मंगा के देते हैं, जैसे कई सारी कंपनियों का आहार रेडीमेड बाजार में उपलब्ध है, तो रेडीमेड आहार ज़्यादातर जितने हैं उसमें पहले से ही नमक और मिनरल मिक्सचर मिलाकर वो बेचा जाता
1: बेच रहे
2: है। तो अगर
1: हाँ।
2: आप रेडीमेड आहार दे रहे हैं तो अलग से संभवतः आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनी का किसी का भी दे रहे हैं, वो आप अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं। अगर आप अपने स्तर से चूनी चोकर लेके सानी करते हैं उसमें, तो उसमें आप नमक की तो ईंट भी आती है, आप चाटने के लिए दे सकते हैं। और मोटा मोटा अगर हम अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर आप बाजार से खरीद लेते हैं, तो अगर 3 क्विंटल का जानवर है तो हम करीब 3 तोला, करीब 30 ग्राम 35 ग्राम के आसपास रोज उसकी सानी में आप करके देते
1: तो
2: रह
1: इसमें
2: सकते
1: अगर
2: हैं।
1: हम ये लगाएं तो क्या थोड़ा सा दो मतलब
2: हाँ,
1: एक
2: मतलब
1: हल्की
2: 30 ग्राम
1: सी
2: है, तो 30 ग्राम मतलब कोई बहुत दवाई नहीं है ये। अगर
1: हाँ
2: 5 ग्राम ज़्यादा
1: हाँ
2: कम भी हो जा रहा है
1: तो कोई
2: तो उसमें
1: नुकसान
2: कोई,
1: नहीं है।
2: क्योंकि उसको जो ये खनिज है वो विटामिन है, केवल हमारा जो मिनरल मिक्सचर ऐड कर रहे हैं उसी से नहीं मिलता। अगर वो हरा चारा भी खा रहा है, भाई हमें ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ये पशु अगर हम पालते नहीं, हिरण को तो हम पालते नहीं हैं, हिरण तो जंगल में रहता है, तो ना वो मिनरल मिक्सचर खाता है, ना वो नमक अलग से खाता है।
1: स्वस्थ
2: वो
1: रहता है
2: ईश्वर ने जो उनकी रचना की है वो केवल घास और पत्ती खाने के लिए की है, और उनकी सारी पूर्ति उसी चीज़ों से
1: हो
2: हो
1: जाती
2: जाती
1: है।
2: है। तो अगर उसका प्राकृतिक आहार आप हरा चारा अच्छे से उसको खिला रहे हैं, तो उन्हीं पत्तियों में सारा मिनरल और सारा विटामिन उसको उपलब्ध हो जाता है।
1: कई बार
2: अगर
1: हरा चारा
2: अगर
1: नहीं है,
2: ये
1: सूखा ही
2: इन
1: खिला रहे
2: इन
1: हैं तो।
2: चीज़ों की आवश्यकता हम इसलिए पड़ती है क्योंकि हम कुछ ऐसी प्रजातियां हमने पैदा कर ली, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन है। होल्स्टीन फ्रीजियन अधिक से अधिक दूध पर देने के लिए बनाई गई, ये सिंथेटिक ब्रीड एक तरह से हम कह सकते हैं कि 40 लीटर, क्योंकि प्रकृति में इतना ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है। दूध तो वो केवल अपने बच्चे के लिए बनाना था उसको, हमने उसको इस तरह से जेनेटिक चेंज करके पैदा कर लिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध
1: चालीस
2: दे।
1: लीटर दूध
2: अब
1: दे
2: वो
1: रहे
2: 40 लीटर दूध दे रही है, तो ये समझने की बात है कि 1 लीटर दूध में करीब 2.3 ग्राम कैल्शियम होता है। अगर 10 लीटर दूध दे रहा है कोई पशु, तो 23 ग्राम कैल्शियम उसके शरीर से निकल गया। 20 लीटर
1: निकले।
2: दूध दे रहा है तो 46 ग्राम कैल्शियम उसके शरीर से निकल गया।
1: अब
2: और
1: उसकी
2: ये तो दूध
1: आपूर्ति
2: में
1: है।
2: गया है, उसके अलावा जो वो नहीं भी दूध देता है पशु, नर पशु भी है, उसको भी कैल्शियम अपने जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। तो ये अगर इतना ज़्यादा शरीर से निकलेगा तो अलग से आपको
1: देना
2: देना पड़ेगा। तो
1: पड़ेगा,
2: ये
1: इसी
2: कई
1: इसीलिए
2: चीज़ें
1: शायद वैज्ञानिकों ने पशु आहार में खनिज लवणों की
2: लवण की बात करी। और
1: बात।
2: दूसरी चीज़ कैल्शियम, हमारे किसान भाई कई बार पूछते हैं, तो कैल्शियम में ज़्यादा आप अगर खड़िया भी दे दे रहे हैं तो भी कैल्शियम की पूर्ति उससे हो जाएगी, आपको बहुत खर्चा करने की
1: मतलब
2: ज़रूरत
1: ठीक
2: नहीं
1: है,
2: है।
1: वो एक मुट्ठी डाल
2: हाँ,
1: दिया तो
2: मिनरल
1: पशु
2: मिक्सचर जो हम
1: उतना।
2: कहते हैं, मिनरल मिक्सचर हम केवल कैल्शियम के लिए नहीं कहते हैं, उसमें आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप दे दीजिए। और अगर दूध उत्पादन ज़्यादा है, आपको कैल्शियम देने की आवश्यकता है, आप सीधे पंसारी के यहाँ से खड़िया लेके भी 50 ग्राम सुबह शाम ब्याने के बाद, क्या
1: हाँ
2: कहते हैं, जब दूध देना शुरू करे आपका पशु, तो आप देते रह सकते
1: जी
2: हैं।
1: जी एक किसान भाई और जुड़े। हेलो
0: हेलो
1: जी,
0: हेलो,
1: राम राम भैया,
0: राम राम जी।
1: बताओ नाम बताओ अपना।
0: मेरा नाम जी अजय है,
1: अजय कहाँ से बोल रहे हो भैया?
0: मैं चौमुहा से बोल रहा हूँ जी।
1: चौमुहा से बोल रहे हो, समस्या बताइए।
0: समस्या ये है, एक हमारी भैंस है, वो 4-5 बार मतलब 5-6 बार ब्याह चुकी है।
1: अच्छा
0: वो 7-8 महीने उससे ब्याह हुए हो गए, लेकिन वो मतलब उठ नहीं रही है
1: गर्मी में नहीं आ रही
0: ये।
1: ना,
0: हाँ, गर्मी में नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है?
1: 8 महीने लगभग।
2: जी,
1: हाँ,
2: इसमें
1: दूध
2: हीट
1: देते
2: के,
0: देते 8 महीने हो गए।
2: ठीक
1: जी
2: है,
1: ठीक कह रहे
2: इसमें तो
1: हैं।
2: काफ़ी समय बीत गया इनका, क्या कहते हैं, और 4-5 बार की हो भी चुकी है। तो ये कभी कोई स्राव वगैरह, कोई हीट के बिल्कुल लक्षण बीच में नहीं दिखाए, कि कुछ दिन दिखाए, एक आध बार बीच में कभी इसने?
0: अब नहीं दिखाए सर जी, अब जो फिलहाल में ब्याह ही है। नहीं, हर बार शायद 1 साल में हो जाती थी।
2: जी, ये जब ब्याई है तो आराम से ब्याई है, कोई खींचातानी तो नहीं हुई थी या जेर वगैरह रुकी
0: नहीं,
2: हो?
0: आराम से ब्याह है, काफी बड़ी भैंस है।
1: समझ
2: जी,
1: गए, वो तो आपने बताया चार
2: देखिए
1: पांच ब्याह
2: ये
1: किए
2: इसको
1: हुए हैं।
2: एनिस्ट्रस की संभावना ज़्यादा लग रही है। हालांकि कई बार संक्रमण भी अगर किसी तरह से गर्भाशय में हो जाता है, तो वो भी ये समस्या पैदा
1: वहां
2: कर
1: गर्मी में
2: सकता
1: नहीं
2: है।
1: आती है।
2: अब बातों से वो बतावाना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, तो आप एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करके देख सकते हैं कि आप इसको पेट के कीड़े की दवाई एक खुराक अभी दे दीजिए, 3 हफ्ते बाद वही पेट के कीड़े की दवाई दोबारा दे दीजिएगा, और एक बढ़िया कंपनी का कोई सा भी मिनरल मिक्सचर जो भी हम चर्चा कर रहे थे जिसकी, वो लेके इसको कम से कम 1.5-2 महीने तक तो लगातार रोज़ 30-40 ग्राम, अगर बड़ी भैंस है तो 4 क्विंटल तक की भी हो सकती है आपकी, तो उसको 30-40 ग्राम

0: दीजिए, अगर एनिस्ट्रस होगा केवल तो ये पशु 70% चांसेस हैं कि ये हीट में आना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी वजह से गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन है या जो उसका अंडाशय जिसको हम ओवरी कहते हैं कई बार उसमें भी कुछ गांठें या रसौली सिस्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर आप ला सकें तो आप वेटनरी कॉलेज जाके वहाँ अल्ट्रासाउंड करके भी वो देख के
1: हाँ
0: अगर कोई गांठ रसौली या गर्भाशय में समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। पर इतना खर्चा करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार जो मैंने समाधान बताया कि
1: जो
0: एक
1: घरेलू
0: हाँ
1: बता
0: घरेलू
1: दिया
0: है
1: कि
0: कि
1: मैं
0: आप
1: घर पे
0: कीड़े
1: आप करके देख
0: की दवाई
1: सकता
0: दे दें और मिनरल मिक्सचर 1.5 महीने तक खिला के देख लें, अगर एनिस्ट्रस जिसको हम कहते हैं वो होगा तो आपका समाधान हो जाएगा।
1: हूँ। ठीक है जय भैया, ठीक है ठीक है। एक और किसान भाई जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो,
2: हेलो
1: राधे राधे भैया, बताओ नाम बताओ।
2: साहब, पप्पू ठाकुर बोल रहा हूँ। इस पार के पास में नगला माना है।
1: अच्छा हाँ है, समस्या बताइए,
2: मेरी
1: समस्या बताइए।
2: बच्चिया है अच्छी किस्म की, और
1: हाँ
2: वो ब्यावन ब्यावन नहीं रुक रही है, और
1: कितनी
2: कल
1: उम्र हो
2: रात
1: गई
2: में खड़ी
1: उसकी?
2: हो गई, 20 महीने की है।
1: 20 महीने की बच्चिया डॉक्टर।
0: बच्चिया ये, इसका मतलब अभी एक बार भी ये ब्याही नहीं है, गर्भित नहीं हुई है।
1: तो गर्मी में आ नहीं रही है या
0: हीट में
1: वो
0: टाइम से आती है ये?
2: 22 दिन बाद आया थी गर्मी का।
0: हाँ मतलब 20-22 दिन बाद सही से हीट में आती है ये।
2: हाँ
0: तो इसमें आपने सांड से करवाया इसको पहले कि ये कृत्रिम गर्भाधान करवाया है?
2: ऐसा
1: जी
2: सीमन रखवाया,
0: सीमेन रखवाया है
1: सीमन
0: आपने?
1: रखवाया है,
0: सीमेन कितनी बार रखा जा चुका है इसके?
2: 2-3 बार रखवा दिए और रुकी नहीं।
0: 2-3 बार एक ही स्थान से करवाया, एक ही व्यक्ति से करवाया है कि अलग-अलग लोगों से करवाया है?
2: तीनों बार 3 डॉक्टरों से करवाया है।
0: देखिए फिर हो सकता है इसमें अभी कोई समस्या हो, ये ही या समस्या नहीं भी हो सकती है क्योंकि 20 महीने की है, अभी उम्र आयु उसकी इतनी अधिक
1: लक्षण
0: नहीं
1: आते
0: है।
1: हैं
0: तो
1: लेकिन
0: कई
1: अभी
0: बार क्या होता
1: एक्चुअली
0: है कि पहली बार जब पशु में हीट में होता है पशु, तो हीट के लक्षण कई बार प्रकट होते हैं परंतु उसका जो है ओव्यूलेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते
1: हाँ
0: हैं
1: अंडा नहीं बन
0: वो
1: रहा है।
0: नहीं भी होता है। तो एक दो हीट हो सकता है आप छोड़ दीजिए और अपने संबंधित डॉक्टर से बात करके इसको, जैसे मैंने पहले बताया, आप भी इसको एक मिनरल मिक्सचर खिला के एक बार
1: देखते
0: देखिए,
1: हैं।
0: एक दो हीट छोड़ दीजिए। और हीट के समय ये ध्यान रखिए कि जो स्राव आ रहा है बिल्कुल पारदर्शी पानी जैसा ही आ रहा है। वैसे तो संक्रमण अभी होना नहीं चाहिए क्योंकि कभी इसको गर्भ रहा नहीं है, परंतु कई बार AI कराने से भी कई इन्फेक्शन अंदर
1: आ
0: चला
1: जाता
0: जाता
1: है,
0: है। तो
1: आ
0: आप देख
1: जाता
0: लें उसमें कोई सफ़ेदी, दूधियापन, हरापन या उस तरह का रंग तो नहीं आ रहा है, तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। नहीं तो एक दो हीट आप रुक के 1.5 महीना 2 महीना बाद जब ठंडक का थोड़ा भी मौसम आएगा नवंबर वंबर में, उस समय आप अच्छी क्वालिटी के सीमेन से एक बार इसको करवा के देखिए। नहीं
1: इनके पास तो डॉक्टर साहब ये माधुरी कुंड फार्म पे ये सुविधा है क्या
0: अगर हम
1: आर्टिफिशियल,
0: माधुरी कुंड
1: क्योंकि
0: पे,
1: उस पार
0: क्योंकि
1: के पास ही माधुरी कुंड भी
0: माधुरी
1: है।
0: कुंड में जो राजकीय पशु चिकित्सालय है सरकारी
1: हाँ
0: उनकी सुविधा होगी, विश्वविद्यालय की वहां पर नहीं है
1: जी
0: इस सुविधा,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: कहते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी जी तो एक बार पप्पू भैया दिखा लो, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि मिनरल मिक्सर दीजिए उसको
0: एक
1: और
0: दो
1: थोड़ा
0: महीना
1: सा।
0: खिलाइए और अगर
1: हाँ
0: उसमें ध्यान रखिए स्राव किस प्रकार का है, अगर गंदगी वगैरह आ रही है तो आप उसको संपर्क
1: तो
0: करें डॉक्टर से।
1: ये इनके लिए राय देंगे कि आप वेटनरी हॉस्पिटल वहाँ
0: क्योंकि
1: आके,
0: कई बार हम ये देखते हैं कि पशु को लाने में ही हमारे किसान भाई का काफी खर्चा हो जाता
1: खर्चा
0: है,
1: हो
0: तो
1: जाता
0: यदि
1: है।
0: कोई समाधान इनके घर पे इनका हो सके तो ज्यादा आसान रहता है, नहीं होगा फिर आखिरी में ला सकते हैं, कोई
1: जी
0: दिक्कत
1: जी
0: नहीं है
1: जी
0: उसमें।
1: जी जी जी
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते भैया,
2: राम राम साहब।
1: राम राम भैया, बताओ समस्या बताओ, नाम बताओ।
2: नाम बाबूलाल बोले साहब, पीरखू थे। समस्या
1: पीर खुशी बाबूलाल जी, समस्या बता दीजिए। हाँ
2: सर ये एक हमारी गाय है साहब, गाय तो साहब अपने पेशाब खुद पीते साहब,
1: पैसा
2: और
1: खुद,
2: एक साहब, हाँ एक साहब झोटी है वो बालन खाता है, मतलब गाँव को मिल जाए अपने मिल जाए, भैया का ये भैया के खावे लग पड़े, ये
1: अच्छा बाल
2: बहुत बड़ी
1: खाती है,
2: समस्या है साहब हमारी।
1: पेशाब भी पीती है ना?
2: पेशाब
1: देखिए
2: तो गाय पी रही है साहब, गाय झोटी है पड़िया,
1: अच्छा वो अलग से वो है, बाल खाती है वो,
2: हाँ वो बाल खाती है साहब, ये पेशाब पीती है साहब,
0: अच्छा। देखिए
2: तो
0: वैसे तो
2: समस्या
0: ये
2: बताओ साहब,
0: क्या
2: बहुत दिन
0: कहते
2: से
0: हैं,
2: मेरी
1: हाँ
2: कंप्लेन
1: कोई
2: चल
1: बात
2: रही
1: नहीं,
2: है।
1: डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
0: देखिए ये कई बार शुरुआत जो है कैल्शियम फास्फोरस की कमी से भी होती है, पाइका हम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, खासतौर से फास्फोरस की कमी से ज़्यादा होता है। लेकिन कई बार ऐसा जैसे बच्चों में भी हम देखते हैं मिट्टी खाने की आदत होती है तो उसमें लोगों ने कहा कि पाइका उनमें है, पर कई बार जब वो कमी की पूर्ति कर भी देते हैं तो वो आदत में एक बार शुमार हो जाती हैं चीज़ें, तो ऐसे पशुओं की भी आदत खराब हो
1: बन
0: जाती है
1: जाती
0: कई
1: है
0: बार। लेकिन
1: उसमें।
0: फिलहाल अभी शुरुआत में इनको, बहुत पहले हड्डी का चूड़ा आया करता था बोन मील करके, अब बाजार में नहीं मिलता है। तो आप भी जो आप नॉर्म सामान्य मिनरल मिक्सचर बाजार में मिल रहा होगा
1: उसको
0: आप उसी
1: खिलाएं।
0: को ले लीजिए और दोनों को थोड़ा अलग अलग बांधिए कि दूसरे का बाल ना खाएं, और कोई जो व्यवस्था आप उसी का वगैरह लगा के, क्योंकि आदत भी आपको इनकी बदलनी पड़ेगी, तो आप ये मिनरल मिक्सचर अच्छी कंपनी का इनको दोनों को देना शुरू करें।
1: और
0: और
1: जैसा
0: समस्या
1: बता रहे हैं दोनों की उम्र भी कम है,
0: उम्र भी
1: बच्चिया
0: कम है,
1: है और
0: और
1: वो।
0: देखिए इसका समाधान, इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं होता बुखार की तरह कि आज दवाई दी कल ठीक हो जाएगा, हो सकता है इसको समाधान होने में 2 महीने

0: चार महीने का समय लगे, तो उस पर आप एक बार करके देखिए, दो तीन महीने बाद नहीं समाधान होता तो आप एक बार आ जाइए।
1: तो किसान भाइयों, समय थोड़ा समय समाप्त हो रहा है, कम है, तो हम यही कहेंगे कि जो भी आपके पास हॉस्पिटल है, जो भी डॉक्टर हैं, उनसे आप संपर्क में रहिए, क्योंकि पशु की कीमत आजकल बहुत है, उसकी देखभाल करना भी जो है इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको जैसे बच्चे पालते हैं ऐसे ही पशुओं को भी पालना पड़ेगा, और जो मौसम और जो सुविधाएँ हमें चाहिए वो ही पशुओं को भी चाहिए। और डॉक्टर साहब की जो बात सुनी मैंने कि पशु भी तनाव में आ सकते हैं, तो ये शायद आप देखेंगे पहले जो व्यक्ति पशुपालन करते थे, जो अपने पशुओं को पालते थे, वो बड़े प्यार से रखते थे, दिन में दो बार उन पर थपकी मारना, पास जाना, नहलाना उनको, तो प्यार अगर आप देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी जुड़े, डॉक्टर साहब आए, जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर किया 25,000 रुपए प्रतिमाह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
2: 25,000 रुपीस पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शंस। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15-25 वाले बैंड में थे। दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स। भारत सरकार का

0: पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीज एवरी ईयर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 7 अक्टूबर को शासन प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष के सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर कल से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कल श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
2: एक सेवा यात्रियों के रूप में फ्लैग ऑफ करके झंडी दिखाकर हमारे सभी अतिथिगण उनको विदा करेंगे और उसके बाद इस यात्रा पर जगह जगह पड़ाव रहेंगे और इस प्रकार से आगे यात्रा बढ़ेगी और दूसरे प्रदेशों से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरात पहुंचेगी। इसमें 20 दिन का समय लगेगा, 7 अक्टूबर तक के वडनगर पहुंचेगी यात्रा।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य में 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा, नमो सेवा अनकही कहानियां, सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा और सुशासन सेवा संवाद प्रमुख है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत कल सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया से होगी। शाम 7 बजे नागरिक अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलित कर सेवा और विकसित भारत 2047 के सामूहिक संकल्प से जुड़ेंगे। प्रदेश में प्रमुख विकास कार्यों और अवस्थापना परियोजनाओं से जुड़े चयनित स्थलों पर भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर टूल किट वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और अभियान के प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय के मार्गदर्शन में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन से लेकर जनपद स्तर तक त्रिस्तरीय समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों से जनजीवन में आए सकारात्मक बदलावों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान देश भर में कल से शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कल्याण मंडपम का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की पहचान पूरे देश में बदली है।
5: आज बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ, गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन का लाभ और युवा को नौकरी की गारंटी, लगातार ये सुविधाएं आज प्राप्त हो रही हैं।
1: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से संचालित चैरिटेबल ब्लड बैंक सेंटर का उद्घाटन

0: उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से बन रही है। श्री योगी ने कहा कि आज हम नए गोरखपुर, नए उत्तर प्रदेश और नए भारत का दर्शन कर रहे हैं।
1: एक नए गोरखपुर का, एक नए यूपी का, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, गोरखपुर में ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी के साथ इंसेफ्लाइटिस के उपचार के साथ साथ हर प्रकार की बीमारियों के उपचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। एम्स गोरखपुर में आ गया, गोरखपुर में आज दो मेडिकल कॉलेज, चार विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर संचालित हैं।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के कुल 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक शहरी के 11,508 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी एवं सहायक अध्यापक शहरी के पदों के लिए विज्ञापन के तहत 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 2,607 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगी। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत लखनऊ के चारबाग स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण आज से 12 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म 1 से 3 तक ब्लॉक लेगा। इस दौरान एयर कॉन्कोर्स का काम पूरा किया जाएगा। इस कारण 85 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर किया 25,000 रुपए प्रति माह। 51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से वडनगर तक की 500 युवा बाइकर्स की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार के विकास कार्यों से पूरे देश में बदली प्रदेश की पहचान। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों के लिए मांगे आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवानकर, निर्मला नवानकर और विशाल, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, सेक्टर 67 मोहली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। ये संदेश हमें भेजा है महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागनी रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका यादव ने।

कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर ये मेकर, प्रमोद ये मेकर और प्रदीप ये मेकर। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकर्ण वर्मा, अंजनी रजमत वर्मा, मुरली नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा और विशाल वानखेड़े। मोताला महाराष्ट्र से राज गवई और राजबीर गवई। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। डेरपाटन गुजरात से धीरज बी रबारी। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये। पालसी महाराष्ट्र से विजय शेगोकार और ऋषिकेश शेगोकार। उमाली से उद्धव धोरण और अनूप। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य। रंगोली राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, क्रांति भगत, कामेश्वर प्रसाद भगत और उनके मित्रगण। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। आप हैं पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। ये संदेश हमें भेजा है। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश और उनके परिवारीजनों ने। आइए सुनते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को फिल्म है दोस्ताना। गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये थे किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी, फिल्म थी दोस्ताना। अब जो संदेश हमें मिले उनके नाम हैं गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठल लाल सारस्वत, नेहा नीरज निकेता और इनके माता पिता। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर प्रेमेश्वर मीनाक्षी काना मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और पुनिधि भाई बागरी। गांव नगलापोला से विजय सिंह पवन भानु प्रताप सिंह रामानुज राधिका भोला करण नमन अनुराधा और इनके माता पिता। गांव नौघरा से कोमल मास्टर शिवानी संजना यशोदा सूरज और इनके परिवारीजन। गांव कुमोदवन से सुनील गब्बर रचना और इनके माता पिता। ये संदेश भेजने वाले श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसुतासु अर्णवानंद और सत्यमानंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। तालुका निवासा ग्राम खुपटी से बंडू लोहार चंद्रकला पोपलघट देवीदास और हरिभाऊ बिडबे। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया अजय देव तामोरिया तुषार देव डॉली बेबी पूजा तामोरिया राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। आप हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्रविया रामटेके। कुमार गली श्रीरामपुर से रोहिणी दले अशोक दले सविता निकेत ऋषिकेश और जीविका दले। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल और ऊषा पाटिल। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रूबीना वसीम आरिज वसीम नदीम अकरम शमीम अकरम ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा और करीमा शर्मा। ये संदेश हमें भेजा है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक और स्वाति ने। गमरिया जमशेदपुर से विपिन स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल ने। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आइए सुनते हैं आप सबके लिए लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। शब्दकार आनंद बख्शी संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत परेलाल।

ये थी लता मंगेशकर, फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। और अब आप सुनेंगे किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। गीत अनजान का संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी। हमें जो पसंद मिली उनके नाम हैं ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबती, काजल पूर्वी, हेजल, रेशमा साहू और राजेश साहू। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीत अकबर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू और निशांत साहू।

जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा। नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। नई दिल्ली से स्वीटी, इंदर, रोशनी, रेहान शर्मा, ध्वनि और सानवी। बठिंडा रोड मंडी डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया और उनके परिवार के सभी सदस्य। मजनू कटल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रम्हाड़े, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल रम्हाड़े। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, डब्बू सम्राट। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना।

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को भी आप सुन रहे थे फिल्म थी धर्मात्मा। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं प्रकाश नगर मथुरा से खड़क सिंह चौकर एडवोकेट, आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित राय और पीयूष कुमार, बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर शुभताई मानकर दीपाली और श्लोक कुमार, छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगली से मोहम्मद इसाक हतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ और नीलूफर फातिमा, वड़ेखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार अभिका जीविका सानू कुंभार और अर्चना कुंभार, राजनगर से द्वारका राय भाई जगदीश ज्योति फूलो विजय राधा नवीन और उनके मित्रगण परवारी जन। इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: पर आधारित विशेष कार्यक्रम चेयर फॉर भारत।

0: कहते हैं कि जब हौसलों में फौलाद और रगों में जीतने का जुनून हो तो कठिन से कठिन चुनौती घुटने टेक देती है। जापान के आइची नागोया की धरती पर आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में इसी की वानगी पेश करने के लिए भारतीय दल तैयार है। इस बार उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पिछली बार की तरह न सिर्फ पदकों का शतक पार करेंगे बल्कि मेडल्स के नंबर्स को उससे भी आगे ले जाएंगे। हमें इस बार सभी खेलों में न सिर्फ पदक बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग कुश्ती बॉक्सिंग तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास एक सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम के सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
1: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं, वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे। आप देख सकते हैं दीपक पूनिया, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी हलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं जो कि 2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।
0: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं। आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल का बैरियर टूटेगा और हमारे खाते में स्वर्णिम सफलता भी आएगी?
2: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंगल का बात करें तो वो 2-टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पूनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
0: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
1: बिल्कुल, इसका काफी फायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापानीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापानीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
3: अच्छा।
1: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे। साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे रही। सुजीत कलकल ने वहां पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता, और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहां पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
3: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्रीस्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने

0: पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 kg में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपने

0: प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपने दावेदारी पेश की है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी, पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए, और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 kg लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 kg एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 kg में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन काफी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा, और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है।
1: जी, और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारिवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश बानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेन्स ट्रैप में नीरू मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेन्स स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेन्स स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
0: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज़्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल थ्री में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर, उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते। ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा एला

0: विनील, तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगझो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे, अभिषेक इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
0: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है। हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज्यादा मेडल लाए ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहां से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ है, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
0: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहां से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुंच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफी है, पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एलए क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने का पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था और साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है, लेकिन वो

0: टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है, और यही वो फॉर्मेट है जहां पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है। तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आर्चरी के, क्योंकि दो तीन है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारी क्या खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं, उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है। ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे, तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगास 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। अब पर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, जैसे लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 kg में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही प्रिया घनघास है, ये नए टैलेंट है, लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का, उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे। इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के एक से एक उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज़बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का, जब गोल्ड मेडल जीता हो, जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूं, तो यहां पे भी वही कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफी अच्छा किया है, और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा। 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए। इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 kg में। पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है। और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है। तो एक बहुत बड़ा झटका

0: भारतीय कुश्ती के लिए ये है, तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है. लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है, हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें.
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेंस सिंगल्स और मेंस टीम, वेलवन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेंस टीम, अभय सिंह मेंस सिंगल्स और मेंस टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
2: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल। वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
2: कंपटीशन काफ़ी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
0: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है. काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ. लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है. और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो. हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है. उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है.
1: बिल्कुल,
0: तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है. और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो. आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो. और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ.
1: जी। और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
0: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है. तो मेन फोकस तो एले ओलंपिक्स का ही रहेगा. मैं भी यही चाहूँगी कि मैं एले ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ.
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
2: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर

0: में एथलीट्स को उसी तरह का अकोमोडेशन दिया ताकि वो एक्रोमेटाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं, तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में हैं। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म है कुली। पहले सुनिए इस फिल्म में शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल को।

0: ये थे आशा भोसले, शब्बीर कुमार और प्रयागराज। इसी के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी कुली। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश

0: आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के

0: 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से

0: कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district. And veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. The Prime Minister called for greater industry participation in skilling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence and quantum computing. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi said India should aspire to be among the early leaders in emerging technologies. He noted the significant progress made in the semiconductor sector and said the ecosystem is now moving from foundational efforts to a phase of greater scale and opportunity. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. He invited industry leaders to share suggestions on policy and administrative measures and assure them that their inputs would be given due consideration in further

जावेद अली की आवाज़ में नकाब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। संगीत निर्देशक थे प्रीतम। और आइए सुनते हैं अभिषेक बच्चन और सुनिधि चौहान को। फिल्म है ब्लफ मास्टर, गीत और संगीत विशाल और शेखर का है।

ये थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार, फिल्म थी चरस। गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी दुकान, एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ सेकंड में भुगतान पूरा। न कैश गिनने की जरूरत, न छुट्टे पैसे की तलाश, न बटुए में नोट रखने की चिंता। एक क्यूआर कोड, एक मोबाइल और पैसा पहुंच जाता है पलक झपकते ही। यही है आज का भारत, जहां यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है यूपीआई। लेकिन जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो एक सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे चलाने की कीमत कौन चुका रहा है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी चर्चा। पिछले दिनों यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और सीनियर बैंकर के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इससे पहले कि अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें कि जो नया एमडीआर फ्रेमवर्क आया है उसके 5 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया यूपीआई भुगतान पूरी तरह से एमडीआर फ्री रहेगा। छोटे मूल्य के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी 2,000 रुपए तक के भुगतान पर एमडीआर नहीं लगेगा। 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट 1,00,000 रुपए हर महीने है उनके लिए 0 एमडीआर व्यवस्था जारी रहेगी। 75,000 से अधिक के एलिजिबल ट्रांजेक्शन्स पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा, यानी ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ एमडीआर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ये हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पहलू जो एमडीआर के नए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। विकास जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एमडीआर, जिसकी बहुत चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों में है, ये है क्या और यूपीआई की इस पूरी कहानी में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
2: देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि यूपीआई आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इसे चलाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है ना केवल वो स्पीड के साथ हो, एक्यूरेट हो, लेकिन वो सुरक्षित भी हो। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है।

0: और हमें उसमें काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ताकि साइबर सिक्योरिटी ना हो, संबंधित कोई समस्याएं ना हो, फ्रॉड ना हो। तो ये कस्टमर्स प्रोटेक्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कस्टमर्स प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मार्चेंट इसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक, तो कितना बड़ा विश्व में मैं समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा जहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मार्चेंट्स जुड़े होंगे। और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा, उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार हैं, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इसका कोई उनके ऊपर कोई इसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, विशेष रूप से छोटे काश्तकार हैं। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट से करने से हम बच नहीं पाएंगे, ताकि क्योंकि सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यकता है जितना कि गति है और पारदर्शिता है। तो मैं समझता हूँ मैं जो आपकी जो प्लेयर्स इसमें हैं उसमें आपका टीपीएपी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है। फिर उसमें एक पीएसपी बैंक है जो कि वो दरवाजा खोलता है और बैंकों के साथ जोड़ता है, मतलब बैंकों के साथ या आपकी एनपीसीआई के साथ जोड़ता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे बात दोनों बैंक है, एक बैंक जो जिसमें डेबिट होता है पैसा कस्टमर का और मर्चेंट का बैंक है जहाँ पैसा क्रेडिट होता है। तो ये सारे एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो अब सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं लेगा,
1: जी
0: मार्केट डिस्काउंट रेट 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें एमडीआर लगेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट। ये
1: जी
0: पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक्स, पीएसपी बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आज कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, इस सब में ये पैसे बटेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए, मशीनरी में, आईटी में और पैसे लगाए।
1: जी विकास जी, जब हम एमडीआर की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि एमडीआर का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, क्योंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम इस एमडीआर फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि एमडीआर और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
0: कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम आईटी में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो, जो एनाबलिंग सिस्टम है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा, तो एमडीआर से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे। ये एमडीआर के जो भी पैसे इसमें मार्चेंट से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास, जो लोग यूपीआई प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना, देयर आर 3-4 प्लेयर्स जो उसमें है। तो अब देखिए, जनधन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है, 56 करोड़ लोग आ गए हैं। दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए। गांव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी ऑनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें यूपीआई को अपनाएं।
1: जी
0: तो इसमें अभी और भी स्कोप है। तो ये कहा जाता है कि इसको जीरो जो एमडीआर रेट है वो और कुछ दिन चलता है, और उसके बाद में जब और लोग अनबोर्ड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ रेट शुल्क लगता है। उसमें शुल्क लग रहा है मार्चेंट की जो ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये यूपीआई के ऊपर नहीं लग रहा है कुछ
1: जी
0: कोई शुल्क। ये ट्रांजेक्शन जो होगा मार्चेंट, उसमें भी 1 लाख तक, ये छोटे काश्तकार, छोटे एमडीआर वाले हैं, उनको सब्जी वाला है, चाय
1: जी
0: वाला है, 1 लाख तक वो पर मंथ जब उनके पास एक ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसके ऊपर उनको कुछ P2, वो आते हैं उस कैटेगरी में P2PM, तो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, उसमें कोई उनको शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से इसी महीने में ज्यादा हो गया,

0: अगले महीने कम हो गया, पिछले 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, वो एवरेज में अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको उस हिसाब से शुल्क लगेगा, जैसे ही बना गया है 0.04% और वो 300 रुपये की सीमा है। तो ये छोटा सा रकम है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा इसमें समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, पर मैं समझता हूँ कि इसको लोग अपनाएंगे और मार्चेंट्स भी अपनाएंगे, क्योंकि इतने बड़ी सुविधा है। अब मैं समझता हूँ छुट्टे की प्रॉब्लम है, कैश के गंदे नोट का प्रॉब्लम है, और फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे लोग।
1: शरद जी, कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि MDR क्या है और नए MDR फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण बातें भी हमने श्रोताओं के साथ साझा की। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब UPI लॉन्च हुआ तब इसे फ्री रखा गया, अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में MDR की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
2: नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं। तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेटली, किसी साल 2100, किसी तो 2200, किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदी हो गए, और जो इसकी सुविधा थी आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा, इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इशू है। कल को आपके सारे बैंक अकाउंट्स UPI के जरिए जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं, जो आप बैंक अकाउंट OTP के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है, लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक QR कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने QR कोड डाला और पेमेंट हो गया ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे खर्च आता है, उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे, और P2P पर्सन टू पर्सन आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो। सिर्फ वहां लगाया गया है जहां MDR को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहां सालों से दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1% कहीं 1.5%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है, हम उनको मना कर देंगे हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पीओ ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे पर हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही है क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है, जेंजी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास UPI है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहां नहीं चलता है ये। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजेक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजेक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है, अभी जिस लेवल पर है तो उसमें पर ट्रांजेक्शन हमारी 86 पैसे मैंने देखा कॉस्ट आ रही है, अगर 24,000 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन हो 86 पैसे उसकी कॉस्ट आती है। तो इससे ये जो 0.4% अभी लगा है, पहली बात तो इसमें 300 रुपए पे कैप लगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 75,000 रुपए से ऊपर का आप कितने का भी ट्रांजेक्शन करें वो 300 ही रहेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसको रीलुक किया जाएगा। और अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार के पास सुझाव आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया अभी 15 अक्टूबर से लगना है, हो सकता है कि इतने सारे सुझाव आ रहे हैं, मर्चेंट से छोटे छोटे बात हो रही है, हो सकता है इस पे पुनर्विचार किया जाए, आगे जाके 0.4% को कम किया जाए। मैंने एक अपनी तरफ से निजी सुझाव दिया था कि जो बिजनेसेस जिनका मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो वॉल्यूम पे काम करते हैं, 1-2%, 3% उनका मार्जिन होता है, उनको लग रहा था कि भाई 0.4% तो हमें बहुत चुभेगा, तो मैंने सुझाव दिया था कि उन व्यापारियों के लिए जहां पर प्योर ट्रेडिंग है और मार्जिन कम है वहां पर इसको 0.1% या 0.2% आगे कभी हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। तो मुझे लगता है इसको एंड ऑफ द रोड नहीं देखना चाहिए और इसको खाली एक नेगेटिव

0: दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
1: जी विकास जी, अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि MDR का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक ही पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि ग्राहक से MDR नहीं लिया जाएगा, जो दुकानदार है वो MDR का भुगतान करेगा। इस अंतर को हम कैसे समझें?
2: कोहली साहब से मैं सहमत हूँ, यानी एक ही बात है कि इसमें जो हाईवेज की आपने एग्जांपल दिया, वो पैसे सरकार को जाती है, वो कंपनी को जाती है, तो यहाँ पैसे जो है ये स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा, PSP बैंक, PPAP और जो कंसर्न बैंक है। और रहा जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात, तो कहा उन्होंने भाई साहब बहुत सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कोई भी प्रोसेस हम करें, और इतने बड़े स्केल पर ये काम आ गया है जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है व्यवस्था में, MDR मर्चेंट साइड चार्ज है, तो कंज्यूमर में जो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगना चाहिए, और ऐसे जो प्रावधान ऐसा ही है कि इसमें जो मर्चेंट्स हैं ये इसको पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, उसमें करने से उनके दो नुकसान हो सकता है। अगर पास ऑन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू, नेहरू प्लेस का किसी ने कोई सर्वे किया है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा, जो अनबोर्डिंग कराते हैं अपने एप्स, जैसे गूगल है, UPI है, पेफोन है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको सम बेनिफिट्स देंगी जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहां केवल ₹5 में आपके रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें केवल ₹5 चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नील हो जाए। दूसरा, जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे MDR के लिए, हो सकता है इसको और बढ़ा भी दिया जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये देखा जाएगा प्रणाली कैसे चल रहा है, ऐसा तो नहीं है फिर लोग फिर ATM में जा रहे हैं, रुपए कार्ड में जा रहे हैं या कैश से भी ट्रांजेक्शन किया है, ये कतई मैं समझता हूँ सरकार इसको कभी एनकरेज नहीं करेगी इस बात को। और इसके हो सकता है उसके कोई हल निकालेंगे, वो सबका थोड़ा और रेशनलाइज हो जाएगा, जैसे उन्होंने कहा ना इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, इट इज नॉट एंड ऑफ द डे, तो मैं समझता हूँ इट इज डायनेमिक सिचुएशन, ये एक ऐसा ना इसे फ्लेक्सिबल सरकार का रुख रहेगा, मुझे ये मानना।
1: शरद जी, अगर इसी पहलू को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, जो सरकार कह रही है कि दुकानदार या जो भी व्यापारी हैं वो 0.4% MDR वहन करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब दुकानदार पर 0.4% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने उत्पाद का जो मूल्य है वो बढ़ा देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है वो कैश पेमेंट एक बार फिर प्रचलन में आएगा और दुकानदार कह सकता है कि जी आप हमें कैश पेमेंट करिए क्योंकि मुझे तो 0.4% वहन करना पड़ेगा। क्या इसको लेकर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी है कि दुकानदार ऐसा नहीं कह सकते हैं और वो अपने उत्पाद का मूल्य इस अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं?
3: देखिए, इस बारे में भी मैंने सुझाव के रूप में, मैं बहुत सारे इंटरैक्शंस कल जब से आया है ये कर रहा हूँ, मैंने सुझाव के रूप में इसमें भी एक बात रखी। आपने बात ठीक कही क्योंकि जब छोटे व्यापारी जो हैं जिनसे बात की गई उनका ये कहना था कि भाई, एक व्यापारी ने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया जी तेल तो तिलों में से निकलता है, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई हम इसको क्यों बेयर करेंगे, हमारा तो मार्जिन कम है, ये ग्राहक को बेयर करना चाहिए, हम नहीं बेयर करेंगे। तो अभी जब क्रेडिट कार्ड यूज होता था MDR के मामले में तो उसमें दो तरीके से चार्जेस रिकवर कर रहे थे कुछ एक व्यापारी, कुछ तो सीधा कह देते थे कि जी हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपसे पर आपको जो हमसे बैंक चार्ज लेता है 2%, 1% वो आपको एडिशनल हमको देना पड़ेगा, तो वो मान लीजिए ₹10,000 की चीज है तो आपसे वो 200-300 फालतू ले लिए जाते थे कि भाई ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करने की, आप हमें फालतू दे जाए, कुछ लोग इसको मान भी जाते थे और दे देते थे। दूसरा तरीका जो व्यापारी अपनाते थे वो ये थे कि वो कीमत बढ़ा देते थे, यानी कि आपसे वो अलग से कोई चार्ज कह के नहीं लेते थे, पर मान लीजिए कोई चीज ₹10,000 की है तो पहले से ही उसको ₹10,200 उसकी कीमत रख दी जिससे वो एडिशनल ₹200 में जो उनको MDR भुगतान करना पड़ता है वो करे। तो मैंने सुझाव रूप में इसमें रखा क्योंकि मंशा MPCI की सरकार की ये नहीं है कि ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाए, पर क्योंकि व्यापारीगण जो है वो इस प्रकार की सोच रहा है कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि एक कंज्यूमर हेल्पलाइन साथ में निकाली जानी चाहिए जिसमें कि जो भी ग्राहक हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो तुरंत वहां फोन करके पिक्चर खींच के अपलोड करके डाल सके कि मैंने इस दुकान से इस समय सामान खरीदा और मुझसे MDR के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका, आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के।

0: अगर मैं महीने के 2,000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। अब 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या MDR का जिक्र कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस रखी जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे चलेगा और अगर ऐसा लगा कि कैश टू GDP रेशियो जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में वो बढ़ रही है, कैश की डिमांड सडनली एकदम से बढ़ गई है जब से ये आया है, इसका अर्थ ये होगा कि भाई जो जरूरत है कैश की वो ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब लोग जो है या UPI के आपको नंबर्स कम होते दिखाई दिए, जिस रफ्तार से UPI पिछले 10 साल में बढ़ा है आपको वो सडनली ग्रोथ कम होती दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है जैसा मैंने पहले कहा कि इस पे देन देल बी अ रीथॉट
1: जी
0: एंड देल बी अ रीविजिट कि हम इसको फिर से सोचें कि अगर लोगों को इस प्रकार से परेशानी हो रही है और जो मर्चेंट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, और इस समय दिक्कत क्या है कि इस समय महंगाई की जो दर है CPI वो 4.82 आई है,
1: जी
0: तो लोगों को थोड़ा सा महंगाई का जो पेन है वो फील हो रहा है। इसमें तो कोई हम इनसे इनकार नहीं सकते, तो ऑथराइज जो आधिकारिक आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे सामने ही है, उसमें अगर ये और जुड़ जाता है, ये अगर दुकानदार इस प्रकार करने लगते हैं या वेंडर्स इस प्रकार करने लगते हैं लोगों के ऊपर पास ऑन। अब मुझे ऐसा एक और मेरा सुझाव था कि दो हिस्सों में वेंडर्स को बांटे जाना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा जो बड़े वेंडर्स हैं जो बड़ा काम करते हैं वो तो MDR को पास ऑन नहीं करते हैं, बड़े होटल्स हैं, आप कोई लग्जरी का सामान खरीद रहे हैं, महंगा सामान खरीद रहे हैं, वो लोग उन लोगों के लिए 0.4% मायने नहीं रखता क्योंकि उनका मार्जिन जाता है।
1: जी
0: पर जहां पर मार्जिन कम है वहां पर मुझे लगता है कि एक रिविजिट किया जा सकता है आने वाले समय पर ये सब कुछ निर्भर करेगा कोलेटेड डेटा पे कि क्या डेटा निकल के आता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के 1-2 महीने 3 महीने के अंदर UPI का ओवरऑल डेटा क्या आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। पर सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के ऊपर भार डाला जाए, लोगों से वसूली की जाए, ये कतई ये मंशा नहीं है। जहां तक व्यापारियों की शिकायत है मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा व्यापारियों की भी जो इश्यूज होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा।
1: विकास जी, थोड़ी चर्चा छोटे व्यापारियों की भी कर लेते हैं। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, किराना दुकानदार और छोटे कारोबारियों के लिए जो नया फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 1 लाख रुपए तक प्रति महीने UPI QR रिसिप्ट्स छोटे मर्चेंट्स के लिए 0 MDR फ्रेमवर्क है। आपसे समझना चाहेंगे कि 1 लाख की ही सीमा क्यों रखी गई? क्या इससे छोटे और बड़े मर्चेंट के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो बेहतर तरीके से होगा? और क्या छोटे मर्चेंट्स के लिए UPI की उपयोगिता अब भी आप समझते हैं बने रहेगी?
2: मैं समझता हूँ इसमें दो बातें हमें देखना चाहिए। एक कि 96% रोज जो एक लगभग आपकी 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें से 96% से ज्यादा भी है आपके 2000 वाले, तो बाकी बचा 4% का सब हम जो जितने भी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिमेनिंग 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन इसकी बात हम कर रहे हैं। छोटे मर्चेंट्स के लिए ये जो 1 लाख का उन्होंने सीमा लगाया है मैं समझता हूँ इसको सरकार को हो सकता है इसको रिव्यू करेंगे और कोई 3-4 लाख का, क्योंकि आजकल 1 लाख रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है और रोज उसकी जो है कोई भी सब्जी वाला भी आजकल 500 रुपये में कोई सब्जी खरीद के ले जाता है, तो मैं समझता हूँ अगर उसके पास 20 लोग आ गए तो मैं समझता हूँ 10,000 रुपया दिन में हो गया, तो इस हिसाब से उसका 1 लाख रुपया थोड़ा सा कम लग रहा है। हो सकता है इसको सरकार रिव्यू करेंगे और इसको थोड़ा हम उसकी बढ़ाएंगे सीमा, पर असली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनका लगभग उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आप रेलवे टिकट है और इंश्योरेंस पेमेंट है, इस तरफ से जो भी एसेंशियल सर्विसेज है 5 रुपए रखा गया है वो भी ऐप वाला से लिया जाएगा। तो मेरे विचार से तो UPI पर MDR की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज जरूर है, पर UPI को फ्री रखना बहुत अच्छा था लेकिन वो एडॉप्शन अभी 56 करोड़ हो गए, आगे चल के और बढ़ेंगे, तो दिस हैज बिकम क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है,
1: जी
2: साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ रहा है तो इनोवेशन की आवश्यकता है, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इन 4% जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें से कुछ रकम आ जाएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स में तो सहूलियत रहेगी।
1: जी
2: बाकी UPI का कोई विकल्प नहीं है जहां हम खड़े हैं इस समय, और ये कोई भी आदमी पूरी कैश इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, शुरुआती तौर पर थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ेगा कि 2-4 महीने में क्या उसका असर पड़ रहा है, कुछ भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ मर्चेंट्स, बट आई थिंक विद इन पीरियड ऑफ 6 months और सो थिंग्स विल स्टेबलाइज और फिर लोग इसको यूज टू हो जाएंगे।
1: जी, शरद जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे राय जानना चाहेंगे कि यूपीआई अब सिर्फ भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है। हम जानते हैं कि तकरीबन 10 या इससे ज्यादा देशों में यूपीआई चल रहा है।

0: ऐसे में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स और एनआरआईज के लिए जो सुविधाएं हैं, क्या उसमें डोमेस्टिक एमडीआर फ्रेमवर्क का यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी असर पड़ेगा और वो किस तरीके का होगा?
1: नहीं, मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है जो लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उनको पहले से आदत है, आपको जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, करेंसी कन्वर्जन के अलावा आपको जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, और इसमें अगर आपको ये इस प्रकार से ये देना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी आने वाली है। बल्कि इंटरनेशनली जहां ये यूज हो रहा है वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां की जो सरकार है, जो बैंकिंग प्रणाली है, उन सबको वो करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और मान लीजिए आप किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया और डेटा सिक्योरिटी पूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी पूरी नहीं है, फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में पूरी नहीं है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 रुपए ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका 10,000 रुपए उसके बैंक से निकल गए, कहीं कोई लीकेज हो गई, आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो गया क्योंकि पूरे फायरवॉल्स नहीं थे वहां पर, तो मैं समझता हूँ वो नुकसान बहुत बड़ा है। लोग इसको इस प्रकार से देखें कि अगर थोड़े से पैसे दे के आपको एक सिक्योर्ड, कन्वीनियंट, फास्ट और बहुत ही इजी आपको एक सिस्टम मिल रहा है थोड़ी सी फी पे करके। मुझे लगता है जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड था। 2016 अगस्त में मुझे याद है लाया गया था, पहले आदी हो गए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें आदत डाल दी, तो आदत जब पड़ जाती है तो आदत को छुड़ाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, और 10 साल पुरानी आदत हो तो और कठिन होता है। तो आई थिंक इसीलिए इस पे इतना कंफ्यूजन और इस पे इतना भ्रम वगैरह जो लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है या कुछ लोग परेशान है इसको लेके। बट आप इसको अगर ब्रॉड माइंडेडली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया जो दुनिया में अपने किस्म का यूनिक प्लेटफॉर्म था, जिसको बाकी देशों ने भी कॉपी कर रहे हैं, आज देख रहे हैं। तो ये सदा के लिए कैसे ये निःशुल्क रह सकता है, क्योंकि इसमें सारी जो प्रणाली पीछे काम कर रही है एनपीसीआई, हालांकि मैं एनपीसीआई का एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं तो पीछे 32% प्रॉफिट घटा भी था, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं, ओवरऑल ना देखूं, और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीसीआई को मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, तो एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है जो लोग वहां काम करते हैं, और लगातार इसमें आईटी का इसमें रोल है। अच्छा, बीच में जो एप्स काम कर रहे हैं, आप देखिए ये भी एक बात आ रही थी कि क्या ये इसमें अमेरिकन एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ज्यादातर उनके पास करीब 45% के आसपास शेयर है पूरे यूपीआई का, तो ये देखते हुए कि उनके पास शेयर है तो भारतीय कंपनी अब इसमें आना चाहती है, तो अगर उनको कुछ इसमें मुनाफा ही नहीं दिखेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स फिनटेक के इसके अंदर आए, तो वो लोग क्यों आना चाहेंगे? वो तो नहीं आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ तो वो कहते हैं जी यहाँ तो सब निशुल्क है, तो हमारा हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है, और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूं यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है उसका 2025 का सर्वे आया
0: जी,
1: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है, और वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है? वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ में थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही
2: जी। ना केवल बिजनेस बढ़ा है उसमें, देखिए एज ए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जो कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
0: जी,
2: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे, लेकिन ये जो आपकी वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वेंडर्स के लिए ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकता तमाम पूरा करना पड़ता था पहले, ये केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, विच इज फुल प्रूफ
0: जी,
2: तो ये भी है। 6.5 करोड़ मर्चेंट्स आपके जुड़ गए हैं इसमें, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का अपार उनको स्कोप मिल रहा है
0: जी। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि एमडीआर कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। यूपीआई का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, ये भारत के एक आम नागरिक को देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी, और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी और ये आगे भी जारी रहेगी। शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे।

0: यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 17 सितंबर यानी कल 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है वायरल बुखार फ्लू कारण लक्षण और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा टीवी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में वायरल बुखार कारण लक्षण और समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है वायरल बुखार फ्लू कारण लक्षण और समाधान। श्रोता, यदि आप टीबी अस्थमा एवं श्वास से संबंधित समस्या जैसे वायरल संक्रमण या वायरल बुखार फ्लू, फेफड़ों की सूजन, सीओपीडी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूल मिट्टी, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी, टीबी के कारण सांस की समस्या आदि, इनके समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लव गुप्ता से, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान दें कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 17 सितंबर 2026 और दिन में 12 बजे से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे जावेद अली, श्रेया घोषाल और साथी। फिल्म थी खिलाड़ी 786, गीत शब्बीर अहमद का था, संगीत निर्देशक थे हिमेश रेशमिया। और आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति, इला अरुण और साथियों को। फिल्म है खलनायक, गीतानंद बख्शी का, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये थे कविता कृष्णमूर्ति, एला अरुण और साथी फिल्म थी खलनायक। अब आप सुनेंगे उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को। फिल्म है नरसिम्हा, गीतानंद बख्शी का संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत पेरेलाल।

ये थे कुमार सानू और अलका याग्निक, फिल्म थी विजय पथ। इसी के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मधुवंती और राग मधुकोश में सारंगी वादन। वादक कलाकार हैं उस्ताद मोइनुद्दीन खां। तबले पर इनके साथ संगत की है अब्दुल सलाम खां ने। पहले सुनते हैं इनका बजाया सारंगी पर राग मधुवंती।

सारंगी पर राग मधुवंती और राग मधु कौस। वादक कलाकार थे उस्ताद मोइनुद्दीन खान। तबले पर इनके साथ संगत की अब्दुल सलाम खान ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में